मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026, 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं समाचार, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे, वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के

0: गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ कर रहे हैं मातृ वंदना से।

अभी आप समूह स्वर में चंद्रदेव सिंह की लिखी देशभक्तिपूर्ण रचना सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए देवकी पंडित के स्वर में कबीर दास का भजन।

0: इसी के साथ आज की वंदना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन, आलेख डॉक्टर रामा प्रसाद मिश्र का है।
1: जिनकी आत्मा का आशय महान होता है उसे महात्मा कहते हैं। पोरबंदर गुजरात में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मा से निसृत होने वाली आत्मीयता ने समग्र संसार को समेट लिया था। सदाशयता के उच्चादर्शों से प्रेरित होकर अपने आप को जनहितैषिता के कार्यों में निछावर करने वाले गांधी जी में पर दुख कातरता और संवेदनशीलता थी, जिससे वे प्रेम के अप्रतिम महत्व को स्वीकार करते थे। उनके प्रेम में सहानुभूति, दया, क्षमा, सहिष्णुता, उदारता जैसी सात्विक प्रवृत्तियों की विद्यमानता थी। अपनी करुणा और सदिच्छा के सलिल कणों के सिंचन से पीड़ित मानवता को उन्होंने शीतलता का एहसास कराया। अपने मानवतावादी विचारों और कर्मों से लगभग 40 वर्षों तक वे अखिल विश्व को उपकृत करते रहे। महात्मा गांधी ने भारत के दरिद्र नारायण से अपना तादात्म्य स्थापित किया। सादा जीवन और उच्च विचार की वे प्रतिमूर्ति थे। अस्पृश्यता निवारण के लिए उन्होंने भगीरथ प्रयास किया। वे आंतरिक शुचिता और सद्भावना के कायल थे। वे इस मान्यता के पक्षधर थे कि प्रत्येक प्राणी के कलेवर में एक ही आत्मा का आवास है। एतदर्थ परम सत्य का साक्षात्कार करने के लिए सभी के प्रति प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। लोक सेवा ही ईश्वर सेवा है और यही सत्य का साक्षात्कार है। पहले वे ईश्वर को सत्य मानते थे, बाद में उनका उद्घोष था कि आध्यात्मिक सत्य ही ईश्वर है। वे ईश्वर को सत्य का और सत्य को ईश्वर का पर्याय मानते थे। उनके विचारानुसार सत्य आंतरिक है, जिसकी अनुभूति करना और आचरण में प्रतिफलित करना ही सत्योपलब्धि है। संस्कृति की प्रवंचना और कपटाचरण को देखकर गांधी जी की आत्मा सिहर उठती थी। औचित्य का अतिक्रमण करते हुए कई लोगों को जब सफलता तक पहुंचते हुए वे देखते थे, तब उन्हें बड़ी आत्मा की ग्लानि होती थी। उन्होंने लक्ष्य की शुचिता के साथ साथ साधन की शुचिता पर बल दिया। अपवित्र साधन का प्रश्रय लेकर महान लक्ष्य की प्राप्ति को वे अनुचित मानते थे। ऐसी प्रवृत्ति एक ओर कलुषित प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, दूसरी ओर वो मानवता के पथ को पंकिल भी करती है, क्योंकि अनुचित रूप से किसी को रौंदकर आगे बढ़ने की चेष्टा से सदाशयता और नैतिकता का हनन होता है। अतः मानवता का रक्षण

0: ही संभव है जब साध्य की भांति साधन भी पवित्र हो। महात्मा गांधी का कर्मयोग लोकहित से संपृक्त था। वे सभी के कल्याण के आकांक्षी थे। वे इस पावन भूमि को समानता और समरसता के वातावरण से अनुप्राणित करना चाहते थे। वे आर्थिक समानता के साथ साथ आध्यात्मिक एकता के हिमायती थे। वे मानवीय कल्याण के लिए ज्ञान और कर्म के एकत्व पर बल देते थे। सिद्धांत और व्यवहार, कथनी और करनी में जब तक सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, तब तक कर्म में लोक मांगलिकता और सच्चाई नहीं आ सकती। वे उसी ज्ञान, सिद्धांत और उपदेश को ग्राह्य मानते थे जो कर्म की कसौटी में खरा हो। सत्याग्रह सत्य के प्रति ऐसा आग्रह है जो सत्याग्रही में सहिष्णुता उत्पन्न करता है और असहयोग तथा सविनय प्रतिरोध पर कायम रहने की नसीहत देता है, जिससे अत्याचारी अनाचार से विरत हो जाए और उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। सत्याग्रह का मुख्य संदेश यही है कि घृणा के बदले घृणा, बुराई के बदले बुराई और हिंसा के बदले हिंसा नहीं करनी चाहिए।
1: चिंतन अभी आप सुन रहे थे। आलेख डॉक्टर रामाप्रसाद मिश्र का था। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। कलाकार हैं वाणी जयराम।

भरत के साथ आए अयोध्या वासियों से प्रेम पूर्वक मिलकर श्री रामचंद्र ने उनके सारे संताप दूर कर दिए। और निषाद राज के सौभाग्य का क्या कहना, जिसे मुनिवर वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से गले लगाया। जब उसने दूर से दंडवत प्रणाम किया तो कुलगुरु ने उसे राम सखा का ये सम्मान दिया। श्री राम ने माताओं के समीप पहुंचकर सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में गिरकर उन्हें सांत्वना दी। जो भी हुआ था उसके लिए काल, कर्म और विधाता को उत्तरदायी ठहराया। फिर राम और लक्ष्मण ने अयोध्या से आई ब्राह्मण पत्नियों तथा गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की, गंगा तथा गौरी की भांति उनका सम्मान किया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के चरणों से लिपट गए, ऐसे जैसे भिखारी को अपरिमित संपत्ति मिल गई हो। जब माता कौशल्या के सामने दोनों भाई नतमस्तक हुए तो उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्हें अपने प्रेमाश्रुओं से नहला दिया। ब्राह्मणों, गुरु, मंत्री तथा सभी माताओं को साथ ले भरत श्रीराम तथा लक्ष्मण सहित आश्रम पहुँचे। सीता ने कुलगुरु के चरणों से लगकर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया। सासुओं की उपस्थिति के कारण वो कुछ सहम सी गईं।

0: रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे वाणी जयराम, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कृषि चर्चा, विषय है ग्रीष्मकालीन फसलों में जल प्रबंधन एवं सिंचाई तकनीक, जानकारी देते हुए डॉक्टर आदित्य शुक्ला।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वह है ग्रीष्मकालीन फसलों में जल प्रबंधन एवं सिंचाई तकनीक। हमको ये बात ध्यान रखनी है कि सिंचाई हमें सही समय पर, सही मात्रा में और सही विधि से करनी है। हमें वो सोच नहीं रखनी है कि ज्यादा सिंचाई मतलब ज्यादा प्रोडक्शन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जल प्रबंधन का मतलब केवल ये नहीं है कि हम खेत में पानी छोड़ दें। खेत में कैसी मिट्टी है, फसल की क्या अवस्था है, आपके पास उपलब्ध जल स्रोत क्या हैं, और साथ में मौसम को देखकर हमें पानी का उपयोग करना चाहिए। हर फसल की कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, जिसको अंग्रेजी में हम क्रिटिकल स्टेज कहते हैं, जिसमें पानी की कमी से सबसे ज्यादा नुकसान होता है उपज पे। अलग अलग पौधों में अलग अलग ऐसी अवस्थाएं होती हैं, पर जनरली हर पौधे के लिए ये बात तय है कि अंकुरण के वक्त, फल निकलने पर, फली निकलने पर, फूल निकलने की जो अवस्थाएं होती हैं वो क्रांतिक होती हैं। अगर आपके पास पानी की कमी है, अगर जल प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितना पानी उपलब्ध हो उतनी ही ज़मीन में बुआई करनी है। हमको ऐसा नहीं करना है कि खूब सारा हमने लगा लिया है जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से और फिर पूरा खेत ही तनाव में आ रहा है। दूसरी बात यह है कि हमको ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, हमें जल भराव से भी बचना है, क्योंकि ज़्यादा पानी उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना कम पानी हो, जो कि मक्के में ज़्यादातर देखा गया है। अगर पानी ज़्यादा भर दिया जाए तो उसमें विल्टिंग हो जाती है। इसके साथ साथ हम ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हैं, जिससे 60-80% सिंचाई का जल बचता है। साथ में ही उर्वरक की भी बचत होती है, ऊर्जा की भी बचत होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे खरपतवार भी कम आते हैं, क्योंकि खरपतवार खुद काफ़ी ज़्यादा जल चूस लेते हैं आपकी धरा से। अब मैं एक बहुत सस्ती सी एक पद्धति बताऊंगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉइल कम सैंड मिनी प्लॉट टेक्निक। अब किसानों के लिए मैं सरल भाषा में इसको बोलूँ तो बोल सकते हैं खेत में एक छोटा सांकेतिक प्लॉट बनाना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, हम 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और साथ ही में 1 मीटर गहराई मिट्टी निकालते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें हम 5% रेत मिला देते हैं और फिर उसको हम वापस गड्ढे में भर देते हैं। और जैसा भी आपकी पद्धति है, जितना भी आपका बीज का दर है, जो भी आपका पौधा है, हम उसको लगा देते हैं। जैसे ही इस सांकेतिक प्लॉट में पौधे मुरझाने लगे पानी की कमी से, किसान समझ सकता है कि 2 या 3 दिन में या कभी कभी 1 दिन के बाद भी आपका जो मुख्य खेत है उसमें पानी की कमी होने वाली है, क्योंकि रेत जो होता है मिट्टी के पानी पकड़ के रखने की क्षमता को कम कर देता है। तो जब आपका रेत वाला प्लॉट मुरझाने लगे तब आप समझ सकते हैं कि बाकी पौधे भी मुरझाने वाले हैं। यदि हम व्यवहारिक सलाह दें तो ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए किसान को कुछ बातें याद रखनी चाहिए। पहली, फसल की अवस्था देखकर सिंचाई करें। दूसरी, हल्की मिट्टी में कम मात्रा में लेकिन अपेक्षाकृत अधिक बार सिंचाई करें। भारी मिट्टी में कुछ अधिक गहराई तक लेकिन लंबे अंतराल पर सिंचाई करें। तीसरा, पानी की कमी हो तो जो आंतरिक अवस्थाएं हैं उसको प्राथमिकता दें, जैसे फल आना, फली आना, फूल आना, उन सब में। चौथी, खेत में खरपतवार नियंत्रण, मेड़ बनाना और नमी संरक्षण पर काम करें। इसमें एक चीज किसान और कर सकते हैं, मल्चिंग भी कर सकते हैं, जिसमें हम कोई भी जो धान का पैरा होता है, कोई भी घास होती है, उसको हम पौधे की क्यारियों के बीच में लगा देते हैं, जिससे वाष्पीकरण कम होता है और पानी जो रहता है मिट्टी में उसकी बचत भी होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्रीष्मकालीन खेती में सफलता का आधार केवल खाद या बीज नहीं है, बल्कि जल का प्रबंधन भी है। सही सिंचाई तकनीक अपनाकर किसान पानी बचा सकता है, लागत घटा सकता है,

0: पौधों को स्ट्रेस से बचा सकता है, तनाव से बचा सकता है और उपज भी बढ़ा सकता है। इसलिए हमें ज़्यादा पानी, ज़्यादा उपज वाली पुरानी सोच छोड़कर सही समय पर सही मात्रा का पानी वाली सोच अपनानी होगी। धन्यवाद।
1: कृषि चर्चा में जानकारी का विषय था ग्रीष्मकालीन फसलों में जल प्रबंधन एवं सिंचाई तकनीक। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आदित्य शुक्ला। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में सुनिएगा योग और ध्यान का महत्व रोगों से बचने विषय पर डॉक्टर मृत्युंजय राठौर से ली गई भेंटवार्ता।

सुबह 9 बजे कार्यक्रम बातों बातों में, इसमें सुनिए 1 जुलाई से लागू होने वाले VBG राम जी योजना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा से ली गई भेंटवार्ता, प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और 8:15 पर कलाकार होंगी विदुषी ममता चंद्राकर। इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे शिव दयाल पटपरिया और साथी।

दोपहर 12 बजे आकाशवाणी संग्रहालय से के अंतर्गत गाथा झरोखों से का पांचवा भाग सुनिएगा। मर्यादा की रक्षा के लिए रणचंडी बन जाने वाली माँ बहादुर कलारिन, लेखक डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, प्रस्तुति मोहन सिंह रामानी की। दोपहर 12:30 पर फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुनिएगा आपके मीत ये गीत। दोपहर 1:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में आज के गोट का विषय होगा प्रकृति के संरक्षण, जीवन के संरक्षण। डॉक्टर सरिता साहू की वार्ता दरकत सामाजिक मूल्य जिम्मेदार कौन।

शाम 5:10 पर युवाणी में अपन गोट का विषय होगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस, साथ ही सुनिएगा आप मन के चिट्ठी और माटी के गीत। शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात का विषय होगा संतुलित खाद अपनावो और अपन खेतला बचावो। शाम 7:30 पर किसानवाणी में आज की सलाह का विषय होगा खेत बचाव अभियान, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संतुलित उर्वरकों का उपयोग। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कृणाल चंद्राकर, मृदा वैज्ञानिक विषय वस्तु विशेषज्ञ मृदा विज्ञान महासमुंद। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा। सुबह 9:15, 10:30, 1:05, 2:00, 2:30, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। नई फिल्मों से ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज सुबह 10:30 पर। सुबह 11:05 पर सदाबहार नगमे और शाम 5:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम् अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथिरूपेण उपस्थितः भविष्यति। 15-2000 वर्षात् अनन्तरम् इयं तस्य प्रथमा सेशेल्स देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मंत्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं दलं भारतीय नौसेनायाः नौपोत युगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागं करिष्यन्ति। यात्राकाले प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तर विचारणार्थं सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटकयान सेवायाः शुभारंभं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः भारत टैक्सी संबद्धाः 4,000+ सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद सूरत वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य 14 जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामि मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवा विस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमंत्री अमित शाहः गतवासरे मादक द्रव्याणि विरुध्य संयुक्त संघर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादकद्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै सामाजिकस्थिरतायै आर्थिकहिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतॄन् यूनः मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयक संयोजनकेन्द्रस्य 10th संबोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
2: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: उत्तर प्रदेश आरक्षिबलेन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वंचना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण 8 जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली पंजाब हरियाणा चण्डीगढ पूर्वीयोत्तरप्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु लक्षद्वीपस्य कतिपयक्षेत्रेषु च तडित्पातस्य सम्भावना अस्ति।

0: कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा 16 संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

आज की सुबह कुछ अलग सी है। हवाओं में एक नई ताजगी है, मौसम में एक मीठी सी खुशबू है और आसमान जैसे बारिश की आहट का पैगाम दे रहा है। बादलों की हल्की सी दस्तक, ठंडी हवाओं का एहसास और प्रकृति की ये खूबसूरत मुस्कान बता रही है कि बरसात का मौसम अब करीब है। सुबह का हर पल अपने आप में एक नई कहानी लेकर आता है। कभी सूरज की सुनहरी किरणें उम्मीद जगाती है तो कभी बारिश की बूंदें मन को यादों और खुशबुओं से भर देती है। आइए इस प्यारी सी सुबह को और भी खास बनाते हैं मधुर संगीत, सकारात्मक विचारों और जिंदगी से जुड़ी खूबसूरत बातों के साथ।

श्रोताओं, आज 27 जून है। आज ही के दिन भारत के महान साहित्यकार, उपन्यासकार, कवि और पत्रकार बंकिम चंद चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। वे भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता थे। उनके साहित्य ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नई चेतना जगाई। आधुनिक युग में बांग्ला साहित्य का उत्थान 19वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ। इसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, माइकल मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अग्रणी भूमिका निभाई। इसके पहले बंगाल के साहित्यकार बांग्ला की जगह संस्कृत या अंग्रेजी में लिखना पसंद करते थे। बांग्ला साहित्य ने जनमानस पर पैठ बनाने वालों में शायद बंकिम चंद चट्टोपाध्याय पहले साहित्यकार थे। उनकी पहली प्रकाशित बांग्ला कृति दुर्गेश नंदिनी मार्च 1865 में छपी थी। दूसरे उपन्यास कपाल कुंडला को उनकी सबसे अधिक रुमानी रचना कहा जाता है। सन 1872 में मासिक पत्रिका बंग दर्शन का उन्होंने प्रकाशन किया। आनंद मठ एक राजनीतिक उपन्यास है जिसमें देशभक्ति की भावना है। उनके उपन्यासों का भारत की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया। आज भी उनकी रचनाएं हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं में बड़े ही चाव से पढ़ी जाती है।

0: सबकी वाणी आकाशवाणी।
1: हर वर्ष 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, उन्हें आसान ऋण उपलब्ध कराना और वैश्विक बाजार में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, अर्थात वैश्विक अर्थव्यवस्था, सतत विकास और रोजगार सृजन में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। देश के कुल उत्पादन और निर्यात में इन उद्योगों की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। ये भारत के विकास के दृष्टिकोण और रोजगार सृजन की रीढ़ माने जाते हैं। श्रोताओं, लघु एवं मध्यम उद्यम नवाचार, रोजगार सृजन और सतत विकास की शक्तिशाली इंजन है। प्रौद्योगिकी, डिजिटल अवसंरचना, किफायती वित्त और बाजार के अवसरों तक पहुंच बढ़ाकर सरकारें और साझेदार MSME को समावेशी विकास को गति देने, लचीलापन मजबूत करने और सतत औद्योगिक विकास में योगदान करने में मदद कर सकते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओ, आज ही के दिन दुनिया का पहला ATM 27 जून 1967 को लंदन में लगाया गया था, जिसे बार्कलेज बैंक की एनफील्ड शाखा में स्थापित किया गया था। शुरुआती मशीन में एक बार में अधिकतम 10 पौंड ही निकाले जा सकते थे। भारत में पहला ATM सन 1987 में HSBC बैंक द्वारा की गई थी। तब से लेकर आज तक दुनिया के हर क्षेत्र में ये स्वचालित टेलर मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार उपकरण वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों को किसी भी समय और बैंक के कर्मचारियों के साथ सीधे बातचीत की आवश्यकता के बिना नकदी निकासी, जमा धन हस्तांतरण, शेष राशि या खाता जानकारी की पूछताछ जैसे वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बना रहा है। अमेरिका में इसे ATM तो कनाडा में ABM के नाम से जाना जाता है।

छन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया। The whole thing is that भैया सबसे

श्रोताओं, 19 माह की उम्र में एक बीमारी के कारण दृष्टि और श्रवण शक्ति चली गई थी हेलेन एडम्स केलर की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, 14 पुस्तकें लिखीं और इतिहास में विकलांगता अधिकारों के सबसे प्रभावशाली पैरोकारों में से एक बनी। आज उनका जन्मदिवस है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद हेलेन केलर अपने आप को अकेला समझने लगी, क्योंकि उनकी जिज्ञासा थी कि वो भी सभी की तरह पढ़ाई करे। रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लेने के बाद वे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ने भी लगी। यहाँ पढ़ते पढ़ते हेलेन केलर ने उस दौर में एक ऐसी पुस्तक लिखी जिन्होंने उनको बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाई। इस पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अपने जीवन में संघर्षों के ऐसे दौर को पार करके हेलेन केलर ने समझ लिया था कि जीवन में यदि संघर्ष किया जाए तो कोई काम ऐसा नहीं है जिसे हम ना कर सकते हों। यही सोच लेकर हेलेन केलर ने समाज के हित के लिए कदम बढ़ाया और वो अपने जैसे लोगों को जागरूक करने निकल पड़ी।

श्रोताओं, आर डी बर्मन हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे महान संगीत निर्देशकों में से एक थे। पंचम नाम से मशहूर उन्होंने 60 के दशक से 90 के दशक तक 331 फिल्मों में संगीत दिया। उन्होंने अपने अनोखे संगीत से बॉलीवुड में रॉक, डिस्को और जैज की शुरुआत की। आर डी बर्मन ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर एक सहायक के रूप में की थी। शुरुआती दौर में वो अपने पिता के संगीत सहायक थे। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में हिंदी के अलावा बांग्ला, तमिल, तेलुगु और मराठी में भी काम किया। संगीतकार के रूप में आर डी बर्मन की पहली फिल्म छोटे नवाब थी, जबकि पहली सफल फिल्म तीसरी मंजिल थी। 70 के दशक के आरंभ में आर डी बर्मन भारतीय फिल्म जगत के एक लोकप्रिय संगीतकार बन गए। यादों की बारात, हीरा पन्ना, अनामिका आदि बड़े फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। आर डी बर्मन ने अपने जीवन काल में भारतीय सिनेमा को हर तरह का संगीत दिया, जो आज के युग के लोग भी बेहद चाव से सुनते हैं।

श्रोताओं, आज पीटी उषा का जन्म दिवस है, जिन्हें भारत की सबसे महान और सफल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट का दर्जा प्राप्त है। उन्हें भारत की उड़न परी और पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। उनका पूरा नाम पिलावुल्लाकंडी थेक्के परम्बिल उषा है। वे 16 वर्ष की उम्र से खेल की दुनिया में आई हैं और 16 वर्ष की उम्र में ही सन 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा भारतीय एथलीट बनी। उनकी उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान सन 1983 में अर्जुन पुरस्कार और सन 1985 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने शानदार कैरियर में कुल 101 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। वर्तमान में वे केरल के कोझिकोड में उषा स्कूल ऑफ एथलेट्स चलाती हैं, जहां वे देश की नई प्रतिभाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं। आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, प्रकृति हमारी जीवनदायिनी है। पेड़ पौधे हमें केवल छाया और फल ही नहीं देते, बल्कि स्वच्छ हवा, वर्षा और जीवन का आधार भी देते हैं। बरसात का मौसम आ गया है, ये पौध रोपण के लिए सबसे अच्छा समय है। हम जो भी फल खाते हैं, आम, जामुन, नींबू, अमरूद या अन्य फलों के बीज, उन्हें फेंकने के बजाय संभाल के रखें। बारिश की पहली बूंदों के साथ इन्हें मिट्टी में रोपें। शायद यही छोटा सा प्रयास आने वाले कल में एक बड़ा पेड़ बनकर किसी को छाया, फल और जीवन देगा। याद रखें, प्रकृति को बचाना किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं, हम सबका कर्तव्य है। एक बीज बोइए, एक जीवन बचाइए और धरती से कहिए कि वो लहलहा के मुस्कुरा उठे।

नमस्कार, रायपुर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का

0: उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
1: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा।

0: और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथी होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

क्षेत्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में सुनिए योग और ध्यान का महत्व रोगों से बचने विषय पर। डॉक्टर मृत्युंजय राठौर से ली गई भेंटवार्ता, भेंट करता है रमा शंकर।

0: श्रोताओं नमस्कार, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारे भारत में चिकित्सा की कई पद्धतियां हैं। उन्हीं चिकित्सा पद्धतियों में योग और ध्यान को भी शामिल किया गया है, जिसमें लोगों को मेडिटेशन, ध्यान और योग प्राणायाम के जरिए स्वस्थ करने का एक मार्ग दिखाया जाता है। श्रोताओं, यदि हम योग और ध्यान से जुड़ेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, क्योंकि योग और ध्यान जो है हमारे चित्त, हमारे शरीर को आत्मीय रूप से स्वस्थ बनाता है। फिर हम उन चीज़ों से दूर हो जाएंगे जो चीज़ें हमारे लिए हानिकारक होंगी। तो श्रोताओं, योग और ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व है और योग और ध्यान कैसे करें, इस विषय पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी से, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योगा एनाटॉमी एक्सपर्ट हैं। तो मृत्युंजय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी आकाशवाणी टीम को।
0: जी जी, तो मृत्युंजय जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग और ध्यान क्या है।
1: बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। कि आमतौर पे जैसे कि हम इसको अगर योग की फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में बोले तो हम लोग बोलते हैं कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विधा है। लेकिन चूंकि मैं वैज्ञानिक और चिकित्सीय पक्ष से अगर उसको मैं व्याख्या करने की कोशिश करूं, तो यह एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा आप अपने बॉडी को, अपने ब्रेथ को और अपने माइंड को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर पे, एक सिंक्रोनाइज मैनर पर आप कार्य कर सकते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन जब होता है बॉडी, ब्रेथ और माइंड का एक सिंक्रोनाइज वे पर, और यही कोऑर्डिनेशन, यही यूनियन को हम योग कह सकते हैं
0: जी।
1: ध्यान भी आज के तरह एक योग की ही विधा है। अगर हम योग के बारे में बात करते हैं तो पतंजलि जी का नाम लेना, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले योग को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उनको दिखाया। और ध्यान भी पतंजलि के जो अष्टांगिक योग का एक पार्ट है। ध्यान में हम बेसिकली आज के तारीख में लगभग दो चीजों में बड़ा ही उनमें दिग्भ्रामक होता है कि ध्यान क्या है। ध्यान को लोग बाग धारणा समझते, कंसंट्रेशन समझते हैं। ध्यान एक तरह से एकाग्रता नहीं होता है। जब आप एफर्टलेस, बिना किसी एफर्ट के अगर आप किसी भी चीज को कंटिन्यूअस देखते जाते, ऑब्जर्व करते जाते हैं, तो वो प्रकार को ध्यान कहलाता है। और ध्यान देखा जाए तो मन का विश्राम है एक प्रकार से। जब मन आपका विश्रांति अवस्था में पहुंच जाता है, उसी को हम ध्यानस्थ अवस्था कहते हैं। तो मन का विश्राम ही ध्यान है, कह सकते हैं
0: जी। तो डॉक्टर साहब, हम योग और ध्यान के बारे में थोड़ा सा आगे और चले, उससे पहले हम आपसे एक जो है मूलभूत सवाल जानना चाहेंगे कि आज हर व्यक्ति बीमार है और किसी को शुगर, बीपी, हड्डियों की बीमारी और कई तरह की जो बीमारियां हो रही हैं, इसका जो है एक क्या कारण हो सकता है?
1: आपका ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। इसका मुख्य जो कारण जो है, प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का, जैसे आप जान रहे हैं कि युग है और इतना कंपटीशन है, तो जो शरीर जो होता है उसकी भी एक क्षमता होती है। तो कई बार आपका जो शरीर है इस कॉम्पिटेटिव युग के साथ में फाइट नहीं कर पाता, कोप अप नहीं कर पाता है। और धीरे धीरे यही कोप अप नहीं करने की वजह से उसको एक तनाव शरीर के भीतर आना शुरू हो जाता है। और ये तनाव भी एक प्रकार से देखा जाए तो एक मुख्य समस्त बीमारियों का कारण है, जिसको हम लोग मेडिकल साइंस में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं
0: जी।
1: जिसमें आप जैसे बताया डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, अर्थराइटिस है, ये सारी बीमारियां एक तरह से साइकोसोमेटिक डिसीज की कैटेगरी में आती है। इनका जो मुख्य कारण मन में होने वाला दबाव है, तनाव है
0: जी। तो डॉक्टर साहब,

0: हम बात करते हैं योग और ध्यान की, तो सबसे पहले हम बात करें योग की, क्योंकि 21 जून जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाना जाता है। तो योग के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से योग जो है हमारे लिए लाभकारी होते हैं?
1: देखिए, अगर हम आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो अगर आप मॉडर्न लाइफ स्टाइल को देखिए, तो आज का जो आधुनिक मनुष्य जो हो गया है, मोबाइल का डेस्कटॉप का बहुत आदि हो गया है, और उसके वजह से एक नई बीमारी जो उत्पन्न हो गई समाज में, जो हो सकता आने वाले समय में लोग बात उसके बारे में जरूर बात करेंगे, कंप्यूटर डिस्क सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम आ रहे हैं कंप्यूटर को यूज करने से, लगातार स्क्रीन देखने से, आपका जो हेड है वो थोड़ा सा आपके जो गर्दन जो है उससे आगे आ गया है, तो इस समस्या के वजह से भी एक आधुनिक जगत में एक समस्या आ रही है। और इसके लिए जैसे आपने पूछा कि किस तरह के योगा अभ्यास करना से मदद मिलेगा, तो मेरा ये कहना है, चूंकि ये हम एक कैटेगरी में बांटेंगे तो उसको फॉरवर्ड हेड हो जाता है, बॉडी जो आपका है उसमें जो आपका गर्दन जो होता है सिर थोड़ा सामने की ओर हो जाता है, तो आप पीछे झुक करके जितने भी अभ्यास हैं जिसमें बैक बेंडिंग जो आसना है वो आप करेंगे, तो निश्चित ही रूप से जो आधुनिक युग में जो समस्या आ रही है उस समस्याओं को रिवर्स करने में एक लाभकारी हथियार के रूप में सिद्ध होगा वो। उसमें उष्ट्रासन आप बोल सकते हैं, उष्ट्रासन का अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन, सेतु बंधासन का अभ्यास करना चाहिए, है ना। योग के तो प्रकार जो मुख्य रूप से जो कर्म योग है जिसमें व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, दूसरा है ध्यान योग जिसकी आप बात कर रहे थे, जो तीसरा जो मुख्य प्रकार है भक्ति योग जिसमें आप सरेंडर हो जाते हैं अंतिम, जिसे आप भगवान कहते हैं परमात्मा कहते हैं और उनके सानिध्य को सबसे समर्पित करते हुए कर्म करते हैं, तो भक्ति योग की कैटेगरी में आता है। तो मुख्य रूप से योग के तीन प्रकार होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, है ना, इस तरह से।
0: जी जी,
1: प्राणायाम जो देखा जाए तो ये जो पतंजलि जी ने जो अष्टांगिक जो मार्ग बताया है जिसमें उन्हें यम और नियम से स्टार्ट किया है कि यम नियम जो है, फिर उसके बाद में पहले यम और नियम को साधना है, फिर आसन करना है, आसन के बाद में प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आता है प्राणायाम।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई योग की, तो यदि हम जानना चाहें कि जब हम योग करते हैं तो योग करने का क्या तरीका हो सकता है, हमें कैसी जगह बैठना चाहिए और कितना समय देना चाहिए?
1: देखिए, प्रारंभ में तो समय का महत्व बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि अगर यदि आप दिन भर में 24 घंटे में यदि आप एक ही समय का चुनाव करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और सुबह प्रातःकाल का समय सबसे बेस्ट होता है कि आप प्रातःकाल अपने दैनिक जो भी क्रियाएं हैं उससे निवृत्त होकर के प्रातःकाल आप उसमें बैठे साधना करें अपना, तो बहुत बेस्ट होगा। और यदि इसके अलावा यदि संध्या काल में भी आप यदि कर पाए तो और भी अच्छा है कि संध्या काल भी थोड़ा समय निकाल के करें, कम से कम मैं बोलता हूँ कि आपके 20 से 25 मिनट का समय बेस्ट रहता है, जिसमें आप थोड़ा सा आसन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा बहुत ध्यान कर लीजिए, उनके एक कम्बो पैक बना करके आप कीजिए, तो निश्चित ही ये लाभकारी सिद्ध होगा। और ऐसे बहुत सारे रिसर्च में भी अभी आ चुका है, तो इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि योग करने से निश्चित ही आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपका जीवन जीने का जो सलीका है उसमें सुधार देखा गया है, कई तरह के रिसर्च इसको प्रमाणित भी कर रहे हैं।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं एक युवाओं से लेकर के बुजुर्ग तक, वृद्ध लोगों की, तो युवाओं के लिए और एक बुजुर्ग के लिए अलग अलग अगर हम योगों की बात करें और योग की समय की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: देखिए, क्या है, मेरा इसमें एक सुझाव ये रहेगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो बुजुर्ग व्यक्तियों में उनके लिए जैसे कि जो आपके बिहार स्कूल ऑफ योगा है उनका सूक्ष्म व्यायाम का एक सीरीज है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें प्रतिदिन अपने साथ में 20 से 25 मिनट तक, तो उनके लिए बेस्ट होगा। लेकिन जो युवा वर्ग हैं जिनको जीवन में एक गतिशीलता चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है सूर्य नमस्कार। तो प्रतिदिन अगर युवा वर्ग सूर्य नमस्कार करे तो निश्चित ही उसको उनसे बहुत फायदा होगा, उनके जीवन में गतिशीलता आएगी, एक जीवन के प्रति एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, जैसे सूर्य का नाम ही ऊर्जा है ना, हम ऊर्जा के रूप में सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य का नमस्कार प्रतिदिन

0: करना चाहिए
1: जी,
0: निश्चित ही युवाओं को इससे फायदा होगा, लेकिन बुजुर्ग वर्ग लोग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें तो फायदा होगा।
1: जी जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम चाहते हैं कि आपकी पसंद का एक गीत हम इस कार्यक्रम में सुने।
0: बिल्कुल, मेरे पसंद का एक गीत है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, गाना बहुत मेरे दिल के करीब है।
1: जी जी, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोता डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं योग और ध्यान के बारे में। तो डॉक्टर साहब, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे योग के बारे में, आइए अब बात करते हैं ध्यान के विषय में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ध्यान क्या है और कितने प्रकार के हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये प्रश्न लोगों को बहुत, लोग बात इसमें कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी देना चाहूंगा। विभिन्न जो एक, जैसे मैंने आपको बताया कि ध्यान मन का विश्राम है, मन का व्यायाम है, ये ध्यान है। लेकिन जैसे आपका जो दूसरा प्रश्न है कि सर जो ध्यान के कितने प्रकार होते हैं, तो इस पर विभिन्न रिसर्च होने के पश्चात में ये देखा गया कि ध्यान के मुख्य रूप से चार प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस अटेंशन मेडिटेशन, जिसको आप कंसंट्रेटिव वैरायटी ऑफ मेडिटेशन की कैटेगरी में कहते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए आप किसी भी अपने श्वास पर कंटिन्यूअस ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, श्वास आ रही है जा रही है, या किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो इस तरह की जो ध्यान के जो प्रकार है वो कंसंट्रेटिव वैरायटी ऑफ मेडिटेशन में आते हैं। और दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं हम लोग ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन। जो ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन है उसको हम लोग सहज ध्यान भी कहते हैं, जिसमें आप विदाउट जजमेंटल आप चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन जो कहलाता है, इस तरह के जो ध्यान है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन। और जो तीसरा जो ध्यान होता है वह कहलाता है करुणा ध्यान, जिसमें हार्ट फुलनेस मेडिटेशन आता है, करुणा ध्यान रहता है, विपश्यना है। ये जो हायर लेवल के जो मेडिटेशन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे भीतर की जो नकारात्मक जो भाव हैं, जो इमोशंस हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और पॉजिटिव इमोशंस लाते हैं, कल्टीवेट करते हैं पॉजिटिव इमोशंस को, जैसे जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, क्षमा हो गया। तो इस तरह के पॉजिटिव इमोशंस को कल्टीवेट करते हैं, तो इस तरह का जो ध्यान का जो प्रकार है इसको हम लोग करुणा ध्यान कहते हैं। तो इस तरह से कुल आप मोटे मोटे रूप से

0: प्रकार आप बता सकते हैं? और सबसे बड़ी बात क्या है कि वैज्ञानिकों ने भी इन प्रकारों को प्रमाणित किया है, क्योंकि तीनों ही प्रकार के ध्यान में आपके जो न्यूरोनल सर्किट्स हैं, जो ब्रेन की जो गतिविधियां अलग अलग होती हैं, तीनों के ही जो फल भी अलग अलग होते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भी ध्यान को तीन भागों में बांटा गया है।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें युवाओं के लिए, जो अभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हो सकते हैं, कॉलेज के बच्चे हो सकते हैं, और उसके बाद रोजगार के लिए जो स्ट्रगल कर रहे बच्चे होते, तो उनके लिए ध्यान का कितना महत्व है?
0: बिल्कुल सही है कि देखिए क्या है कि ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखता है, और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी सूचित करना चाहूंगा कि युवाओं को किस तरह का ध्यान देना चाहिए, मतलब मेडिटेशन कौन से प्रकार का करना चाहिए। तो उनके लिए सबसे जो बेस्ट है वो है फोकस अटेंशन मेडिटेशन, जिसको हम लोग जैसे बात किए कंसंट्रेटिव वैरायटी ऑफ मेडिटेशन की जो कैटेगरी है, इसके पीछे का रहस्य क्या है कि हम इस पे देखें कि जो डिफरेंट जो अन्वेषण हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, उसमें देखा गया कि जब आप फंक्शनल MRI मशीन होता है जिसमें आपके ब्रेन की गतिविधियों को फंक्शन को मेजर किया जाता है, तो उस गतिविधियों के माध्यम से यह निष्कर्ष निकला कि जब व्यक्ति किसी भी चीज को फोकस रहता है, श्वासों पे ध्यान दे, तो ब्रेन के एक हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और उसका भी डार्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो एरिया सक्रिय हो जाता है, और ऐसा देखा गया है कि यह जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जब सक्रिय होता है तो व्यक्ति की वर्किंग मेमोरी, जैसे कोई भी काम कर रहा है तो उस समय उसकी जो तत्कालिक मेमोरी जो होती है वो उस काम को हेल्प करना चाहिए। तो वर्किंग मेमोरी है, अटेंशन है, उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, ये सारे जितने भी जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये डार्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। तो ऐसा देखा गया कि ये पार्ट जितना ज्यादा एक्टिव होगा आपका
1: जी,
0: तो उतना ज्यादा आप इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। तो युवाओं को बहुत जरूरी है कि उनके अंदर अटेंशन होना चाहिए, काम के प्रति वर्किंग मेमोरी स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये देखा गया है कि कंसंट्रेटिव वैरायटी ऑफ मेडिटेशन करने पर उसकी एक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि प्रतिदिन युवाओं को कम से कम 10 से 15 मिनट अपने श्वासों पर ध्यान देना चाहिए या मंत्र का जाप करना चाहिए, तो निश्चित ही इससे उनकी जो जो पर्टिकुलर जो एरिया है जिसको हम लोग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो एक प्रकार से उसको बुद्धि भी बोल सकते हैं अगर आप उसको फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में देखें, तो इसकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है, बुद्धि उनकी प्रगाढ़ होती जाती है। और ये सारी चीज में रिसर्च पेज बता रहा हूँ आपको, सारे चीज अनुसंधान के ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं कि ध्यान करने से ब्रेन में अल्फा रिदम्स आते हैं, ठीक है, और डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर जो पॉजिटिव न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनका स्राव होने लगता है, तो इस तरह की गतिविधियां होती है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक और गीत हम सुने।
0: एक और गीत है जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये भी मेरे बहुत ही दिल के करीब संगीत है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है।
1: तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी से, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योगा एनाटॉमी एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल हम देखते हैं कि चाहे युवा हो चाहे बच्चे हो, उनके अंदर जो है एक अजीब सा तनाव देखने को मिलता है। वो उनका ध्यान जो है अभी वर्तमान और आधुनिकता की ओर रहता है, जिससे वो तनावग्रस्त रहते हैं। अधिकतर हम देखें जब बात करते हैं हम विद्यार्थियों की, तो योग और ध्यान उनकी कैसे मदद कर सकता है?
1: बिल्कुल, योग और ध्यान तो निश्चित ही मदद करेंगे, लेकिन मैं उनके लिए एक सिंपल सा एक बोलते नहीं कि निमोनिक्स जिसको बोलते हैं, तो एक निमोनिक्स देना चाहूंगा। 3T फंडा, 3T, तो ये 3T फंडा कहने का मतलब ये होता है कि एक टी होता है थॉट्स मैनेजमेंट, एक टी होता है टंग मैनेजमेंट, एक टी होता है टाइम मैनेजमेंट। तो यदि आज का युवा वर्ग थॉट्स को मैनेज कर पाए, तो थॉट का जो मैनेजमेंट है वो आपके ध्यान के द्वारा हो पाएगा, टंग का मैनेजमेंट भी आपका ध्यान के माध्यम से हो पाएगा, टाइम का मैनेजमेंट भी आपका ध्यान के माध्यम से हो पाएगा। क्योंकि आप ये ध्यान करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको अपनी ऊर्जा, ताकि भाई काम तो बहुत सारे हैं, आज का युवा वर्ग भटक रहा है क्योंकि उसका भटकाव है डिस्ट्रेक्टेड माइंड के द्वारा, उसका माइंड उसको बहुत डिस्ट्रेक्ट करता रहता है, तरह तरह के विचार आते रहते हैं। तो यदि वो फोकस रहे और ध्यान करते रहे जीवन में प्रतिदिन, तो निश्चित ही जब वो फोकस माइंड में रहेगा तो भटकाव जो उसको भटकाते हैं उससे वो कम दिग्भ्रमित होगा वो
0: जी,
1: और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा पाएगा वो। मेरा यही कहना है कि भाई उनको बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए, और ऊर्जा कहाँ पर कैसे लगाना है, कितनी लगाना है, ताकि ऊर्जा तो आपको निश्चित ही लगेगा हर चीजों में। यदि आप गलत डायरेक्शन में एनर्जी लगा देंगे तो थक जाएंगे बहुत जल्दी, जहाँ लगाना वहाँ आप नहीं लगा पाएंगे।
0: जी जी जी, डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में भी कुछ महिलाएं होती हैं जो गृहस्थ महिलाएं होती हैं, कुछ महिलाएं कामकाजी होती हैं, और कुछ महिलाएं गृहस्थ और कामकाजी दोनों होती हैं। और जब हम योग और आसन और प्राणायाम और ध्यान की बात करते हैं, तो इसका जो लाभ हमारी महिला कैसे ले सकती हैं?
1: उनको भी प्रतिदिन कम से कम अपने जीवन में कुछ आसन का अभ्यास, जैसे कि मैंने आपको बताया उष्ट्रासन बहुत बढ़िया आसन है, विपरीत करनी दूसरा आसन है, आपका जो तीसरा सेतुबंध आसन है, तो इस तीन तरह के आसनों को अपने जीवन में वो शामिल करें, कुछ समय लगाएं, और थोड़ा बहुत समय अपना प्राणायाम के लिए लगाएं, लंबी गहरी सांसें लें, डायाफ्रेमेटिक ब्रीथिंग करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, और लास्ट में थोड़ा बहुत ध्यान का अभ्यास करें। तो निश्चित ही इस तरह के अभ्यास को अपने जीवन में शामिल करने से उनको निश्चित ही सफलता मिलेगी, हर तरह से वो काम एंड क्वाइट रहेंगे, और परिवार को भी अच्छे संभाल पाएंगे, अपने जो भी चीजों को भी टाइम प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे, तो निश्चित ही फायदा होगा इसी।
0: जी जी जी, डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में चलें उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यदि हम ध्यान और योग की बात करते हैं, तो इसमें हमारा खान पान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो योग और ध्यान से जुड़े खान पान की आदतों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, बिल्कुल, जैसे हम खान पान के विषय में हम कहते हैं कि जो सात्विक भोजन

0: तामसिक भोजन है, रासिक भोजन है, तीन तरह के भोजन को हम आयुर्वेद के हिसाब से बांटते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो जो आप योग अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो इसका जो प्रभाव है कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। यदि आप तामसिक भोजन कर रहे हैं, रासिक कर रहे हैं, तो फायदा तो होगा, लेकिन फायदा होने की जो प्रायिकता कम हो जाएगी आपकी। लेकिन यदि आप सात्विक भोजन ग्रहण करके आप योग अभ्यास कर रहे हैं, तो उसकी फायदा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो निश्चित रूप से ही मेरा कहना है कि सात्विक जो भोजन होते हैं, हल्के भोजन होते हैं, आप वो करें अपने जीवन में, निश्चित ही उस सब चीजों से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा।
1: जी जी, बहुत अच्छी और लाभकारी जानकारी अभी डॉक्टर साहब आपने दी है। तो श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी से, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योगा एनाटॉमी एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर मृत्युंजय जी, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं एक बार पुनः आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, आकाशवाणी ने आज मुझे इस कार्यक्रम के बुलाया और उन्होंने मुझे इस चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की, इसलिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आकाशवाणी रायपुर का, धन्यवाद।
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे योग और ध्यान का महत्व रोगों से बचने विषय पर। डॉक्टर मृत्युंजय राठौर से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे, भेंट करता थे रमा शंकर। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।

0: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं बातों बातों में, इसमें सुनिए 1 जुलाई से लागू होने वाले VBG राम जी योजना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की है।
1: श्रोताओं नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, आगामी 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ सहित देश भर में विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना यानी VBG राम जी लागू होने जा रही है। यह योजना

0: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगी। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। श्रोताओं, इस योजना के हर पहलू पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा। उप मुख्यमंत्री जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण, जिसे VBG राम जी के नाम से ज्यादा जाना जाता है, यह योजना 1 जुलाई से लागू होने जा रही है। इस योजना की विशेषताओं के बारे में बताएं।
1: सिर्फ रोजगार पर आधारित ना होकर रोजगार के साथ साथ आजीविका पर आधारित होना, आजीविका के लिए आवश्यक कौशल उन्नयन भी इसमें समाहित होना, यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सिर्फ रोजगार अर्थात एक दिन कोई व्यक्ति आए और काम करके अपनी दिहाड़ी पक्का कर वापस चला जाए, यह कहीं गया नहीं है, यह प्रावधान अभी भी है। इसके साथ ही साथ उसका कौशल उन्नयन के लिए हम काम कर सकते हैं क्या, और कौशल उन्नयन के लिए आवश्यक जो प्रशिक्षण है उस पर काम कर सकते हैं क्या, साथ ही साथ गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सारे ही विषयों को समाहित करके गांव के समग्र विकास के लिए जो योजना लाई गई है वही VBG राम जी है। निसंदेह इसका लक्ष्य 2047 तक, जब समूचा देश निसंदेह दुनिया में आगे बढ़कर अग्रिम पंक्ति पर खड़ा होगा, तब हमारे गांव भी उसी दिशा में उसी तर्ज पर उसी आधार पर आगे रहे, इसलिए हम इस योजना के लिए काम करते हैं। इनकी विशेषताओं के संदर्भ में आप कहें तो इन मूल विशेषताओं से अतिरिक्त कुछ और भी विशेषताएं हैं। जैसे इसमें हम 125 दिन का समय दिया गया है, इसमें यह भी कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर ही लोगों को रोजगार देने की गारंटी दी गई है, उस समय पहले 15 दिन हुआ करते थे। इसमें भुगतान के लिए भी व्यवस्थाएं वैसे ही की गई हैं, काम ढंग से हो इसके लिए अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसको मॉनिटरिंग करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी बनाए जा रहे हैं जी। तो इस लोकल बॉडीज जिस पर काम करेंगी तो एक जो अपेक्स बॉडी होगी वो उस पर डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी भी रख सकती है कि काम जो हो रहे हैं वो वस्तुता होने चाहिए। कालांतर में धीरे धीरे हो क्या गया था कि मनरेगा के माध्यम से होने वाले कामों में हम देखते थे कि गुणवत्ता गौण हो गई थी और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान नहीं था, इसलिए इस बात की आवश्यकता हो गई थी कि अगर पैसे गांव के विकास और गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लग रहे हों तो उसका परिणाम निकलना चाहिए। विषय को परिणाम उत्पादक बनाने के लिए विशेष रूप से मनरेगा से आगे बढ़कर VBG राम जी, यानी कि मनरेगा गांधी जी के नाम पर था और गांधी जी भगवान राम को मानते थे, तो गांधी जी के साथ अब हम गांधी जी के विचारों पर आगे बढ़े हैं, गांधी जी की मान्यताओं पर आगे बढ़े हैं, ये VBG राम जी है
0: जी। बिल्कुल, इसी को ही हम थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि यह योजना मनरेगा का स्थान लेगी, मनरेगा से ये किस तरह से बेहतर है VBG राम जी योजना, और इसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी नए रूप में?
1: मनरेगा में धीरे धीरे गुणवत्ता गौण हो गई थी, कार्यों की गुणवत्ता नहीं हो पाती थी और एक परिपाटी सी बन गई थी कि उसमें क्या करना है। आज हम और अधिक इसको स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बेस्ड मॉनिटरिंग के थ्रू, अनेक ऐसे डिजिटल चेक पॉइंट्स इस पर बन रहे हैं जिसको क्रॉस करना बिना गुणवत्ता के संभव नहीं हो पाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके हम इसके अपेक्स बॉडी में एक डैशबोर्ड की कल्पना भी कर रहे हैं जिसके माध्यम से किए हुए कामों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस तरह से निसंदेह गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होगा जी। मिट्टी आधारित ही काम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम गांव में होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ कन्वर्जेंस इसमें बहुत सरल कर दिया गया है, तो अन्य मदों से इस मद को मिला करके गांव के डेवलपमेंटल काम के लिए इसका उपयोग किया जाना यह भी सरल हो गया है। इसमें इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि सिर्फ आजीविका ही नहीं रोजगार पर भी इस पर फोकस है, इसलिए VBG राम जी अधिक मूल्यवान मुझे लगता है और अधिक प्रगतिशील विचारों के साथ है
0: जी। आपने रोजगार की बात की, तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, कई बार लोग वहां से पलायन करते हैं रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर, किस तरह से VBG राम जी उस पलायन को रोकने में सहायक साबित होगी, और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उससे उनको इस योजना से कितना लाभ पहुंचेगा, रोजगार के लिए कितनी बड़ी भूमिका ये निभा सकती है ग्रामीण क्षेत्रों में?
1: एक बात मैं व्यक्तिगत तौर पर और पंचायत विभाग के मंत्री होने के नाते भी इस बात को कहना चाहता हूं आपसे कि हमारे यहाँ से जो श्रमवीर हैं वो कहीं जा करके

0: निर्माण कार्य करते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको गलत नहीं मानता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के ताकत पर पुणे, बंबई, नागपुर, दिल्ली, लखनऊ, ऐसे अनेक शहर आबाद हुए हैं, बढ़े हैं, उन्नयन हुआ है उन शहरों का, इसमें छत्तीसगढ़ की ताकत लगी है। ये एक अलग मसला है आज के समय में। इसके साथ साथ एक अलग मसला, जो गाँव में लोग हैं, उन गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ उनको दैनिक रोजगार भी मुहैया हो जाए, इसके लिए पुराने योजना से
1: जी
0: एक कदम आगे बढ़कर वीबीजी राम जी उपयोग आने वाला है। इसमें भाव ठीक हुआ है, पुरानी योजना में गुणवत्ता गौण हुई थी और उस पर ये हमेशा सोचा जाता था कि ठीक है, नरेगा है तो ऐसे कर लिया जाएगा। अब इसको स्पष्टता हो गई है, इसमें राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बढ़ाने के साथ साथ ये गाँव में इस बात के, इस भाव के साथ काम करना प्रारंभ हो गया है, हो जाएगा कि हमारे गाँव की उन्नति का आधार कोई है तो ये इसी योजना के माध्यम से आने वाला है। तो अच्छे भावनाओं के साथ जब काम होगा तो रोजगार भी उपलब्ध होगा लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा।
1: जी, अब हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस योजना के नाम की शुरुआत में ही दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, विकसित भारत। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यह संकल्प है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, यह जो योजना है बीबीजी राम जी, वो इस लक्ष्य को पाने में किस तरह से भूमिका निभाएगी? क्योंकि भारत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, आज भी एक बड़ी संख्या वहाँ पर निवास करती है। तो आपने कहा कि मनरेगा में वो गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता था, इसमें किस तरह के काम सृजित किए जाएंगे, किस तरह के काम होंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका निभाएंगे और फिर वो ग्रामीण क्षेत्र विकसित भारत को बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे?
0: 3,300 करोड़ का प्रावधान केंद्र ने किया है और उसके संगत बजट छत्तीसगढ़ सरकार भी आगे बढ़ा लेगी, ऐसा आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दे दिया है। इस तरह से मैं कहता हूं कि एक बड़ी राशि हमारे पंचायतों के विकास कार्यों के लिए हमको उपलब्ध हो जाएगी। इसमें 12 मासी सड़कों का भी उल्लेख है, इसमें आप बिल्डिंग भी बना सकते हैं स्कूल के, इसमें आप किचन शेड बना सकते हैं, गांव के लिए आवश्यक जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए है उन सारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें अनुमेय किया गया है
1: जी।
0: तो गांव की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता इसमें पूर्ण कर सकते हैं, रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस भी कर सकते हैं। तो ऐसी एक योजना जिसके माध्यम से गाँव के इन सारे ही चीजों को किया जा सके, ये बीबीजी राम जी है। ये निसंदेह विकसित भारत की संकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए ये योजना आई है। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पहली योजना प्रारंभ में बिल्कुल ठीक थी, परंतु कालांतर में उसके प्रति जो भाव आ गया था उसमें परेशानी हुई थी।
1: एक बात और है उपमुख्यमंत्री जी, योजनाएं बनती हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि धरातल में क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और वो कमी होती है निगरानी की वजह से, कि मॉनिटरिंग की कमी रहती है। इस योजना के, वैसे आपने बताया कि डैशबोर्ड इसमें बनेगा, निगरानी, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं कि किस तरह से प्रशासनिक कसावट लाई जाएगी निगरानी के संदर्भ में, ये हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा विस्तार से बताएं।
0: प्रत्येक पंचायत में का एक QR कोड होगा
1: जी।
0: आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो उस पर्टिकुलर उस पंचायत के माध्यम में बीबीजी राम जी के माध्यम से जो भी कुछ होने वाला है वो डिटेल हाथ में आ जाएगा। हर एक आदमी के हाथ में पूरी जानकारी होगी, किसी को मैंने सूचना का अधिकार का आवेदन लगा करके घूमने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सबके सामने हो जाएगी। इसमें हमारे सारे ही 11,600 से अधिक पंचायतों में एक साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके लिए पर्याप्त सूचना सबको पहुँच जाए, इस संदर्भ में ग्राम सभाएं करना और दूसरे ही माध्यमों से आगे बढ़ाना इसको कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग, इसकी चेकिंग होगी, लेकिन जब हम पाम्फलेट, बैनर, पोस्टर, ग्राम सभाओं के माध्यम से विषय को आगे बढ़ाए हैं तो जनता के मन में भी और जनता को भी ये स्पष्ट हुआ है कि इसके माध्यम से क्या क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। जब जनता की नज़र होती है कहीं पर तो फिर वो पारखी नज़र सब कुछ स्पष्ट कर लेती है, और जनता की नज़र इस पर रहे, हर एक काम पर रहे, हर एक विषय पर रहे, इसी के लिए बहुत प्रचार इस विषय का किया गया है। अभी विगत 24 तारीख को पूरे ही प्रदेश में एक साथ ग्राम सभा का आयोजन करके, ग्राम सभा के बीच में इस विषय को विशेष रूप से, पहला विषय था बीबीजी राम जी, उस ग्राम सभा का पहला विषय था, उस पहले विषय के साथ इस सारा

0: जनता के बीच में रखा गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मॉनिटरिंग होगी, डैशबोर्ड के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी, अनेक जो नरेगा के एम्प्लॉय हैं उन एम्प्लॉयज़ को इसमें समाहित करते हुए उनके माध्यम से मॉनिटरिंग होगी। इन सभी के से इतर जनता की निगाहों से मॉनिटरिंग हो, इसके लिए काम किया गया है।
1: बिल्कुल, वैसे तो अभी आपने बताया कि ग्राम सभाओं के माध्यम से भी जनता को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन योजना को सफल बनाने के लिए जनता को उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमने सुना है कि एक रथ को भी रवाना किए जा रहे हैं गांव-गांव में, जो लोगों को जागरूक करेंगे इसके बारे में, इस योजनाओं के विशेषताओं के बारे में बताएंगे, किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं जनता को जागरूक करने के लिए?
0: रथ अनेक निकाले गए हैं
1: जी,
0: जो इसकी पठनीय सामग्रियों को लेकर आगे बढ़ता है। कोई एक्सपर्ट भी उसमें होता है, गांव वाले उसको पूछ सकते हैं उस बात को। हम इसके लिए एक चैटबॉट बना रहे हैं, सीधा गांव वाले उसमें बातचीत कर करके वीबीजी राम जी के बारे में सारी चीज़ें समझ लेंगे। एआई बेस्ड चैटबॉट होगा। इसके साथ ही साथ क्यूआर कोड का मैंने विषय आपसे बताया, गांव में जो भी काम चलेंगे क्यूआर कोड के माध्यम से उसको जाना जा सकता है। हर एक गाँव का एक स्पेसिफिक क्यूआर कोड इसके लिए बनाया गया है। साथ ही साथ समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आने वाले समय में 1 तारीख के बाद जब ये हमारे प्रदेश में पूर्णतः लागू होगा, मैं अनेक ऑनलाइन सेशंस इसके बारे में करूँगा। अनेक ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को इसमें जोड़ा गया है जिनके माध्यम से भी लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, पंचायतों का ये विषय पहुँचे, यह भी किया गया है। पंचायतों के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनकी समझ बड़ी पहुँच पंचायतों के लिए है, उनको भी आग्रह किया गया है ये करेंगे। मैं स्वयं ही सभी संभागों तक पहुँच कर वहाँ पर जनप्रतिनिधियों से मिलकर इस विषय को रखूंगा। इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि ये विषय शीघ्र ही गांव-गांव तक पहुँच जाएगा और गांव-गांव तक बीबीजी राम जी के महत्ता को समझ करके लोग निसंदेह अपने गांव की उन्नति के लिए काम करेंगे। इसकी मॉनिटरिंग काम की ठीक हो, इसके लिए भी ध्यान रखेंगे।
1: उप मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम के अंत में हम चाहते हैं, इस योजना को लेकर कुछ भ्रांतियाँ हैं क्योंकि मनरेगा के स्थान पर जब इसको लागू किया गया कुछ तो भ्रांतियाँ हैं, और कुछ भ्रांतियाँ कुछ तत्वों द्वारा जानबूझकर भी फैलाए जाने की कोशिश की गई है। तो क्योंकि बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुन रहे हैं, आकाशवाणी के माध्यम से आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? बीबीजी राम जी को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
0: मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, जैसे भारत देश हमारा है और भारत देश के अंदर हमारा छत्तीसगढ़ है, मतलब एक सबसेट है, एक बड़े सेट के अंदर एक सबसेट है, ऐसा ही वीबीजी राम जी है। उसमें नरेगा का कोई छूटा नहीं है, नरेगा पूर्ण रूप से इसमें है, उसके साथ साथ कुछ अन्य चीजों को जोड़ा गया है। तो नरेगा के माध्यम से जो कुछ हो सकता था वह इसमें हो ही सकता है, साथ ही साथ कुछ अन्य विषयों को भी इसमें जोड़ा गया है। तो अगर एक्सपेंशन होता है, बड़ा कोई चीज होता है, तो उसमें डरने घबराने या परेशान होने की कोई बात किसी के मन में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपके पास उपलब्ध चीजें थी पहले, प्रावधान जो आपके पास उपलब्ध थे, वो सारे प्रावधान तो अभी भी हैं, इसके साथ साथ कुछ और प्रावधान है। तो कुछ और प्रावधान है वो आपकी भलाई के लिए है, गांव की उन्नति के लिए है, लोगों के बीच में इस विषय को ला करके और हम अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में क्या काम कर सकें उसके लिए है। मैं सोचता हूँ कि घबराने परेशान होने वाला कोई विषय ही नहीं है, और जो कुछ जो कोशिश भी कर रहे होंगे इस दिशा में ये समझाने के लिए लोगों को कि कुछ गड़बड़ हो रहा है वाला है, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो पुरानी उपलब्धता थी वो कहीं कम नहीं हुई और कुछ चीजें उपलब्ध हो गई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सार्थक तरीके से और सारगर्भित रूप में आपने ये जानकारी दी। आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
0: बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के साथ हमारी यह बातचीत। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
2: बातों बातों में इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे 1 जुलाई से लागू होने वाले वीबीजी रामजी योजना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की थी। आकाशवाणी का यह रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म सागर से आवाज SP बाला सुब्रमण्यम और साथियों की है। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत बद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्थल बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए प्यार का तोहफा लाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

तेरे नाम फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में। समीर के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी हिमेश रेशमिया ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

अनुराधा पौडवाल और मनहर के युगल स्वर में लीजिए अब सुनिए समीर का लिखा गीत। संगीत नदीम श्रवण का है और फिल्म का नाम है सड़क।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं विदुषी ममता चंद्राकर और साथी।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: लीजिए अब सुनिए विदुषी ममता चंद्राकर के स्वर में ये छत्तीसगढ़ी गीत।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके

0: लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे विदुषी ममता चंद्राकर और साथ ही आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने और बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में समान नागरिकता संहिता UCC लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि UCC का प्रारूप तैयार करने के लिए

0: उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति में सदस्य के रूप में आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एमके राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्या ज्योति रानी सिंह को शामिल किया गया है। यह समिति छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी। इसके अलावा विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण संबंधी विषयों पर यूसीसी के लिए सुझाव देगी। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांवों में सामुदायिक भवन, चौक चौराहों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया जाएगा। साथ ही जिन स्थानों पर नक्सल हिंसा की बड़ी घटनाएं हुई हैं, वहां उपयुक्त स्थान चिन्हित कर स्मारकों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। यह बात उन्होंने कल कांकेर में नक्सल परिवारों और शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात के दौरान कही। श्री शर्मा ने इस मौके पर उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। अपने कांकेर प्रवास के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों के साथ बैठक कर नक्सल मुक्त बस्तर के विकास में समाज की भागीदारी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति और विकास के लिए सामाजिक सहयोग जरूरी है। बैठक में पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन, आदिवासी संस्कृति और देव स्थलों के संरक्षण पर भी चर्चा हुई। श्री शर्मा ने बताया कि 197 गांव के देवस्थलों का राजस्व रिकॉर्ड में चिन्हांकन किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर पहुंचकर रेलवे परियोजनाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने कहा कि रावघाट रेल परियोजनाओं का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, शेष बचे कार्यों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रावघाट तक रेल संचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि रावघाट परियोजना के बाद जगदलपुर तक रेल लाइन विस्तार की प्रक्रिया भी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। निरीक्षण के दौरान उनके साथ रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद सहित रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी रायपुर की ओर से आज जगदलपुर में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष, नक्सलवाद से विकास और विश्वास की ओर बढ़ता बस्तर रखा गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू होंगे। अध्यक्षता बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप करेंगे। कार्यक्रम में बस्तर संभाग के वरिष्ठ पत्रकारों की सहभागिता रहेगी। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा जिला पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी विषय विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। वे बस्तर क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना के विस्तार, सुरक्षा और विकास के समन्वित प्रयासों तथा विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में बस्तर की भूमिका पर अपने विचार साझा करेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा में शामिल प्रदेश के करीब 1000 विशिष्ट जनों का दल 5 दिवसीय यात्रा के बाद रायपुर लौट आए। रायपुर रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सम्मान से विभूषित हस्तियां, कलाकारों, साहित्यकारों, संस्कृत कर्मियों, समाजसेवियों ने सहभागिता की। प्रतिभागियों ने प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के दर्शन कर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने और बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से। मिस्टर और मिसेस खन्ना, इस फिल्म का गीत सुनिए। वाजिद सुनिधि और यूवी फरहत की आवाज़ में। जली

0: not happening.
1: नौटंकी साला, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ें हैं राहत फ़तेह अली खान, आफ्ताब हाशिम शाबरी, गीत लिखा है कौसर मुनीर ने और संगीतबद्ध किया है रशीद खान ने।

लीजिए अब सुनिए गुरदीप मेहंदी और अजीत मेहंदी के युगल स्वर में गुरदीप मेहंदी का लिखा गीत, संगीत एस समीर का है और फिल्म का नाम है मेरी शादी कराओ।

नवाब जादे फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मीका सिंह, गुरिंदर सैगल और अल्तमाश फरीदी की आवाज़ में। गीत लिखा था संदीप नाथ ने और संगीतबद्ध किया था गुरिंदर सैगल ने ही। लीजिए अब सुनिए ऑल इज वेल फिल्म का गीत विशाल डडलानी और अरमान मलिक की आवाज़ में। गीत लिखा है शब्बीर अहमद ने, संगीतबद्ध किया है अमाल मलिक ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का गीत नीरज श्रीधर और इरशाद कामिल की आवाज़ में। गीत लिखा है आशीष पंडित ने, संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

नई फिल्मों से ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। कुर्बानी फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कंचन और मनहर उदास की आवाज़ में। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया, शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

इल्ज़ाम फिल्म का गीत अभी आपने सुना नाज़िया हसन और जोहेब हसन की आवाज़ में। अनजान के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी बप्पी लहरी ने। आइए अब सुनते हैं वारदात फिल्म का गीत उषा मंगेशकर और बप्पी लहरी की आवाज़ में। गीत लिखा है रमेश पंत ने और संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने ही।

लीजिए अब सुनिए शालीमार फिल्म का गीत उषा उत्थुप और साथियों की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल

0: गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
1: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रोजेक्ट हॉकाई के अंतर्गत यात्रा मार्ग पर हवाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट तैनात की गई हैं। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला अब इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप 2026 में दो बार का विश्व कप विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। ग्रुप एच में काबो वेर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबो वेर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत सचिन देव बर्मन का है और फिल्म का नाम है सुजाता।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बरते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा है संझा कुन 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तेहा मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: चितचोर फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं यशुदास की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा हमारे सुरक्षित भविष्य का आधार जैव विविधता का संरक्षण विषय पर। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पूर्णेन्द्र साहू, अधिष्ठात्र

उद्यानिकी महाविद्यालय साजा बेमेतरा। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 30 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

गोमती किनारे फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने। आइए अब सुनते हैं अनामिका फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।

0: बहुत कुछ कहने को मन करता है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
3: सुनिए।

बुढ़ा मिल गया, इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

0: आता है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल चलता है सीना धक धक धक। बात को आई बड़ी अदा से बोली क्यों खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे
1: क्यों नहीं।
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

आइए अब सुनते हैं जूली फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है राजेश रोशन ने।

सदाबहार नगमे अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सरला भीड़े का गाया राग भैरवी दादरा। तबले पर संगतकार हैं कन्हैया लाल भट्ट।

0: उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सरला भीड़े का गाया राग भैरवी दादरा सुन रहे थे। तबले पर संगतकार थे कन्हैया लाल भट्ट। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी दवा। और छत्तीसगढ़ में रबर टायर के बिना आयरन के व्हील वाले ट्रैक्टरों को सड़कों पर चलाने पर लगाई गई रोक। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांव में सामुदायिक भवन, चौक चौराहों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया जाएगा। साथ ही जिन स्थानों पर नक्सल हिंसा की बड़ी घटनाएं हुई हैं, वहां उपयुक्त स्थान चिन्हित कर स्मारकों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। यह बात उन्होंने कल कांकेर में नक्सल पीड़ित परिवारों और शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात के दौरान कही। वहीं कल देर शाम उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नारायणपुर में पुनर्वासित युवाओं से मिले और उन्हें गांव के विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से पुनर्वास केंद्र में मिल रही सुविधाओं, प्रशिक्षण और रोजगार की जानकारी ली। इस अवसर पर वन और पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। रायपुर जिले में 1381 बूथों पर 3,45,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। छूटे हुए बच्चों को 29 और 30 जून को घर घर जाकर दवा दी जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सुकमा जिले के प्रवास के दौरान सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र लस्केपारा छिंदगढ़ की पोषण वाटिका में बच्चों के साथ मुनगा और पपीता के पौधों का पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने हर घर मुनगा, घर घर सुपोषण का संदेश देते हुए पौष्टिक आहार पर्यावरण

0: संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता का आह्वान किया। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुनगा को सुपोषण वृक्ष के रूप में पहचान मिल चुकी है, क्योंकि इसकी पत्तियां, फलियां और फूल पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं तथा कुपोषण की समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। छत्तीसगढ़ में रबर टायर के बिना आयरन के व्हील वाले ट्रैक्टरों के सड़कों पर संचालन पर रोक लगाई गई है। परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे पहियों का उपयोग केवल खेतों में कृषि कार्य के लिए किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा छठवीं से बारहवीं तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित की गई है। तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रायपुर में 2 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के संबल केंद्र में होने वाले इस इंटरव्यू के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। आठवीं उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। इस योजना के तहत एमटेक, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रूपये फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी दवा और छत्तीसगढ़ में रबर टायर के बिना आयरन के व्हील वाले ट्रैक्टरों को सड़कों पर चलाने पर लगाई गई रोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी सुन सकते हैं। लीजिए सुनिए आकाशवाणी संग्रहालय से प्रस्तुत कार्यक्रम गाथा झरोखे से का 5वां भाग, मर्यादा की रक्षा के लिए रणचंडी बन जाने वाली माँ बहादुर कलारिन। लेखक डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, प्रस्तुति श्री मोहन सी रामानी की है।
2: प्रस्तुत है सॉफ्टवेयर रूपक श्रृंखला गाथा झरोखे से।

0: लीजिए सुनिए रूपक, मर्यादा की रक्षा के लिए रणचंडी बन जाने वाली माँ बहादुर कलारेन। लेखक डॉक्टर परदेशी राम वर्मा और रूपक के प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी।
1: जय हो भैया, मढ़ेरा बस गिर भैया।

0: ढोला के बैरी रेवा माली ने गा भैया मारोला ले गे बारा माए जी।
1: अरे अरे

0: पान परोसा अपन बाहा भरोसा रे भैया सबले बड़े गे रोजागारे जी।
1: बढ़िया भैया बस गिर वाह भैया।

0: छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक कथाओं में सोरर गांव से जुड़ी ये कथा बहादुर कलारीन की कहानी है। इस कहानी में स्त्री के साहस, उसके अपूर्व सौंदर्य और स्वाभिमान का विस्तार है।
1: बहादुर कलारीन सोरर गांव में रहने वाली ऐसी बेखौफ सुंदर महिला थी जो अपने दम पर जीना जानती थी। किसी की छाया बनकर पुरुष के संरक्षण में जीना उसने स्वीकार नहीं किया।
0: सोरर गांव में उसने महुए से शराब बनाकर बेचने का व्यवसाय शुरू किया। तत्कालीन महिलाएं सिर पर दूध दही का मटका लेकर गांव-गांव बेचने के लिए जाती थी। तब बहादुर कलारीन ने एक ऐसा व्यवसाय चुना जिस पर पुरुषों का एकाधिकार था।
1: लेकिन बहादुर कलारीन ने अपना नाम सार्थक करते हुए एक ऐसा व्यवसाय चुना जिसे आज भी पुरुषों के वर्चस्व का व्यवसाय माना जाता है।
0: बहादुर कलारीन अपने गांव के बाहर पत्थरों से बने एक मजबूत मकान में रहकर ये व्यवसाय चलाती थी। सामने खुला मैदान आज भी है। आसपास के लोग वहां आते और मधुपान करते हैं।

बहादुर कलारी ने अपने व्यवसाय के साथ छत्तीसगढ़ की मंचीय कलाओं को भी जोड़ दिया था। उसकी दुकान के पास सांझ होते ही कलाकारों का कोई दल अपनी कला का प्रदर्शन करता।

लेकिन सब कुछ यूं ही नहीं मिल जाता। बहादुर कलारी के व्यवसाय को देखकर और उसकी सुंदरता पर रीझकर कई धनपतियों ने यह सोचा कि उसकी देह से भी खिलवाड़ संभव है। मगर बहादुर कलारी ने ऐसे अवसरों पर चंडी का रूप धारण कर वासना में डूबे ग्राहकों को ऐसा पाठ पढ़ाया कि दूर दूर तक ये बात फैलती चली गई कि बहादुर कलारीन एक वीरांगना है, अपनी अस्मिता और इज्जत की रक्षा करने के लिए जान भी दे सकती है।

0: असाधारण नायक या नायिका को अपने कौशल से ही छवि बनानी पड़ती है। संघर्ष तो हर कहीं होता है, लेकिन प्रयास करने पर अंधेरा कुछ ऐसा छटता है कि चारों ओर धीरे धीरे रोशनी बिखरने लगती है।
1: यही बहादुर कलारिन के साथ हुआ। कहां तो एक कठिन व्यवसाय, ऊपर से सुंदर स्त्री, फिर भी उसने अपने आत्मबल से अपनी छवि ऐसी गढ़ ली कि दूर दूर तक उसकी कीर्ति फैल गई।
0: लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। कब किसके जीवन में कैसा फूल खिल उठे कोई कह नहीं सकता। बहादुर कलारिन के गांव के पास अचानक एक सुंदर पुरुष अर्ध बेहोशी की हालत में मिला। कलारिन ने उसे अपने घर में लाकर आसरा दिया। वैद्यराज की सेवा से 3 दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो पाया।
1: मान्यता है कि राजा ने वन में भूलन नामक घास को पांव से स्पर्श कर लिया। भूलन घास पर पांव पड़ते ही राजा सब कुछ भूल गया, लाव लश्कर छूट गया और वो आ गया सोरर।
0: राजा भूल गया कि वह नवागढ़ का राजा नरसिंह साय है। स्वस्थ हुआ तो उसने दिपदिपाते रूप से चकाचौंध करने वाली बहादुर कलारिन को देखा।
1: वाकई बहादुर कलारिन का रूप ही ऐसा था। अनिंद्य सौंदर्य की स्वामिनी बहादुर कलारिन भी राजा के रूप पर पहली बार मोहित हुई। उसने कभी किसी पुरुष के लिए अपने हृदय का द्वार नहीं खोला था, मगर राजा नरसिंह साय के पुरुष सौंदर्य ने उसे भी बांध लिया। उसके मन में प्रेम की कली चटकने लगी।

0: राजा नरसिंह के साथ दिनों दिन बहादुर कलारिन का प्रेम प्रगाढ़ होता गया। गांव के बाहर वन में दोनों उन्मुक्त विहार करते। राजा यद्यपि भूल गया था कि वह नवागढ़ का राजा है, मगर अपने जीवन के इस विचित्र रंग को देखकर चकित भी था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वह एक पल में ही बहादुर कलारिन का हो गया। वह सोचता था, ये शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गरुराज का बल है, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहे मिलाकर खेल सकता है, शक्ति के रहते हुए असहाय हो जाता, नारी के आगे महज निरुपाय हो जाता। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बाण से बिंधा हुआ खग, वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूँ।
1: दोनों ओर प्रेम पल रहा था। राजा बहादुर कलारिन के साथ फूलों से लदे वन में घूमता और स्त्री और फूल के फर्क को महसूस करता। कुसुम और कामिनी बहुत सुंदर दोनों होते हैं। कुसुम मूक सौंदर्य और कामिनी सवाक सुमन है।
0: कुछ इस तरह दिन बीते कि पता ही नहीं चला। वन में घूमते हुए राजा का पांव पुनः भूलन घास पर जा पड़ा। मान्यता है कि पुनः भूलन घास पर पांव पड़ते ही स्मृतियां फिर ताजी हो जाती हैं, भूली बिसरी बातें याद हो आती हैं।
1: राजा का पांव भूलन पर क्या पड़ा, उसे सब कुछ याद हो आया। राजा चिंतित हो गया। उसे देखकर बहादुर कलारिन ने पूछा कि किस बात की चिंता है। राजा ने कुछ नहीं कहा।
0: अचानक एक दिन राजा बहादुर कलारिन को छोड़कर चला गया। रह गई बहादुर कलारिन। राजा अपना अंश बहादुर कलारिन के पेट में छोड़कर चला गया। राजपाट संभालने रह गई अकेली बहादुर कलारिन।
1: समय पर उसका बेटा हुआ, उसका नाम उसने छछान रखा। बहादुर कलारिन को यूं भी उन्मुक्त रहकर जीना पसंद था। छछान एक चिड़िया का नाम है। बहादुर कलारिन ने अपने बच्चे का नाम छछान बाज रखा।
0: लेकिन राजा लौटकर फिर नहीं आया।
1: राजा को बहादुर कलारिन भूल ही नहीं पाती थी। उसका साहस ही था कि वो बच्चे को पालने लगी। गांव के लोग बच्चे को दोगला कह देते। बच्चा छोटा था। चोट बहादुर कलारिन के सीने पर पड़ती। लोक मान्यता के खिलाफ जाकर प्रेम करने वाली बहादुर कलारिन आखिर क्या कर सकती थी। वो राजा के प्रति भी ईमानदार रही और एक माँ के रूप में भी वो पूरे प्रभाव के साथ जी रही थी। लेकिन अब भी उसे राजा के लौटने की आस थी।

0: धीरे धीरे छछानबाज बड़ा होता है। उसकी कदकाठी ऐसी कि अब कोई उसे गाली देने की हिम्मत नहीं कर पाता था।
1: लेकिन लोग फुसफुसाना नहीं छोड़ते थे। उधर बहादुर कलारिन अपने राजा को याद करती और आह भरती। छछानबाज की जवानी कुछ इस तरह छलकी कि उसने एक के बाद एक लगातार शादियों का सिलसिला शुरू कर दिया। उसका मन किसी स्त्री पर बहुत दिनों तक टिकता ही नहीं था।
0: उसने 147 शादियां की। आज भी सोरर गांव के मैदान में पथरीली जमीन पर 147 गड्ढे मिलते हैं। हर गड्ढा एक ससुराल की याद में निर्मित है, ये लोक मान्यता है।
1: छछान ने जब एक रात्रि अपनी अंतिम विवाहिता का घूंघट उठाया तो उसे अपनी रूपवती माँ का चेहरा याद हो आया। वो शयन कक्ष से उठकर बाहर निकल गया।
0: छछानबाज था तो राजा का ही अंश, अय्याशी उसे विरासत में मिली थी, उसके खून में ही भोग के सूत्र थे। खबर धीरे धीरे बहादुर कलारिन तक पहुंची।
1: बहादुर कलारिन ने बेटे को पास बुलाकर पूछा कि वो क्यों इस तरह अनाचार कर रहा है, स्वयं का जीवन भी अंधेरी सुरंग में झोंक रहा है। क्या तू वाकई अपने आप को दोगला सिद्ध करने पर तुला है? माँ के प्यार से तुझे संबल नहीं मिला, खो गए पिता की स्मृति ने तुझे नाकारा और नीच बना दिया है, धिक्कार है।
0: माँ से मिली ठोकर से छछानबाज आहत हो गया। नशे में वो यहां वहां भटकता रहा। व्यथित छछानबाज को कहीं आसरा नहीं दिखता था। उसे सूझता ही नहीं था कि वो क्या करे।
2: देखो भैया, बस गिर बैठे ना भैया।

0: लेकिन मां तो मां होती है। उसने छछानबाज को बुलवा लिया। पूछने पर छछानबाज ने कहा, मां मैं तुम्हारे सौंदर्य के आगे कुछ नहीं देख पाता। तुम्हारे होंठ, तुम्हारा माथा, तुम्हारे गाल, आगे वो कुछ कहता कि एक भरपूर झन्नाटेदार तमाचा छछानबाज के गालों पर पड़ा। वो अपनी मां के हाथों दंड पाकर भी विचलित नहीं हुआ।
1: बहादुर कलारी ने कहा कि दुष्ट शब्दों की मर्यादा भी नहीं जानता।
0: छछान ने कहा, मां जानता हूं।
1: छछान ने साफ कह दिया, हर स्त्री तुमसे कमतर रूपवती लगती है, क्या करूं।
0: तब बहादुर कलारिन रणचंडी बन गई। उसने नशे में धुत अपने पुत्र को घसीटना शुरू कर दिया। पास एक कुआं था, पानी तलातल भरा था कुएं में। बहादुर कलारिन ने बेटे के गले में पत्थर बांधकर उसे कुएं में ढकेल दिया।

0: सैकड़ों महिलाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाले मदांध पुत्र को उसकी अमर्यादित मंशा के लिए दंडित करने वाली महान माता बहादुर कलारिन इसीलिए पूजी जाती हैं।
1: कई स्थानों पर बहादुर कलारिन को बहादुर माता के रूप में लोग पूजते हैं।
0: भला क्यों ना पूजें? सत की धरती छत्तीसगढ़ के अमर्यादा पर चलने वाले बेटे को सजा देकर बहादुर कलारिन ने ऐसा आदर्श स्थापित कर दिया जिसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती।

ये रणचंडी बन जाने वाली माँ बहादुर कलारिन। लेखक थे डॉक्टर परदेशी राम वर्मा, वाचक स्वर प्रदीप चक्रवर्ती और शीतला शुक्ला के, गायक स्वर कुलेश्वर ताम्रकार, राम स्वरूप यदु और साथियों के, शीर्षक गीत के गायक अंजलि शुक्ला और सुनील सोनी, वाद्य पक्ष के कलाकार थे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद आरिफ, शिव कुमार गोण, विवेक टांक, महेंद्र चौहान और सत्यरंजन गंगेले। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी राम।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी संग्रहालय से प्रस्तुत कार्यक्रम गाथा झरोखे से का पांचवा भाग, मर्यादा की रक्षा के लिए रणचंडी बन जाने वाली माँ बहादुर कलारिन। लेखक डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, प्रस्तुति श्री मोहन सिंह रामानी की थी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती रात 9:30 पर, और रात 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिएगा प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

हम आपको याद दिला दें, दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम घर आंगन में आज के गोट का विषय होगा प्रकृति के संरक्षण, जीवन के संरक्षण। साथ ही सुनिएगा वार्ता दरकत सामाजिक मूल्य, जिम्मेदार कौन। वार्ताकार होंगी डॉक्टर सरिता साहू। चर्चा सुनिएगा नशा नाश के मूलाय, रद्दा चलत सावधानी और यातायात नियम के पालन जरूरी और जल संरक्षण आज ले। आनंद लीजिएगा गीत संगीत का।

कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म भाग मिल्खा भाग से स्वर दिया है जावेद बशीर ने, गीत प्रसून जोशी का, संगीत शंकर एहसान लॉय का। सुनने के लिए ईमेल इन साथियों ने भेजे हैं, आरंग भिलाई से वासुदेव साहू, रेणुका, हिमांशु, झिलमिल साहू, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, रानू, खुशी, प्रवीण कुमार साहू और इकबाल कुरैशी, रायपुर से छन्नूलाल यादव, पुष्पलता यादव, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था, प्राची, प्रियल, अनुराग, अभिषेक, डुग्गू, कान्हा यादव, बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता, स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, कीरत राय वाधवानी, दीपक सुंदर, उन्नति घनशानी और प्रदीप कुमार साहू, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल, भाटापारा से हैं प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना, नेपानगर से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह, खरगोन से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप, महासमुंद से हैं भीष्मदास, नर्मदा, हिरमनी, दीपक, लक्ष्यदास, भाटापारा से दानसी रावत, पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ, शीला, गुनगुन, अदिति, खुशी और तनुश्री यादव। और पत्र इन साथियों ने भेजे हैं, शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, डोंगर गांव से हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु, अंकित देवांगन, धमतरी से हैं कोमल शोरी, नंदलाल मर

नेताम, गजानन नेताम, सोहन यादव, आशीष नेताम और जयंती शोरी, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वाणी वर्मा, दरचुरा से हैं फिरंता साहू, दुलौरिन कामेश्वरी, प्रीतम साहू और कन्नेवाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मीना, गीतिका, गुड़िया सोमानी, राहुल साहू, आशीष टेमरे, दादुई के और वेद प्रकाश सहारे। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म भारत से स्वर दिया है अभिजीत श्रीवास्तव ने। इरशाद कामिल की शब्द रचना, संगीत विशाल शेखर का है। ईमेल इन साथियों के आए हैं, दहियान बांधा बाजार से हरिओम साहू, रेवा राम, रानू सरस्वती, प्यारी राम और परमानंद साहू, नांदघाट से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टीकेश्वर और ऋतु, सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश, डोंडी लोहारा से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय, तुषार, टॉली, बेबी, पूजा।

शर्मा, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, बाघामुड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन, कालेगांव से सुधाकर राजे, प्रशांत राजे, जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश प्रणाली, सर्वद सानवी और हर्षिता देशमुख, रोहासी से हैं मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक और जानकी, मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवहाणकर, सरिता एकांश गवहाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवहाणकर, सिद्धांत और टुक टुक, नागपुर से वैशाली गवहाणकर, शैलेश, श्वेता, सुमित और ध्वनि, सहसपुर से छुटकू साहू, मोहित राम, लोकेश, रामकिशन, दुलीचंद, सतीबाई और सत्यम साहू, चरौदा से हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, जीशान अहमद, बेगम हमीदुन, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन, पाहदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल, सावित्रीबाई देवांगन, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूनाराम और कृष्णा देवांगन, भीम खोज तरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा, शीतल गुप्ता, चरडुंगरी पीपरिया से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, जय, किशन कुमारी, इंद्राणी, माया साहू, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल और यशस्वी, लिवई से हैं गुलाबदास मानिकपुरी, राजा और रानी, पीपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता और समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता। पत्र भेजा है इन साथियों ने, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेमेतरा से हैं पूर्णिमा सारथी, पूजा, आरती, भव्या, सुषमा सारथी, भाटापारा से चोवाराम वर्मा, मुकेश, दुलारी, दुर्गा, दुर्गेश्वरी वर्मा, यहीं से मोहम्मद जावेद, एकता, पूजा यदु और रेशमा निषाद, सिरमुंदा से सूरज कुमार दामले, हेमा, कांतिबाई, राजेंद्र कुमार दामले, कोरदा लवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद, गुलशन कुमार, शिव कुमारी, हेमलता, बेद किरण वर्मा, अमलीपदर देवभोग से निकुंज तिवारी, लाची और ममता तिवारी, धवलपुर से गैनलाल मिश्रा, धनंजय, चंद्रकांती, प्रतीक्षा और अर्चना मिश्रा, और बेमित्रा से हैं भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लकी सिन्हा। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। अगला गीत अरिजीत सिंह के स्वर में, कौसर मुनीर का लिखा हुआ, संगीत अमित त्रिवेदी का, फिल्म का नाम पैडमैन। ईमेल इन साथियों ने भेजे हैं, गणेश धाम परसुली से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय देवेश, धनवंतिन बाई और मोतिन बाई मानिकपुरी, बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल, बाबू, प्रियांश और भाव्या देवांगन, बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा, राजू, नेहा, जगदीश देवांगन, छिंदवाड़ा से नाना जी, लाम से मीना, तेजस, जय और हर्षिता, सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू, सनी और कोमल, कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद, पूर्णेंद्र और साहिल, पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, शालिनी और टिवांशी, लोरमी से गोमती रजक और काजल रजक, ओवरैठी भाटापारा से अनीता साहू, वीणा, नेहा, मोनिशा, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल, मोहरेंगा राजिम से खुमानसी पटेल, तेजेश्वनी, मिष्ठी और एकांश, भोईनापार बालोद से देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल, रानी, उमाबाई साहू, गेंदा टोला बाजार चौक से बीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि, योगिता, गजेंद्र गुप्ता, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, पाहरा अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया, कांकेर संबलपुर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी, बीड़नगर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, अदिति और वैभव, और खंडाला से आकाश और प्रिया सरोटे। पत्र इन साथियों ने भेजे हैं, भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रिहाना बेगम और मोहम्मद साजिद, कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवी देवांगन, भाटापारा से हैं अमृता यादव, पार्वती, ईश्वरी, लक्ष्मी, प्रेरणा, डिम्पी यादव, भाटापारा से ही मोतीलाल छेरिया, कल्पना, बिट्टू कुमार, चिंटू, युग कुमार, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा, भाटापारा से श्याम रतन मूंधड़ा, रचनाकार मूंधड़ा, छगन लाल नागवंशी, मीना नागवंशी, कंचन, आराधना, हिमांशु, आप हैं धनुरा दुर्ग से, और भाटापारा से रमज़ान खान सिकंदर, असरफ, सादिया, अयाज, अल्फैज़ खान, बिल्हा से शेख नासिर और महजबीन बानो। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म बॉडीगार्ड से स्वर दिया है राहत फतेह अली खान, श्रेया घोषाल, शब्बीर अहमद ने। नीलेश मिश्रा का गीत, संगीत हिमेश रेशमिया का है। ईमेल इन साथियों ने भेजे हैं, फुलझर घटारानी से योगेश्वर साहू, डूमेश्वरी, यामिनी, मुस्कान, हर्षिता, गंडई पंडरिया से शिवा यादव, राज, चिंटू, तरुण, चोवाराम, कन्हैया, निर्मला यादव, सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल, टेकापार बालोद से चिंताराम यादव, रवि प्रकाश यादव, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन, कोदवा गुड़ान से श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी।

रजनी, पूजा और राहुल कुई ग्राम भंगी टोला से, ननकाराम धुर्वे, जामुनबाई, फिरतराम और मालती धुर्वे खमरिया से, साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार रसेड़ा से, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति कुमार और डिकेश सैया मालगी से, सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी, आकाश, प्रतिभा, पूर्वी और पूनम कमारमुड़ा से, सतीश और श्रेयांश, गिरी गोस्वामी कटनी से, अनिल और अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यस, हिच्छा, महासमुंद से, अदालत दास वैष्णव, मानस, शांति, ऋचा और गायत्री वैष्णव, अमाखुड़ा रेंगाखार से, देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह, दक्ष प्रिया और गीत सरगम, सिंगारपुर से, चिंताराम धुर्वे, कामिन, चंद्रध्वज और सानू, आवरा डबरी से, श्यामलाल साहू, मोगरा, संगीता, केशरी साहू, खैरागढ़ से, समलिया राम वर्मा, फूलमत वर्मा, अड़ार नाथघाट से, माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, भूपेश और दीपेश, लोरमी चचेड़ी से, कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ, मुंगेली से, उत्तरा दिवाकर, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका, भूतकछार लोरमी से, दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम और धनराज, देवरी भाटापारा से, गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश राम, बेमेतरा से, सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र ब्रजकांत, भाटापारा से रामकुमार राउत, अमरीका, गणेश, कार्तिक, युवराज राउत, भाटापारा से ही चौवाराम वर्मा, मुकेश दुलारी और दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा, बेमेतरा से नेत्राम साहू, मनीराम, लक्ष्मी, बिंदु, डिंपल, रमेश्वर साहू, यहीं से हैं सेखनराम साहू, अमरीका बाई, लेखनी, रोशनी चहक साहू, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता, बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, पठेना से चटौद, सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा, आयुषी और कृत, और भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: आपके मीत ये गीत, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री

0: अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

पापा कहते हैं। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण के स्वर में। जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीत राजेश रोशन का था। लीजिए अब सुनिए सोनू निगम के स्वर में फाइज अनवार का लिखा गीत, संगीत निखिल विनय का, फिल्म का नाम पापा द ग्रेट।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, आगामी मंगलवार 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा हमारे सुरक्षित भविष्य का आधार, जैव विविधता का संरक्षण। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पूर्णेंद्र साहू, अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय साजा बेमित्रा। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 30 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

टैंगो चार्ली, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वर में। गीत और संगीत आनंदराज आनंद का था। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

आज रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन, राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती रात 9:30 पर, और रात 10 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिएगा प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी 1:30 पर कार्यक्रम घर आंगन में आज के गोट का विषय होगा प्रकृति के संरक्षण, जीवन के संरक्षण। साथ ही सुनिएगा वार्ता दरकत सामाजिक मूल्य, जिम्मेदार कौन। वार्ताकार होंगी डॉक्टर सरिता साहू। चर्चा नशा नाश के मूल आए, रद्दा चलत सावधानी और यातायात नियम के पालन जरूरी और जल संरक्षण आज ले, इस पर चर्चा सुनिएगा और आनंद लीजिएगा गीत संगीत का। युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में अपन गोट का विषय होगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस। साथ ही होगा क्रम आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत। समय 5:10। शाम 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा संतुलित खाद अपनावाओ और अपन खेत ला बचावाओ। शाम 7:30 पर किसान वाणी में क्रम आज की सलाह में खेत बचाओ अभियान, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संतुलित उर्वरकों का उपयोग इस

विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर कुणाल चंद्राकर, मृदा वैज्ञानिक विषय वस्तु विशेषज्ञ, मृदा विज्ञान महासमुंद। रात 8:15 पर सुनिएगा लोक संगीत, कलाकार होंगी विदुषी ममता चंद्राकर और साथी। इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे शिव दयाल पटपरिहा और साथी।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 बजे और चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम घर आंगन।

प्रकृति की संरक्षण ले, सुख के बरसी फुहार, महर महर मम हाही जिंगी, हो ही सबके उद्धार। यही भाव संग घर आंगन कार्यक्रम सुनैया जा मो बहनी मल्ला संगीता वर्मा की जय जोहार। बहनी हो जेठ के लकलकावत गर्मी, बरसा रानी के चंद फुहार ले, थोड़ी शांत होले धरा थे, फिर उमस की स्थिति गर्मी ले सब हलाकान हुआ थे। बहनी हो कभू भारी गर्मी तो कभू भारी बरसा, तो कहूँ सुखल देख के बिगड़त पर्यावरण के संकेत समझ में आ जाते। बहनी हो प्रकृति के मूल स्वरूप में हमला हवा पानी पेड़ पौधा जीव जंतु सब एक संतुलित रूप में मिले रहीस, फिर हम मन के मन विकास के नाव में एक मूल रूप में छेड़खानी करें, प्रकृति के अंधाधुन दोहन करें, जंगल के लगातार कटई पानी के जरूरत बाढ़े के स्थिति लगातार धरती की गर्भला चीर के मोटर पंप ट्यूबवेल ले पानी के दोहन करें, प्रकृति के मूल रूप बिगड़े ले धर ले हेते कर स्थिति खेती के रकबा फैक्ट्री और बड़े बड़े भवन इमारत ले बने ले घटत जाते, और कंक्रीट के नवा दुनिया बसे ले बरसा के जलधार भुइयां भुइयां भीतर नहीं जाके सीधा नरवा नदियां ले होके समुद्र में चल देते, तेकर स्थिति धरती के जल स्तर दिन के दिन घटत जाते, बड़े बड़े कारखाना मोटर गाड़ी ले निकला जहरीला धुआं न सिर्फ मनखे पर बल्कि पेड़ पौधा जीव जंतु पर खतरा बन जाते, और बाढ़त जनसंख्या ओकर बाढ़त जरूरत ये समस्या ला और विकराल बनावा जाते, ओकर स्थिति हमार जिंदगी संकट में घिरत जात। बहनी हो कई प्रकार के बीमारी झपावा थे, फिर ये संकट प्रकृति हमला नहीं देहे बल्कि हमरे मन की प्रकृति संग छेड़छाड़ के स्थिति आए, तब बहनी हो थोकिन गुनन की गलती कहाँ हो है। प्रकृति हमला कई घों सुधरे के मौका तक को देते, जोन गलती हमार से हो है ओकर भरपाई करन, पेड़ काटे हैं तो ओकर ले दुगना पेड़ लगावन, जत के जरूरत है उतके पानी बउरन, बिना जरूरत के मोटर गाड़ी ला उपयोग छन करन। बहनी हो प्रकृति ले प्रेम करन, ओकर संग चलन, और प्रकृति के संग चलबो तब प्रकृति तको अपन माया लुटाही, तेकर स्थिति तो कथे भी ना बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, कबर प्रकृति के संरक्षण पही जीवन के संरक्षण लुका है, और धरती हरियाही त जीवन में खुशहाली तो आबे करही।

भाव से परिचित कराथे। सह अस्तित्व औ लोक कल्याण के भावना भी सामाजिक मूल्य के कारण ही मनखे द्वारा अपनाए जथे। हमर जैन समाज ला बने औ समरे मा हजारों बरस लग गए, वो समाज के मूल्य अब लोगन मन के मन मस्तिष्क मा पैठ नहीं जमा सकत है। लोगन मन अपन समाज के रीति रिवाज ला ज्यादा ध्यान नहीं देवत है। लोगन मन के नैतिक स्तर दिनों दिन गिरत जावत है। का अच्छा है का बुरा तेखर परवाह अब समाज के मनखे मन ज्यादा नहीं करत है। ये बहुत ही चिंता के बात है कि लोक कल्याण औ सह अस्तित्व के भावना के दिनों दिन क्षरण हो जाते। ये दरकत सामाजिक मूल्य के जिम्मेदार कौन आए, यही हमर चर्चा के मुख्य विषय आए। मोर दृष्टिकोण मा पहला कारण संयुक्त परिवार के बिखराव है। लोक मूल्य के हास होए के प्रमुख कारण संयुक्त परिवार के बिखराव औ एकल परिवार के प्रति लोगन मन के झुकाव आए। संयुक्त परिवार जिमा दादा दादी चाचा चाची माँ पिता भाई बहनी रही थे, ओखर मन के बीच मा आपसी मेलजोल अधिक होते, जे हा लोक मूल्य के हस्तांतरण करे बर अधिक सक्षम होते। दादा दादी नाना नानी ये मन हा लोक कहानी कथा नैतिक बातला लैका मन के मन मा लोक मूल्य के बीजारोपण ला करत रही थे, जे बाद में विकसित होके मानवीय मूल्य गुण के रूप मा उभरते। बड़े परिवार के व्यवस्था मा लैका मन एक दूसर के सम्मान करना और परिवार के प्रति जवाबदारी के बातला देख सुन के समझत और सीखत रही थे, जो एकल परिवार मा संभव नहीं हो पाए। नौकरी पैसा माता पिता मन अपन लैका के अंदर मानवी गुण के विकास करे बर वतका समय नहीं दे पाए, जौन बड़का परिवार मा अपने अपन मिल जाते। पिछले कुछ दशक मा उपजे उपभोगवादी प्रवृत्ति हा सामाजिक मूल्य के दरके के प्रमुख कारण आए। उपभोगवादी संस्कृति मा मनखे मन अंधा होके सिर्फ अपन ऊपर ध्यान केंद्रित करके जीवन यापन करते और खुद के खुशी बर लोक मूल्य ला ध्वस्त करे बर कोई कसर नहीं छोड़ाए। लोक कल्याणकारी भावना ला खत्म करे बर भौतिकतावादी आदत हा जिम्मेदार हावे। आज भौतिक संसाधन ला पाए बर हमर समाज मा गला काट स्पर्धा चलत है। हर आदमी जल्दी जल्दी पैसा कमा के अमीर बनना चाहते और जम्मो सुख सुविधा संसाधन ला जुटाना चाहते। प्रायः जल्दी पैसा कमा के चाहमा वो उचित तरीका के ध्यान नहीं रख के अनैतिक तरीका ले धन इकट्ठा करत है, जो सामाजिक मूल्य के हास के भी कारण बनत है। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली भी हमर सामाजिक मूल्य के विघटन के कारण हो सकत है। यह शिक्षा प्रणाली हमर सामाजिक मूल्य के उपहास उड़ाते और भौतिकतावादी आदत के बीजारोपण करते। हमर लैका मन के पाठ्य सामग्री मा दया करुणा सह अस्तित्व चोरी व प्रायश्चित पश्चाताप भूल सुधार या माफी दान और नैतिक मूल्य के महत्व पाश्चात्य शिक्षा पद्धति ला अपनाए के कारण नंदावत जाते। वर्तमान जीवन शैली मा लैका मन के बचपन खत्म हो जाते। लैका मन अपन संगी साथी मन संग खेले कूदे बर नहीं जाए और घर में बैठ के टीवी ला देखत रही थे। टीवी में परोसे गए सामग्री जिला अपन परिवार संग बैठ के देखे नहीं जा सके, उहू ला लैका मन देखत हावे। टीवी सीरियल के संवाद हा मानवी मूल्य बर घातक है। लगातार टीवी सीरियल में कटुता द्वेष हिंसा अकर्मण्यता और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कायरता मतलब परस्ती के आचरण दिखावत रही थे, जिला हमर लैका मन सीखत हावे और घर परिवार के महिला परानी मन तको लड़ाई झगड़ा करत हावे। नवा शिक्षा नीति के व्यवस्था मा लैका मन के हाथ मा मोबाइल आ गए है, जब लैका मन के बचपन ला कोसो दूर ले जावत है। हमर धर्म ग्रंथ के बात करन ता ओमा लोक कल्याण और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से जुड़े अब्बड़ अकन प्रसंग हावे। सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् भी हमर धर्म ग्रंथ के प्रचलित उक्ति हावे। धार्मिक संस्था और हमर धर्म गुरु मन तको सामाजिक मूल्य के संबंध में प्रवचन देते, लेकिन वर्तमान औद्योगिकीकरण और भौतिकतावादी आदत के कारण हमन एखर बर समय नहीं निकाल पान और धार्मिक क्रियाकलाप और ओकर ज्ञान ले वंचित हो जावत हन। कम परिश्रम मा अधिक के चाह मुफ्तखोरी के प्रवृत्ति भी हमर सामाजिक मूल्य दरके के कारण आए। मुफ्तखोरी के प्रवृत्ति हा मनखे मन ला अकर्मण्य बनाथे। ये बात हा हमर स्थापित मूल्य के विरुद्ध है।

ऐसन आदत के कारण मनखे मन डिप्रेशन के शिकार होवत हे। वर्तमान जीवन शैली के बात करन त ओमा लोक संवाद के कमी नजर आवत हे। गांव में चौपाल और शहर में चौराहा जौन कबू प्रबुद्ध जन के विचार विमर्श बर सकलाई के केंद्र होत रही से वो अब टीवी और आधुनिक जीवन शैली के भेंट चढ़ गए हे। यही सब कारण ले लोक संवाद हमर जीवन ले नंदावत जाते। बचे खुचे कसर ला मोबाइल ह पूरा कर दिस। चिट्ठी लिखे के आदत ला बंद कराए मा मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग जिम्मेदार हावय। वैश्वीकरण के दौर मा नौकरी शिक्षा आर्थिक उपार्जन व्यापार आदि के कारण मनखे मन पलायन करत हावय। अपन क्षेत्र ले पलायन कर लोगन मन राष्ट्रीय सीमा ला पार करके दूसर देश जावत हे। एक स्थान ले दूसर स्थान जाए के कारण ओमन अपन पीढ़ी ले चलत परंपरा रीति रिवाज से दूर होवत जात हे। ओखर सेती नवा पीढ़ी हा सामाजिक मूल्य के प्रति जागरूक नहीं हो पाते। विदेश में जाके एक दूसर के ऊपर अविश्वास करना के भावना जो पनपत है ओखर कारण प्रेम त्याग सहयोग अपनापन के भावना भी कम होवत जात हे। ये सब स्थिति के कारण

0: एक स्थान ले दूसरे स्थान जाए के कारण ओमन अपन पीढ़ी ले चलत परंपरा रीति रिवाज से दूर होवत जाथे। ओखर सेती नवा पीढ़ी हा सामाजिक मूल्य के प्रति जागरूक नहीं हो पाथे। विदेश में जाके एक दूसर के ऊपर अविश्वास करना के भावना जो पनपत है ओखर कारण प्रेम त्याग सहयोग अपनापन के भावना भी कम होवत जाथे। ये सब स्थिति के कारण हमन अपन सामाजिक मूल्य ला संभाल नहीं पाथन। संगवारी हो, समस्या हा समाधान के साथ आथे। दरकस सामाजिक मूल्य ला बचाए बर शिक्षा सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र है। शिक्षा हमर मन के संकीर्णता ला दूर करथे। खासकर नारी मन परिवार के रीढ़ होते। अपन लयिका मन ला बचपन ले अच्छा संस्कार देना चाहिए। संयुक्त परिवार ला बना के रखे के जिम्मेदारी भी नारी परानी मन उठा सकत है। आदर्श परिवार मा रही के लयिका और परिवार के सभी सदस्य मन विकास करते जेखर ले हमर राष्ट्र हा तको उन्नति करते। जब लयिका हा परिवार मा जन्म लेते त कई रिश्ता ओकर साथ में जन्म लेते। माँ पिता भाई बहिनी दादा दादी नाना नानी जिसे जब बच्चा जन्म लेते जो जन्म से ही ओला जाति भी मिलते वैसे ही ओला परिवार के सुरक्षा और शिक्षा चिकित्सा ना जाने कतको सुविधा मिलते। कभी कभी ऐसे हो जाते ये अभी देखे में आते वर्तमान परिस्थिति ला यदि मैं देखाऊं तो मोला ऐसे लगते कि परिवार में जो माता पिता है वो अपन बच्चा मन ला पूर्ण सुरक्षा नहीं दे पाए। शिक्षा चिकित्सा ये सारा कुछ तो सरकार हा जरूर देते लेकिन यहाँ पे यदि जे प्रकार से मैं देखत हूँ कि वर्तमान में जो माता पिता है उमा पिता में जो नशाखोरी के अधिक प्रवृत्ति के बढ़त हुए प्रवृत्ति जो मुला दिखाई देते यहाँ पे ओकर कारण भी परिवार में स्त्री के सुरक्षा के भी कमी आते और बच्चा के भी सुरक्षा की कमी आते। तो जहाँ तक हो सकते मोला इसे लगते कि नशाखोरी के बढ़ते प्रवृत्ति भी है समाज ला जो है सामाजिक मूल्य के शरण के कारण बना थे। अच्छा परिवार बने माँ यह नशाखोरी जो है वह बहुत बड़े कारण बना थे जेकर कारण हमर परिवार टूटा थे। बच्चा मन के मन में सुरक्षा के कमी होए के कारण ओकर मन में आक्रोश भी जन्म लेते और जहाँ तक हो सके ऊ मन अपन घर परिवार से दूर होके गलत संगति में पड़ा थे। मित्र अच्छा मित्र होना अच्छा संगति होना एक व्यक्ति के विकास में बहुत सहायक होते लेकिन जहाँ तक जब बढ़ते उम्र के किशोरावस्था में बच्चा मन आते वो स्थिति में माता पिता के पर्याप्त ध्यान यदि बच्चा मन के तरफ नहीं रहा है तो बच्चा मन गलत संगति में पड़ जाते और गलत संगति के कारण ओकर पूरा जीवन हा खराब हो जाते। तो मोला इसे लगते कि नशाखोरी भी एक बहुत बड़े कारण है सामाजिक मूल्य के शरण के लिए।
1: बहनी हो अभी सुनत रहे हो बड़ सुखर वार्ता दरकत सामाजिक मूल्य जिम्मेदार कौन और वार्ताकार बहनी रे डॉक्टर सरिता साहू और सही बताए बहनी हो सामाजिक मूल्य के रक्षा सिर्फ सरकार या समाज भर के काम नो है बल्कि ये हमार सबो के संग्रह जिम्मेदारी आए। तभी तो ये गीत मां नवलदास मानिकपुरी और अनसुईया मानिकपुरी यही संदेश देवत है।

नशा पान गुटका खवई बन गे हवय फैशन, चाहे झर्रा है ओकर घर दाना पानी राशन। सिरतोन बताए बहनी हो, नशा मनखे की जिंदगी ला धीरे धीरे बर्बाद कर देते। ये सिर्फ स्वास्थ्य ला नहीं बिगाड़े बल्कि पूरा परिवार बिखर जाते, घर के आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाते, अपन सोचे समझे के शक्ति खो देते, गलत काम मा तको फंस जाते। आज बड़ दुख के बाद यहू हरे कि पढ़े लिखे युवा मन तको नशा में बुड़त जाते, जेनुखर तन मन धन और सम्मान सबों के नाश कर देते। युवा हमार परिवार के संग देश के भविष्य हरे। सफलता के रद्दा मेहनत अनुशासन और आत्मविश्वास ले बनते, नशा ले नहीं बनाए। आवा बहनी हो, सब मिल खेकर विरोध करन और नशा मुक्त समाज बनाए के संकल्प लेवन। हमार युवा पीढ़ी मल्ला जागरूक करन, नशा नाश के मूल आए ये बात ला जान लो। सुखी और स्वस्थ जीवन भर एला आजे ले त्याग दो। ऐसने बहनी हो, आजकल के भीड़ भाड़ भाग दौड़ जिंदगी में सड़क दुर्घटना और गंभीर समस्या बन गया हबै। जल्दबाजी लापरवाही बिन हेलमेट के और तेज गाड़ी चलाए माँ यातायात के नियम ला अनदेखी करे माँ कई ठन दुर्घटना घट जाते। जिंदगी ले बड़का काही नहीं हो है। जान है त जहान है, त हमला अतका भागना नहीं है। रेंगत बेरा सावधानी रखना बहुते जरूरी है। यातायात के नियम के पालन करना हम सब के जिम्मेदारी है। और बहनी हो, हर सावधानी एक बड़े हादसा लटाल सकते है।

और ये याद रखन कि घर में हमार परिवार हमार इंतजार करत है। त सुरक्षित रहो बहनी हो और खुश रहो और ये गीत की तको आनंद लो जिनला अपन स्वर में सजा के लाने हैं ध्रुवा रामर काम और दुखिया बाई।

बहनी हो, जल है तो कल है। सही माँ बहनी हो, जल ही जीवन के आधार है। पानी बिना हम मेनके के और धरती के अस्तित्व के कल्पना नहीं कर सकन। फिर आज बढ़त जनसंख्या अंधाधुन दोहन के स्थिति पानी के संकट बढ़ते जाते। हमार पुरखा मन पानी के महत्व ले समझाए। ओमन तरिया कुआं बावड़ी खुदवा के पानी बचाए के उद्यम कराए। आज हमला उही नियमला अपनाए की जरूरत है जेकर ले भू जल स्तर बढ़ाए। अपन नान नान प्रयास ले जल संचय में अपन भागीदारी देना है। और बहनी हो, सबके संग्रह प्रयास ले जल हम बचा पाबो। जल बचाबो, कल बचाबो, यही धरती।

किसान पानी बिन सुनना लागे, पानी मा बसते परान। अब बहनी हो घड़ी इशारा करत है कि चाय के बेरा हुआ थे। बहनी हो अपन स्वस्थ रहाओ, खुश रहाओ और मुस्कुरावत रहाओ। यही भाव संग अवैया बेरा आप मन संग फिर भेटो ही। यही वादा संग अपन बहनी संगीता ला दो विदा और ले मोर माया ले भरे राम राम।

घर आंगन, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: नूरी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के युगल स्वर में। जानिसार अख्तर की शब्द रचना को सुरों से सजाया था खयाम ने। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वर में रविंद्र रावल का लिखा गीत। संगीत बाबुल बोस का है, फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में।

नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वर में रविंद्र रावल का लिखा गीत अभी आपने सुना। संगीत बाबुल बोस का था, फिल्म का नाम था जीना तेरी गली में। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य

0: सत्ता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
3: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि NCDC, IPCO, CRIPCO, NDDB, NABARD, NCEL, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
4: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जाँच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है।

0: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: सलाम नमस्ते। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शान और गायत्री गांजावाला के स्वर में। जयदीप साहनी की शब्द रचना, संगीत विशाल शेखर का था।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादें।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीत शंकर एहसान लॉय का, फिल्म का नाम कुछ ना कहो।

0: कुछ ना कहो, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में। गीत जावेद अख्तर का था, संगीत शंकर एहसान लॉय का।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हो फिर पढ़ के भुला जाते हो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तय बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए उदित नारायण के स्वर में आनंद बख्शी की शब्द रचना, तर्ज बनाई है जतिन ललित ने। फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण के स्वर में। आनंद बख्शी की शब्द रचना, तर्ज बनाई थी जतिन ललित ने। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत की अंतिम प्रस्तुति उदित नारायण और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। गीत एक बार फिर आनंद बख्शी का, संगीत उत्तम सिंह का है।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फॉरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फॉरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर इसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। उपराष्ट्रपति ने उद्यमियों से उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने का भी आग्रह किया। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे।

3:25 और 55 सेकेंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 MHz और शुरू होता है साथियों आपका अपना मन भावन, जो मन को भाता है वही जुबां पे आता है और जैसे ही वो जुबां पर आता है तो आप हमें मेल करते हैं और कैसे करते हैं भला, FM गोल्ड AIR Delhi@gmail.com। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। पहला गीत मेरी तरफ से आप सबके लिए।

इस गीत को सुनते ही एक नई उम्मीद जो है वो दिल में जाग जाती है, और उम्मीद हमेशा हमेशा अपने दिल में हमें जगा कर रखनी है ताकि जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। बहरहाल आपके जो संदेशे हैं वो हम तक पहुंच रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको वो पता याद है जिस पर आपको हमें मैसेज करना है, fmgoldair@delhi@gmail.com। और जी पहले हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं पटियाला पंजाब से। सोमदत्त जी हैं, कैरव हैं, ज्योति रानी हैं और गुरमंत कौर मनु हैं। इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है वो भी हमने नोट कर लिया है जी, बिल्कुल नोट कर लिया है। अब यहाँ पर ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां और आज़ाद नगर हरिद्वार से ये हमें संदेशा भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और भी बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी साहब हैं, फातिमा खातून हैं, और सुरीत रमेश साहू जी ने हमें ये मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सहारनपुर छत्तीसगढ़ अगर हम चलें तो यहाँ पर हमारे पास हमारे दोस्त हैं, सूरज राजपूत हैं, पुष्पा राज हैं, और संतोषी हेम प्रभा हैं, और गुनीराम राजपूत जी हैं। गोल्डन रेडियो संघ उत्तर प्रदेश से ये साथी हैं, संगीत पसंद करते हैं, रेडियो सुनना पसंद करते हैं, तो एक ग्रुप बनाया हुआ है इन्होंने अपना। और राजेश कुमार वर्मा हैं, ये प्रीति वर्मा हैं, और कार्तिक हैं, आयरन हैं इसमें। और अगर हम भिलाई छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा जिन्होंने हमें ये मैसेज किया है। और मेरिट कैंट से हमारे पास जो संदेश आया वो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं, दिग्दर्शन जी और कविता गौड़ जी, आपने अभी तो एक मैसेज किया हमें, और आप इस तरह अगर आप 10-10 मैसेज करेंगे तो हो सकता है कोई जो पहली बार हमें संदेशा भेज रहा है, अपनी फरमाइश भेज रहा है, वो हमारी आंखों से ओझल हो जाए। चलिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आप में से किसी एक की पसंद

0: आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
1: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
2: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
3: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।

0: खरीदारी का साथ।
1: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
2: वेलकम जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 100.1 MHz आपके साथ। आज शनिवार की दोपहरी सीमा वर्मा, हर बार की तरह आपको मैं एक बार फिर वो पता बता दूं जिस पर आपको अपना जो संदेश है हम तक पहुंचाना है, fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। जल्दी जल्दी से हम तक मैसेज पहुंचाइए क्योंकि 3:38 और बस 55 सेकेंड हो गए हैं, तो फिर आप ये ना कहिएगा कि हमारा जो संदेश है वो नहीं दिया गया। झारखंड से उत्तम कुमार भगत जी हैं, श्वेता भगत हैं, किसु तासु और अर्णव आनंद है, इनके साथ सत्यमानंद भी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्या कहूं उत्तम कुमार जी, जितने भी आपके दोस्त हैं ना, आप उनकी तरफ से नाम ना लिखें, आप उन्हें कहें कि

FM गोल्ड 100.1 पर एक प्रोग्राम आता है, उसे सुनिए और फिर उसमें अपनी फरमाइश खुद भेजिए, तो मज़ा एक अलग होता है। चलिए, यहाँ ये कस्बा बिलराम से हमारे पास ये संदेश आया है। किसने भेजा है? इरशाद अहमद शाह साहब हैं, शाहजहाँ बेगम हैं और मरियम जी हैं इनके साथ। और भी आपके पता है बहुत सारे संदेश आए हैं, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो रेगुलर हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनके नाम भी हमें याद हो गए हैं। कल गाड़ी चला रही थी, मन भावन सुन रही थी, तो मैं जब मैं सुन रही थी वो नाम जो आरजे कह रही थी, तो मुझे याद आ रहा था कि ये वो हमारे साथी हैं जो रेगुलर हमें सुनते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। छत्तीसगढ़ से यहाँ पर रोशन लाल देवगन हैं, कौशल्या देवगन जी हैं और हेमलता डिम्पल देवगन हैं। और मुझे जब एहसास होगा कि मैंने बहुत सारे नाम ले लिए हैं, तो मैं ना बीच में एक दिलकश दखल अंदाजी करूँगी एक बहुत खूबसूरत मेलोडियस गीत की। कोल्हापुर से हमारे पास संभाजी सुतार जी हैं और चेतन सुतार हैं और इनके साथ हैं सारिका। और बहुत सारे मैसेजेस एक के बाद एक। गणेश जी, आपने दोबारा ये मैसेज भेज दिया है और ऐसे आप अगर करेंगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। चलिए, हरजिंदर सिंह भाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका। आप भी हमारे एक रेगुलर साथी हैं जो रोज़ मन भावन प्रोग्राम सुनते हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया जी ने जमशेदपुर से हमें संदेशा भेजा है और एंजल भाटिया, इनके साथ सोनू भाटिया हैं और पप्पी भाटिया हैं। अब मुझे एकदम से एहसास हुआ कि नाम जो हैं वो अच्छे खासे मैंने ले लिए हैं और अब बारी है एक गीत की। आप में से ही किसी एक हमारे साथी ने बहुत खूबसूरत गीत की फरमाइश की है। 1960 में ये फिल्म आई और पहले सुनिए इस गीत को, फिर महसूस कीजिएगा।

साथियों, मुकेश जी ने बहुत कम गीत गाए, शायद 1000 भी पूरे नहीं गाए, लेकिन उनके गाए हुए हर एक गीत को अगर आप आंखें मूंद कर सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि उन्होंने अपनी आवाज़ में पूरा का पूरा जो दर्द है वो उड़ेल दिया हो। ये खासियत एक सिंगर की होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले fmgold@delhi@gmail.com जी, आपको इस पते पर हमें अपना संदेशा भेजना है, और हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है आपके संदेश से जब हम पढ़ते हैं। अमोल मनकर साहब, आपने महाराष्ट्र से हमें ये अपनी चिट्ठी

एक सिंगर की होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले fmgoldaiadelhi@gmail.com जी, आपको इस पते पर हमें अपना संदेशा भेजना है, और हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है आपके संदेश से जब हम पढ़ते हैं। अमोल मनकर साहब, आपने महाराष्ट्र से हमें ये अपनी चिट्ठी भेजी है, डिजिटल चिट्ठी। अमोल जी हैं, इनके साथ शोभा ताई मानकर हैं, और दीपाली और श्लोक कुमार हैं, साथ में और भी इनके तीन साथी हैं, सहदेव दामोदर और शशिकला जी हैं, और सुमेद कुमार भी हैं इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए, और इसी तरह आप हमें अपने संदेशे भेजते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। एक के बाद एक आते हैं संदेशे, कई बार ना ओवरलैप भी हो जाते हैं, लेकिन वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी पूरी कोशिश रहती है। हाँ जी, ओम कुमार जी आप हमें भेज रहे हैं संदेशा, साथ में कुमकुम जी भी भेज रही हैं, तो एक साथ आप सबका नाम ले लें। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला और कुमकुम जी हैं, और इसके साथ साथ किशन वंजानी जी हैं, न जाने कहाँ से इन्होंने हमें ये लिखकर भेजा है। उत्तम नगर से बोधराज खोरवाल जी, कमला रानी हैं, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल हैं। अब आगे अगर बढ़ें हम तो चंडीगढ़ से सतीश अनेजा जी हैं, बिमला अनेजा हैं इनके साथ, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जी महावीर कॉलोनी सोनीपत से हमें भेजा है ये संदेशा प्रताप वर्मा जी ने, जी हाँ प्रताप वर्मा जी हैं ये। और इसके साथ साथ अब क्या कहते हैं आप, हम एक गीत सुन ले, चलिए एक एक संदेशा और ले लेते हैं। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल जी, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और आपने एक गीत की भी फरमाइश की है। गीतों की फरमाइश तो आपके हर मैसेज में सबकी ही होती है, लेकिन हम हमारे भी क्या करें, एक आध गाना ही सुना सकते हैं, हम नाम चाहे हम ज़्यादा ले लें, लेकिन गीत हम किसी एक की पसंद का सुना सकते हैं। लखपत राज जी, वेद प्रकाश चौहान जी और सुबेदार अमर सिंह जी, आपने कहाँ से हमें ये लिखा है, आनंद पर्वत दिल्ली से आपने हमें संदेशा भेजा है। बहुत सारे मैंने नाम ले लिए हैं, और एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गीत 80s का गाना है, और ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ मुझे हर बार ये गीत नया सा लगता है। अब ये आप सुनकर बताइए कि आपको भी ऐसा लगता है क्या। अच्छा, इस गीत में आवाज़ें किस किस की हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप जान ही जाएंगे। लता जी हैं, साथ में सुरेश वाडेकर जी हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

स्वागत जी एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 और शनिवार की दोपहरी है जो अब कुछ ही देर में शाम में तब्दील हो जाएगी। ऐसे में फिलहाल मन भावन प्रोग्राम का आप लुत्फ उठा रहे हैं, आपके साथ आपकी दोस्त सीमा वर्मा। और समय जो है वो अब इतना नहीं रहा है हमारे पास कि हम आपको पता बता सकें, लेकिन फिर भी अगर आपको नोट करना है आगे के लिए तो fmgold@delhi.gmail.com आप नोट कर सकते हैं। हमारे पास गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजशाह और चैतन्य मस्कीन, मेघा जी का मैसेज आया है। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, किशु और रिधान खुराना का भी ये संदेशा है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। नबी हसन अब्बासी साहब, शहनाज अब्बासी साहब, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन जी और

रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी जी हैं। आपने हमें कहाँ से ये संदेशा भेजा है? एटा से अभी आपने हमें ये संदेशा भेजा है। वहीं अगर हम भवानीगढ़ पंजाब की बात करें तो परमिंदर सिंह जी का संदेशा आया है और इनके साथ हैं लखन पाल हैं, इनके साथ सुरेंद्र कौर हैं और जसप्रीत हैं। अब मेरी एक नज़र घड़ी की तरफ है क्योंकि एक गीत तो आपको चलते चलते हमने सुनाना है, बड़ा खूबसूरत गीत है। तो आप अगर आप इजाज़त दें मुझे तो मैं नामों से हटकर ज़रा गीत की ओर आगे बढ़ती हूँ और आपको वो खूबसूरत गीत सुनाती हूँ। साहिल लुधियानवी जी का लिखा हुआ और बोल कुछ ऐसे हैं कि दिल में उतर जाते हैं।

साथियों, इसी के साथ अपनी दोस्त सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए मनभावन प्रोग्राम संपन्न करने की, और जिन साथियों का हमने संदेशा नहीं लिया है बस उनसे यही कहेंगे कि इतनी आसानी से कैसे भला हारेंगे तुम्हें, थक गए लब तो आंखों से पुकारेंगे तुम्हें। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर श्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। भारतीय प्रवासियों ने उनके स्वागत में पारंपरिक नृत्य और गायन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। इससे पहले प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 105वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन और विरासत से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त रीवा सुंदरजा आम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गया है। इसकी पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। इसके लिए रीवा के किसानों को ₹150 प्रति किलोग्राम का मूल्य मिला। ये मूल्य स्थानीय बाजार भाव से अधिक है। देविका सिहाग, कितांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय शगुन चोपड़ा।

स्वागत आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। वक्त नोट कीजिए साथियों, 4:11:13। आइए आपको आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 पर आने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे देते हैं। साथियों, आपसे कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर हम और आप मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार। 4:30 का वक्त न्यूज़ सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा और आप जानते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 पर हर घंटे आप समाचार भी सुनते हैं। और इसी कड़ी में बात अगर करें हम तो 5:00 आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, 5:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार सुनेंगे और 5:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। 5:30 गाते गुनगुनाते आप सुन सकते हैं मेरे यानी सीमा वर्मा के साथ और हम रहेंगे 80 और 90 के दशक के गीतों के साथ। 6:00 हिंदी में समाचार होंगे, 6:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार होंगे और इसके बाद कौन आपसे मुखातिब होंगी किस कार्यक्रम को लेकर, ये आप तक हम ज़रूर जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आइए खूबसूरत गीत सुन लेते हैं फिल्म अगर तुम ना होते का।

साथियों, लता जी के गाए हुए इस गीत के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में कौन कौन से कार्यक्रमों का आप आनंद ले सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि आप ट्यून्ड हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 के साथ और 6:10 पर आप सदाबहार गीतों के साथ होंगे, साथ आपके होंगी विभा लक्ष्मी। 6:20 पर शाम संस्कृत में समाचार आप सुन सकते हैं और 6:30 का वक्त मार्केट मंत्रा का रहेगा। और साथियों, आप 7:25 पर सांझ ढले जरूर सुनिएगा, विभा लक्ष्मी आपके साथ रहेंगी कुछ खूबसूरत गीतों के साथ और जानकारियों के साथ। एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम 8:10 पर आप सुन सकते हैं जिसका नाम है मधुरिमा, जिसके साथ आप गीतों को तो ज़रूर जोड़ेंगे लेकिन उनके शास्त्रीय अंग के बारे में भी आप जान पाएंगे। तो अब हम एक गीत सुनते हैं और इस गीत के बाद हम सब मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़।

0: मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण में चेयर प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। समेकित वेतन रहेगा 2,00,000 रुपए प्रतिमाह। निर्धारित आवेदन प्रारूप, अनिवार्य योग्यता, अनुभव, सामान्य नियम और शर्तें, सेवाएं और अन्य विवरण के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.curaj.ac.in। आवेदन की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 6 जुलाई 2026। भारत सरकार का उपक्रम पवन हंस लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक रिक्तियों की संख्या 1, कनिष्ठ तकनीकी सहायक क्वालिटी 2 रिक्तियां, कनिष्ठ अभियंता सिविल 1 रिक्ति, सहायक CAMO 2 रिक्ति, सहायक 1 रिक्ति, स्टेशन इंचार्ज 2 रिक्तियां तथा प्रशिक्षु तकनीशियन ट्रेनी तकनीशियन 13 रिक्तियां। विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए देखिए पवन हंस लिमिटेड की वेबसाइट www.pavanhans.co.in। इस वेबसाइट पर जाकर करियर टैब पर लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 10 जुलाई 2026। सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू और कश्मीर आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इन पदों के लिए TGT अंग्रेजी 2 रिक्तियां, TGT विज्ञान 1 रिक्ति, TGT गणित 1 रिक्ति, बढ़ई 1 रिक्ति और इलेक्ट्रीशियन 1 रिक्ति। अधिक जानकारी और आवेदन पत्र के लिए देखिए स्कूल की वेबसाइट www.sainikschoolnagrota.com। प्रशासनिक या नीतिगत कारणों से रिक्तियों को बढ़ाने, घटाने या रद्द करने का अधिकार स्कूल प्रशासन के पास है। आवेदकों को इसके लिए कोई औपचारिक सूचना नहीं दी जाएगी। सैनिक स्कूल नगरोटा सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक आवासीय स्कूल है। पशुपालन और डेयरी विभाग आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए रिक्तियां। पशु पोषण विशेषज्ञ 1 रिक्ति, भर्ती की पद्धति रहेगी प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है। पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और बायोडाटा प्रोफॉर्मा आदि देखने के लिए आवेदक पशुपालन और डेयरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं जिसका पता है dahd.gov.in। आवेदन इस पते पर भी भेजे जा सकते हैं। सुश्री अनामिका निगम अवर सचिव पशुपालन और डेयरी विभाग राइट स्टिल्ट फ्लोर चंद्रलोक बिल्डिंग जनपथ नई दिल्ली 1। ईमेल आईडी है anamika.edu.nic.in। बुनकर सेवा केंद्र वीवर्स सर्विस सेंटर खानापारा गुवाहाटी इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कनिष्ठ बुनकर 10 पद, कनिष्ठ छपाईकर 3 पद, कनिष्ठ सहायक बुनाई 3 पद, कनिष्ठ सहायक प्रसंस्करण 2 पद और परिचारक बुनाई 7 पद तथा बढ़ई 4 पद। इन पदों के विरुद्ध भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या चयन के समय सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा नियुक्ति अधिकारी को बिना कोई कारण बताए नोटिस को रद्द करने का या सुधार का भी अधिकार है। योग्यता आयु सीमा चयन प्रक्रिया और आवेदन प्रपत्र के बारे में देखिए वेबसाइट पर जानकारी। वेबसाइट का पता है www.handlooms.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार करिश्मा एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज विद शगुन चोपड़ा एंड करिश्मा राय टुडे। Well, Karishma was telling us about the last segment of the program where we pay our tributes to the personalities who made a difference. So in that particular section, listeners, we will be remembering the man who made music magic. Well, more on that later in the show. In about 20 minutes, actually. And we also have a selection of news. Our discussion segment, Dateline India, we will be discussing two topics, not just one, but two topics today, and other reports and capsules as well. Let's begin with the headlines first. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles for a three-day state visit, describes Seychelles as a valued maritime neighbor and a key partner in India's vision Mahasagar.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारी में से एक मानता है, दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं।
1: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat.
0: तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन।
1: IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next two days.
0: और FIFA फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ एक-एक गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा।
1: Well, listeners, this is our discussion segment, Dateline India. So let's begin with it. Well, I want to begin with the question, what comes to your mind when someone talks about building a strong economy? Well, I'm sure, it was a rhetorical question, it must be massive factories or maybe corporate headquarters or rather towering scrapers. Well, certainly they matter a lot. And I'm not denying the fact that that fact, but what if I told you that some of India's biggest economic success stories begin in places much smaller, in a village workshop or in a family-owned enterprise or maybe in a tiny manufacturing unit? Well, think about it.
0: बिल्कुल सही कहा शगुन आपने, और हर मोहल्ले में एक ऐसा भरोसेमंद दर्जी होता है जो हमेशा समय पर काम पूरा करता है। और हमारे इलाके की उस पसंदीदा मिठाई की दुकान के बारे में भी जरा सोच लीजिए, जिसके बारे में हर कोई घर आने वाले मेहमानों को बताता है क्योंकि पीढ़ियों से उसका स्वाद वैसा ही बना हुआ है।
1: एंड जस्ट टू ऐड देयर, perhaps a young entrepreneur who started selling handmade products online and now delivers across the country. Well, individually, they may seem like small businesses, but together, they form one of the strongest pillars of India's economy. Well, these are India's micro, small and medium enterprises, which we better know as MSMEs.
0: और हर साल 27 जून को यानी आज दुनिया भर में यूएन एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों एमएसएमई उद्यमों का जश्न मनाने के लिए है जो अर्थव्यवस्थाओं को जमीनी स्तर से मजबूत बनाते हैं। दुनिया भर के कुल व्यवसायों में लगभग 90% हिस्सेदारी रखने, वैश्विक रोजगार का 60-70% हिस्सा पैदा करने और दुनिया के जीडीपी में आधी तक का योगदान देने वाले एमएसएमई आर्थिक विकास, इनोवेशन और आजीविका की रीढ़ हैं।
1: Of course, true. The United Nations designated June 27th as MSME Day in 2017, of course, recognizing their vital role in achieving sustainable development. So today, these MSMEs, they are doing far more than running businesses. So they are contributing a lot and they are actually creating jobs, preserving traditional crafts as well.
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये वे इनोवेशन को भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं और साथ ही एक्सपोर्ट में मदद कर रहे हैं, और इसके अलावा अनगिनत सपनों को हकीकत में भी बदल रहे हैं। कई मायनों में

0: भारत के एमएसएमई की कहानी भारत के बदलाव की कहानी है।
1: सो करिश्मा, वन स्मॉल आइडिया बिकम्स एम्प्लॉयमेंट फॉर मेनी एंड वन एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्म्स एन एंटायर फैमिली। This is how actually real economic growth in reality spreads. And as these enterprises continued to grow, India recognized that they needed greater support. And that's why the definition of MSMEs was revised last year, giving businesses more room to expand while continuing to enjoy policy benefits. After all, success should never become a reason to lose support. Instead, growing businesses should be encouraged to dream even bigger. Well, in the year 2025-26, this happened exactly, and it became a landmark year for India's MSME ecosystem. More than 8.7 crore enterprises registered through the Udyam registration portal and Udyam Assist platform, bringing millions of businesses into the formal economy.
0: बिल्कुल, और छोटे व्यवसायों के लिए फाइनेंस या लोन मिलना अक्सर सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहता है। सोचिए कि आप अपनी वर्कशॉप को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लोन के लिए महंगी गारंटी या गिरवी रखने के लिए कोई भी चीज नहीं दे पा रहे। बहुत सारे उद्यमियों के लिए यह एक आम समस्या रही है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को मजबूत किया।
1: And how did they did it exactly? Well, they increased the ceiling from 5 crore rupees to 10 crore rupees. So collateral free loan guarantees, they were expanded. India's traditional industries are also writing remarkable success stories. We'll tell you about it with an example. Well, if we consider khadi as an example, once seen mainly as a symbol of India's freedom movement, today it has become a symbol of sustainable growth and rural entrepreneurship, don't you think, Karishma?
0: बिल्कुल, और खादी और ग्राम उद्योग की बिक्री 1,27,000 crore रुपए के शानदार आंकड़ों को पार कर गई है। अच्छा शासन सिर्फ नीतियों के बारे में नहीं है, यह तब समस्याओं को हल करने के बारे में है जब लोगों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उत्पाद बनाना तो बस आधी यात्रा है, ग्राहकों को खोजना भी उतना ही जरूरी है। सरकारी खरीद को बढ़ावा देने वाली पहलों और एमएसएमई उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म के जरिए हजारों उद्यमों को ज्यादा पहचान मिल रही है।
1: एंड करिश्मा, एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री डिस्प्लेड देयर प्रोडक्ट्स, एंड दिस वाज डन अंडर द इंस्पायरिंग थीम ऑफ वाइब्रेंट एमएसएमईज विकसित भारत। And this was made even more special, well, with more than 2/3 of the participating stalls, they belonged to women entrepreneurs.
0: और इसके साथ ही श्रोताओं, कई अन्य लोगों ने एससी एसटी और दिव्यांग उद्यमियों का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि सच्चे विकास का मतलब यह सुनिश्चित करना है कि हर किसी को सफल होने का मौका मिले। हर सफल उद्यम के पीछे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होता है, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण पीएम विश्वकर्मा है, जो भारत के पारंपरिक कारीगरों के लिए समर्पित एक योजना है।
1: So, carpenters, blacksmiths, basket makers, and many other artisans, they are receiving skill training, affordable credit, and digital support. And if we talk about rural India, Northeast region, first generation entrepreneurs, women-led enterprises, and even modern startups, the journey of India's MSMEs is becoming increasingly inclusive.
0: और जैसे जैसे भारत विकसित भारत 2047 के विजन की ओर बढ़ रहा है, MSME की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। हर सफल उद्यम की शुरुआत एक साधारण सपने से होती है, एक ऐसा सपना जिसे कड़ी मेहनत से सवारा गया हो, जिसे अवसरों का साथ मिला हो, और जो इनोवेशन से मजबूत हुआ हो, और इसके साथ ही जिसे आम भारतीयों के दृढ़ संकल्प से ताकत मिली हो।
1: सो ऑर्डिनरी इंडियंस डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, व्हेन मिलियंस ऑफ सच ड्रीम्स दे कम टुगेदर, दे डोंट जस्ट बिल्ड बिजनेसेस, दे बिल्ड एन एंटायर नेशन। एंड परहैप्स दैट्स द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ इंडियाज एमएसएमई स्टोरी। नो ड्रीम इज एवर टू स्मॉल व्हेन इट्स बैक्ड बाय द स्पिरिट ऑफ इंडिया। हाउ ग्रेट। नाउ वी मे प्रोसीड। Today it's also International Day of Deaf Blindness.
0: तो श्रोताओं, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कभी बिना ठीक से देखे या सुन पाए दुनिया में चलने फिरने की कोशिश की हो कभी आपने? अब सोचिए कि अगर दोनों ही क्षमताएं चली जाए तो क्या होगा। दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए यह हकीकत है। डेफ ब्लाइंडनेस यानी कि बधिरांधता केवल अंधेपन और बहरेपन का योग नहीं है, बल्कि यह एक अद्वितीय और बेहद जटिल संवेदी विकलांगता है।
1: So it is a disability with its own challenges, where vision and hearing cannot compensate for one another, making everyday communication as well as mobility

0: the education and even the simplest activities and interactions incredibly difficult. Well, imagine not being able to hear your loved one's voice or see their smile, and other people, birds, animals.
1: बिल्कुल और बिल्कुल और शगुन जरा सोचिए कि आपको बातचीत करने की जरूरत है लेकिन आपको पता चलता है कि दुनिया आपको समझने के हिसाब से बनी ही नहीं है तो आप कैसे बातचीत करेंगे जो लोग सुन और देख नहीं सकते उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट उनकी विकलांगता नहीं होती बल्कि उनका अदृश्य होना होता है क्योंकि सुनने और देखने की अक्षमता को अक्सर एक अलग ही विकलांगता के तौर पर नहीं पहचाना जाता इसलिए अनगिनत लोग नीतियों सरकारी कार्यक्रमों और यहाँ तक कि सरकारी आंकड़ों में भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं
0: Well, yes, when you're invisible in the system, access to education, healthcare, employment and essential services becomes an uphill battle. But inclusion begins with recognition. So recognizing them, the United Nations declared June 27th as the International Day of Deaf Blindness and this date It actually marks the birth anniversary of Helen Keller, an extraordinary author, educator, global advocate. Well, we know her for her timeless. She has been a timeless symbol of courage, resilience and determination. So despite being deafblind, Helen Keller broke barriers through education and unwavering perseverance, inspiring generations across the world. So, and she also proved that deafblindness does not define a person's potential.
1: और उनकी जिंदगी इस बात की एक मिसाल बन गई कि जब समाज रुकावटें खड़ी करने के बजाय उन्हें हटाता है तो संभावनाएं असीमित हो जाती हैं असल समावेश का मतलब सिर्फ ऐसी जगहें बनाना नहीं है जहां आसानी से पहुंचा जा सके
0: एग्जैक्टली करिश्मा इट्स अबाउट इंश्योरिंग दैट नो वन इज अनसीन नो वन इज अनहर्ड एंड नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड So listeners, as part of our series Prakriti Ki Baat Akashwani Ke Saath, we bring you a conversation on Chhattisgarh's Garbage Cafe. Run by Ambikapur Municipal Corporation, the cafe offers meals in exchange for plastic waste. And in this program, we speak to Ritesh Saini, in charge of the Garbage Cafe.
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ
0: To listen to the conversation, tune into 100.1 Akashwani Gold today evening at 5:10 p.m. You can also listen to it on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m.
1: और श्रोताओं समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है
0: So Karishma, we'll head to Kozhikode first. Well, I want to begin with this. Drugs actually, this idea actually, drugs don't just destroy lives, they threaten the future of an entire generation. I'm sure everybody would agree with me. From stricter enforcement to public participation, the battle against narcotics is gathering momentum. With the centre and states working in close coordination, anti-drug operations are being intensified across the country and Kerala's Operation Tufan is emerging as a key example of this united effort. Let's find out more details now.
5: The central and state governments are taking strong steps across the country against narcotics that are destroying the new generation. The International Anti-Drug Day was observed on June 26 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi's government to focus on accelerating the fight against narcotics. The Narendra Modi government has adopted a zero-tolerance policy against drugs. Operation Tufan, which is being implemented in Kerala, is strengthening the fight against narcotics. The state government has formulated a plan to suppress the mafia gang by detecting all drugs products, including chemical drugs, crossing the border. Special squads and investigation teams of the police and excise have been formed in each district as part of

0: prominent individuals into Operation Tufan Warriors, especially in the border areas of Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod in Malabar. The investigation teams are paying special attention to seizing the drugs that the drug mafia operating in Bengaluru is trying to smuggle through luxury cars, buses and other vehicles. The other day, a pledge against drugs was organized in schools in each assembly constituency under the leadership of MLAs. After the announcement of Operation Tufan, 417 cases were registered in Kozhikode district alone till June 25th and 422 people were arrested. 2,954 cases were registered in the state. 3,176 people were arrested with narcotics. Suresh VK for Parikrama, Akashvani News, Kozhikode.
1: और बढ़ते आगे बात करते हैं मुंबई की. महाराष्ट्र में बारिश के मौसम में पानी की बूंदों के साथ ही उमड़ता है भक्ति का सैलाब. लाखों वारकरी मन में विठोबा से मिलने की आस को लेकर पंढरपुर का रुख करते हैं. पूरे महाराष्ट्र सहित आसपास के इलाकों से विभिन्न संतों की पालकियां आषाढ़ी वारी में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान करती हैं. उन्हीं में से है संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की छोटी बहन संत मुक्ताई की पालकी हाल ही में रवाना हुई. सुनते हैं यह कहानी हमारी मुंबई संवाददाता से.
2: विठोबा के नाम का जय घोष, तार और मृदंग की गूंज के बीच संत मुक्ताई की पालखी अहिल्यानगर जिले के मुक्ताई नगर तहसील के कोथड़ी गांव से पंढरपुर की ओर चल पड़ी है. लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ये केवल एक डिंडी है. इसके बारे में हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं संत मुक्ताई संस्थान के अध्यक्ष रविन्द्र पाटिल.
3: इस साल 318 साल मुक्ताबाई का वारी का है. मुक्ताबाई की वारी यानी पालखी जो है इसका अनन्य साधारण महत्व है. ज्ञानेश्वर, सोपान, निवृत्ति, मुक्ताबाई ये चार भाई बहनों का जो उपदेश महाराष्ट्र में किया जाता है या उनका इतिहास उसका पुनर्जीवित किया जाता है. जो उन्होंने समाज के लिए उपदेश किया है ज्ञानेश्वर के माध्यम से, उसी तरह से समाज में वारी का अनन्य साधारण महत्व है. महाराष्ट्र एक संतक भूमि है. हमारी संत मुक्ताई की पालखी पंढरपुर जाने के लिए 30 दिन लगते है. 600 किलोमीटर का प्रवास है. 5,000 वारकरी इससे शामिल होते है. इस साल अनन्य महत्व ऐसा है. इसी संत मुक्ताई के लिए पंढरपुर जाने के लिए चांदी का रथ इस महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय नामदार एकनाथजी शिंदे साहब इन्होंने चांदी का रथ समर्पित किया है. उसके साथ मुक्ताई पंढरपुर में जा रही है.
2: वारी संत भूमि महाराष्ट्र की शताब्दियों से चली आ रही एक ऐसी अनूठी परंपरा है जो विठोबा के प्रति वारकरियों के अपार प्रेम को तो दर्शाती ही है, साथ ही सभी भेदभावों को किनारे रखकर मानवता की पताका ऊंची रखने की सीख भी देती है. परिक्रमा के लिए राजेश यावलकर के साथ मुंबई से मैं अंकिता आप्टे.
4: Now, let's head to Vijayawada. NTR district in Andhra Pradesh has earned national recognition with its innovative Ignite Cell, winning the prestigious SCOT Award for Excellence in Public Service and Citizen-Centric Governance. The award was presented at a function in New Delhi recently. Let's find out more details.
5: The Ignite Cell, which stands for Information for Growth through Nurturing Income-Generating Innovation, Technology and Encouraging Entrepreneurs, was launched in line with the state government's long-term development vision. The initiative operates at the district collectorate and the aspirational blocks of Penuganchu Prolu and Ibrahimpatnam. A different government department runs the cell each day to create awareness about welfare schemes and development programs while providing guidance on financial assistance, technology, marketing and entrepreneurship. NTR District Collector Dr. Lakshmi Shah said, The initiative has strengthened last-mile delivery of government services, promoted innovation and encouraged self-employment, reflecting NTR District's commitment to effective people-centric governance. The collector described the award as a recognition of the collective efforts of Team NTR District and congratulated officials for successfully implementing the initiative. He said the honor would inspire the administration to work with greater commitment towards achieving the goals of Swarna Andhra 2047 and Viksit Bharat. Allu Murli for Parikrama, Akashvani News, Vijayawada.
1: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की, जहां मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है. अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ खेला. राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा. हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है. और एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली.

0: 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया।
1: Well, PT Usha, one of India's greatest athletes, often called the country's queen of track and field, a very happy birthday to her. Today, listeners, we're also remembering Josephine Cottle. We know her professionally as Gail Storm. Well, the singer and actress, after a film career from 1940 to 1952, she starred in two popular television programs of 1950s as well. The Gail Storm Show is one of this. And the track that you're listening to in the background is Teenage Prayer. It's
2: the answer to a teenage prayer.
0: और इसके साथ ही आज हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक नितिन मुकेश का जन्मदिन है। और आपको बता दें कि अपनी मधुर और भावपूर्ण गायकी के दम पर उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत में विशिष्ट पहचान बनाई। 1970 के दशक में अपने करियर की शुरुआत करने वाले नितिन मुकेश ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, ख्याम पप्पी लहरी और नदीम श्रवण और आनंद मिलिंद जैसे संगीतकारों के साथ काम किया और उनकी आवाज में रिकॉर्ड हुए कई गीत आज भी श्रोताओं के बीच लोकप्रिय है।

0: और इसके साथ ही तमिल भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अकिलन को भी आज हम याद कर रहे हैं। वे तमिल साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार, कहानीकार और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित थे और उन्हें कई अवार्डों से सम्मानित किया गया, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी शामिल है।
1: Well, today we're also paying tributes to R.D. Burman, the pluralist who redefined film music, fondly known as Pancham. Well, Pancham, the eminent musician and composer, brought together Indian musical traditions and Western rhythms in a distinctive style.
2: 27 June 1939.
0: तो आपको बता दें कि वे प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन के पुत्र थे और इसके साथ ही उन्होंने कई पश्चिमी और भारतीय संगीत का अनूठा मिश्रण दिया था।

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इसी के साथ करिश्मा और शगुन चोपड़ा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर, और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सराईपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर, सूरजपुर और रामानुजनगर में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये सरहरी, करंजवार, सिंगरा, कैराडांड, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, सलका, मूड़गांव, शिवनगर, जनार्दनपुर, मेंढरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और रघुनाथ नगर में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधमा, बदौली, पेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, चीनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया, सोनहत, नवगई, गैना के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, चौरपानी, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराज, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, राजा आमा, महेशपुर, बालाझर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 132 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगुरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, तालदादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडईपानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमरघाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

हमर हाथी हमर गोठ ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का। हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे रहे हैं। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10 बजे सुनिएगा प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती सुनिएगा रात 9:30 पर और स्पोर्ट्स कैन प्रसारित होगा रात 8:30 पर। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में अपन गोठ का विषय होगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस। होंगे क्रम आप मन के चिट्ठी और माटी के गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे शिव दयाल पटपरिया और साथी। इस कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे विदुषी ममता चंद्राकर और साथी। किसानों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज के बाद का विषय होगा संतुलित खाद अपनावो अब अपन खेत ला बचावो। शाम 7:30 पर किसानवाड़ी में आज की सलाह में सुनिएगा खेत बचाओ अभियान मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संतुलित उर्वरकों का उपयोग विषय पर डॉक्टर कुणाल चंद्राकर मृदा वैज्ञानिक विषय वस्तु विशेषज्ञ मृदा विज्ञान महासमुंद द्वारा दी गई जानकारी। आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे रहे थे। अब सुनिए कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन सुनिएगा कल सुबह 11 बजे। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुनिएगा कल शाम 6:30 से 6:45 तक। शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक। रात 8:30 से रात 8:45 तक और रात 9:15 से मैच की समाप्ति तक। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद सुनेगा कल सुबह 11:30 पर। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुनेगा कल रात 8 बजे। बच्चों का कार्यक्रम किसलय सुनेगा कल सुबह 8:30 पर। इसमें सुनेगा बच्चों की डायरी संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करें योग रखे निरोग ज्ञान विज्ञान की बातें में सुनिएगा वार्ता खेल खेल में गणित। वार्ताकार होंगी श्रीमती राजश्री देवांगन। होंगे क्रम बाल मुख से और बाल गीत। कल सुबह 9 बजे सुनिएगा खेल संसार। इसमें सुनिएगा उत्तराखंड हल्द्वानी में म्यू थाई जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में शामिल छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी समीधा अग्रवाल से भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे रमा शंकर। फोन इन फरमाइश सुनिएगा कल सुबह 10 बजे। कल दोपहर 12 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे मेहदी हसन। जिले की चिट्ठी में सुनेगा जशपुर जिले की चिट्ठी कल शाम 6:05 पर आलेख तरुण प्रकाश शर्मा का होगा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युवा

0: खेत खार मा अन्न उगा के सबला मही खवाता हूँ।
1: आंसू पी के पेट पोस के धर्म ला अपन निभाता हूँ।
0: दुख पीरा ला सही के भैया कौड़ी दाम ला पाता हूँ।
1: कुकरा बासत बड़े बहनिया सबले पहले उठ जाता हूँ।
0: संगवारी हो आप जम्मू के माया में खिंचावत आज की युवानी ला सजाए बर आज आगेन आपके दो संगवारी मैं तृप्ति भारती
1: और मैं लिनी मासाहू तझो को हम दोनों के माया भरे
2: राम राम जय जोहार।
0: लिनी माँ
1: हाँ
0: एक बात बता संगवारी
1: हाँ
0: मोरले कुछ गलती हुए है का
1: नहीं तृप्ति
0: या तोला ऐसे कुछ बात बोल पा रहे हो जो तोर मनला नहीं भाईस
1: ऐसे तो कुछ बात नहीं है संगवारी फिर ते ऐसे काबर कहा थस
0: लिनी माँ
1: हाँ
0: तोर कना परन दिन घलो फोन करे रहे हूँ काली घलो फोन करे रहे हूँ
1: हाँ।
0: थोर किन व्यस्त हूँ तृप्ति आन दिन फोन लगा हूँ के हेस और तोर तो आन दिन हा आबिच नहीं करे संगी
1: सबले पहली तो तोर से मैं माफी मांगत हूँ तृप्ति कि तोला बेरा नहीं दे पाहूँ कहके ओ काहे न संगवारी मैं हा आगामी प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करना चाहता हूँ ओखरे बर बने असन कोचिंग सेंटर लखोजे के चक्कर में ना तोला बेरच नहीं दे पात्र हूँ
0: लिनी माँ
1: हाँ
0: वैसे तेहा का बनना चाहत हस
1: ये तो तेहा बड़ अच्छा सवाल पूछे है तृप्ति
0: हाँ?
1: मैं है ना शिक्षिका बनने के सपना देखे हो संगवारी
0: ये तो बहुत अच्छा बात है संगवारी
1: हाँ
0: भगवान करे तोरे सपना हाँ बहुत जल्दी पूरा होए
1: बिल्कुल संगवारी और तोरो बारे में कुछ बता ना तृप्ति
0: लिनी माँ
1: हाँ
0: मैं हाँ सोचा था दोना पत्तल के एक ठीन मशीन ला अपन घर मा जेमा एक ठीन कुरिया हा खाली है नहीं उहीचे एक ठीन मशीन लगा ले ए मशीन घलो बहुत ज्यादा महंगा नहीं रहा है
1: हाँ?
0: एक हर बार लोगन के व्यवस्था भी हो जाही दोना पत्तल बनाए के कच्चा माल कहाँ ले मिलही मैं पता कर डाले हूँ और बने के बाद एक हर सप्लाई में हा कहाँ कहाँ कर सकत हूँ एकर बारे में घलो मुला पता चल गई है दोना पत्तल के ये उद्योग लगाए के बाद हमन आसपास के मनखे मल्ला घलो अपन यहाँ काम देके रोजगार दे सकबो
1: का बात है तृप्ति तेहा तो पूरा योजना बना डे रहे हाँ। भाई तेहा ना सूक्ष्म उद्योग के निर्माण करना चाहता मतलब
0: सूक्ष्म उद्योग ये का होते लिनी माँ
1: तृप्ति
0: हाँ
1: आज ना एक ठिन विशेष दिवस आए
0: हाँ
1: आज आए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस जौन ला हर बच्चर 27 जून के मनाए जाते जौन ला ए उद्देश्य के संग मनाए जाते कि कोनो भी लोगन बेरोजगारी के सामना मत करे जम्मो ला रोजगार या फिर स्वरोजगार प्राप्त होवे और सरकारी योजना ला घलो बढ़ावा मिल सके
0: बड़ सुघली नीमा अब ए बता संगवारी इस सूक्ष्म उद्यम होते का
1: तृप्ति
0: हाँ
1: इस सबले छोटे प्रकार के उद्योग होते जौन ला घर या फिर छोटे कार्य स्थल में संचालित करे जाते जैसे कि अगरबत्ती बनाए के उद्योग मोमबत्ती बनाए के उद्योग अचार और पापड़ बनाए के व्यवसाय उसने ही सिलाई कढ़ाई के काम
0: और लघु उद्यम का होते लिनी माँ
1: अब ते बने एकदम जिज्ञासु प्रवृत्ति होके पूछा था तृप्ति हाँ। तब मेला भी बताए मैं बड़ मजा आवत है
0: बताओ
1: हमर संगवारी मल्ला घलो बने जानकारी मिलत हो ही
0: हाँ।
1: तृप्ति ए जोन सूक्ष्म उद्योग के बड़े उद्योग होते ना एमा मशीन के उपयोग होते और ज्यादा लोगन मन ला रोजगार मिलते ए होते बड़का उद्योग जैसे कि फर्नीचर बनाए के फैक्ट्री बेकरी रेडीमेड कपड़ा बनाए के उद्योग मसाला बनाए के उद्योग और पैकेजिंग उद्योग
0: और ये मध्यम उद्यम का होते लेनी मा
1: ए है ना लघु उद्योग ले बड़े उद्योग होते तृप्ति एमा आधुनिक मशीन के उपयोग करे जाते और कर्मचारी के संख्या घलो ज्यादा रहते
0: हाँ।
1: और एकर उत्पाद ना देश के आने आने भाग और कभू कभू विदेश में घलो बेचे जाते जैसे कि ऑटो पार्ट्स निर्माण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दवा निर्माण उद्योग प्लास्टिक उत्पाद बनाए के उद्योग या फिर इंजीनियरिंग उपकरण बनाए के उद्योग
0: और तय बतात रहिस कि एकर ले संबंधित सरकारी योजना घलो चलाए जाती की के ओखरो बारे में थोरकुन बता भाई
1: हाँ तृप्ति एकर ले संबंधित बहुत से सरकारी योजना घलो है जेकर हमन फायदा उठा सकते
0: हैं हाँ।
1: जेमा स्व सहायता समूह जो ग्रामीण महिला मन क्रियान्वित करते प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम उद्यम पंजीकरण और कतकोन आने आने योजना है तृप्ति जेकर ले हमन लाभ उठा

0: सकथन।
1: ऐसे का मैं हा संगवारी अब तोर बात लेना पूरा समझ गया। आज के हमर विशेष दिवस सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस ला तेह कतका सुघर ढंग ले समझाए, बड़ सुघर जानकारी देस लेनी माँ। और मोर संग माँ हमर श्रोता संगवारी मन घलो समझ गे। तो संगवारी हो, आज के सुघर दिवस के जानकारी ला इही मेर सिरावत, आवो सुनथन माटी के ए सुघर गीत ला।

0: मोर पर गंगा मोर पर काशी मोर पर चारो धाम किसानी
1: मोर पर चारो धाम किसानी मोर पर चारो धाम किसानी
0: मोर पर गंगा मोर पर काशी मोर पर चारो धाम किसानी।

0: उठो जवान जागोरे, संगवारी हो अभी आप मन सुनत रहो माटी के सुघर गीतला जिनला अपन सुर देवत रीन है धुरवा राम मरकाम और दुखिया पाई मन हा।
1: और सुने बर चाह रही हमारे संगवारी मन, कुटेना पांडुका ले झामेश्वरी टीकम धुरवा भूषण कुसुम वासु मोक्षमन बागबहरा भदरसी ले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन पथरिया ले चंदुला सिंगरौल नारायणी नोमेश नेहा वान्या सिंगरौल बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति प्रहलाद वर्मा मन पहांदा ले नीतीश कुमार तनुजा देवांगन ईशांत लखनलाल देवांगन बाजार वार्ड महासमुंद ले भीष्मदास नर्मदा हीरमणि दीपक दास रानीगांव नगरी ले खिलेश कुमार साहू चित्रेखा शुभम सेजल साहू लच्छनपुर ले रामजी साहू जीवन लाल रजक निम्मी शिवम साहू मन हा। लिनिमा कालिच्चे देखना ते कहात रहेस कि तुहा डहान पानी नहीं गिरत कह के।
0: हाँ संगी,
1: अब हमार डहान झमाझम पानी गिरीस।
0: अच्छा
1: पानी गिरते ना
0: हाँ,
1: त कभू कभू मोर असन पानी मा झूमे के मन हो जाते।
0: तृप्ति मैं सच बताऊ तय है ना मोर मन के बात ले एकदम कहीं डर तृप्ति।
1: लिनिमा
0: हाँ,
1: जब मोर अपन पंख ला फैला के नाचते
0: हाँ,
1: तब मन मोही ले थे
0: हाँ।
1: ये दर्शाते कि वो स्वतंत्र रूप ले अपन खुशी ला बयां करते।
0: बिल्कुल संगी
1: हाँ।
0: ओ चाहे कोनो प्राणी हो तृप्ति, स्वतंत्र रूप ले हर कोई जीना चाहते और ये हमारे सबजन के अधिकार घलो हाँ। हवे कोनो भी चिरई चिरगुन या फिर कोनो भी चिरई चिरगुन होगे ना तो ओला बांध के नहीं रखना चाहिए। जैसे हमारे जिंदगी है उसने उखरो जिंदगी है और संगवारी हो यही गोट संग। चलो आवाज सुनथन माटी के सुघर गीतला।

0: संगवारी हो, अभी आपन सुनत रहे हो माटी के सुघरकन गीतला, जेनला अपन सुर देवत रहीन है भगत साहू और साथी मन हा।
1: और सुने पर चाह रहीन हमारी संगवारी मन भदरसी ले घना राम सेन, गीतेश दीपेश निर्मला सेन, इंदिरा चौक तखतपुल्ले मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विशाल मानस विश्वकर्मा मन, अड़ार नांद घाटले माखन वर्मा, चांदनी राहुल गोपी वर्मा, पिपरपारा पालचुवाले उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता दिवाकर, मुंडा टोला ले डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी चंचल माहिर नेताम, बोरसरा नैला ले प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी विनोद साहू, बाघामुड़ा ले प्रज्ञानंद देवांगन, नंदनी प्रकाश गायत्री देवांगन, खल्लारी भीम खोजले जी एल साहू, सरोज छोटी पिंकी मन। लिनीमा,
0: हाँ
1: मैं जानत हूँ ते आज काबर आहस तिला।
0: काबर हूँ संगी।
1: हाँ तो आज शनिवार हरे नहीं लेनी माँ।
0: अच्छा तो ते जान रहे संगी की मैं कब आ रहा हूँ। का होते ना संगी, सनिचर के आते संगवारी मन के बड़कन पाती।
1: हाँ
0: और मोला पाती पढ़े में ना बहुत मजा आते हैं।
1: हाँ
0: तो अधिकतर सनिचर के दिन संगरा जाता हूँ।
1: हाँ
0: तो चल भाई, अब तोला भी पता चल के कब आ रहा है
1: और
0: हमारे मन के क्रम के बेरा घलो हो गए वह।
1: हाँ
0: तो चल बेरा लधुरियाथन और शुरू करथन क्रम
1: आप मन के चिट।

0: तृप्ति,
1: हाँ,
0: अब संगवारी मन के पाती ला तो सब ला इकट्ठा कर डर है, तो चल भाई अब कौन संगवारी मन हा कहाँ ले पाती पठोए ते लपट डर।
1: हाँ लीनीमा, मोर कर पहली पाती आ है 13 जून बर, संगवारी मन भेजे है सिमगा ले, समर संगी मन है भारती सेन, विजया सेन, सुनंदा सेन, ललिता रामेश्वरी, मीना सेन मन।
0: अबे संगवारी मन हा पिवर पिवर पाती म का लिखे है तृप्ति?
1: हमर संगवारी मन लिखे लीनीमा,
0: हाँ,
1: सुनता के दिया ला 12 जी, छत्तीसगढ़ी युवानी के आप मन के चिट्ठी मा सुघर समीक्षा पत्र लिखा जी, मया पीड़ित के संग हमर मयारू कंपियर भाई बहनी मन के मिठ मिठ गुड़तुर बोली के आनंद लेवा जी, विधाता के सुघर है फुलवारी, आप मन के चिट्ठी मा आनी बानी के समीक्षा पत्र लिखा जी, 13 जून के प्रसादित छत्तीसगढ़ है युवानी के भाईचारा के संदेश देवैया, सुमित तिवारी के ज्ञान बगरैया, थनेश्वरी बघेल के आप मन के चिट्ठी कार्यक्रम, हम बहिनी मल्ला बढ़ निकलागी से, चिट्ठी और ईमेल के अमृत प्रेम के पानी देवैया, सुमित तिवारी और थनेश्वरी बघेल ला बधाई के पात्र है कहा थे संगी मन।
0: तृप्ति, वैसे तो हमन हा श्रोता मल्ला कहथन कि कार्यक्रम के सुने के संग आपन पाती पठोई करो कहके,
1: हाँ,
0: फिर हमर ये जो श्रोता संगवारी मन पाती लिखे है ना, ओमन हा बाकी श्रोता संगवारी मन ला पाती लिखे बर अपन लेखनी के माध्यम ले प्रेरित करत हवे। का बात है संगवारी।

0: और संगवारी मन के पाती तो हमन ला बेरा को बेरा मिलत भी थे। संगवारी आप मन की कविता लिखे के जो कोशिश है ना हमन ला बड़ निक लागी से वे। आप मन के संदेश तो हमन श्रोता संगवारी मन तीर कार्यक्रम के माध्यम ले पहुंचा दे हन और हमारे श्रोता संगवारी मन लगातार हमन कर पाती पठोवत रही थे। आप मन जो 13 जून पर बधाई पाती भेजे हो तेन ला कार्यक्रम के माध्यम ले थनेश्वरी बघेल और सुमित तिवारी तीर अमरावत हन पाती लिखे होते कर बर अंतस ले धन्यवाद संगवारी हो। त तृप्ति अगला पाती कौन दिन पर संगवारी मन भेजे हवे?
1: संगवारी ए हरे 20 जून शनिचर बर।
0: हाँ और कौन संगवारी मन हरे?
1: हमर संगी मन है मेघा पारा चिल्फी ले मनोज कुमार साहू।
0: और का लिखे है संगवारी मन?
1: संगी मन कहा थे 20 जून के युववाणी क्रम के आप मन के चिट्ठी सुने बड़ बढ़िया लगीस। कार्यक्रम के बोनी ला तो नहीं सुन पायो जेखर छुन्नासी लगत है।
0: हाँ।
1: फिर खरवन के क्रम आप मन के चिट्ठी सुने हृदय हरियागे। क्रम के पहली माँ लिनिमा बताइन कि त्रिलोचन ये आप मन के चिट्ठी क्रम में पहली कार्यक्रम आए। पहली ही बेरा माँ चासनी कस पढ़ीस अवैया बेरा माँ आशा है मधुरस घोल ही त्रिलोचन जी है। आप मन के जवाब दे के ये अंदाज घलो बड़ सुघर लागिस कहा थे। जाय के बेरा पेड़ पौधा मल्ला धरती के गहना बताएगीस मल्ला रिझागे ये रुख राई हमल्ला बहुत कन जिनिस देथे सबले महंगा ऑक्सीजन यानी प्राणवायु देथे ये खर बिना तो जीवन संभव नहीं है तये तक काटना अपन औ अवैया पीढ़ी बर वायु मा विष ही घोलना आए। मानव ला बुद्ध जीवी कहे गे है औ कैसन बूता करना मूर्खता नहीं तकाए जंगल है तमंगल है ये खर बिना सब बंडल है बड़ सुघर प्रस्तुति पर बधाई की है संगीमन। अब इहरी किमले ही दिन भर हमर यह संगीमन पाती पठोली निमा हमर संगीमन है करही भदले पुरुषोत्तम निर्मलकर गीतेश्वरी साहू। संगीमन कहा थे संगवारी मन कार्यक्रम के बने प्रस्तुति पर पाती पठो है और संग में शिकायत घलो करे है कि पाती हमर शामिल नहीं करो कहके हम कार्यक्रम सुनथन ओखर बर पाती पठोथन पठोथन ना तब पाती शामिल होए के अगोरा करथन शामिल नहीं होए तो थोकिन दुख लागथे तो संगी हो पाती ला जरूर शामिल करू ऐसे कहा थे संगी मन। अब ही रिकिमले यही दिन भर हमारे यो संगी मन पाती पठो है कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंघेल मोरा जंघेल लोरमी ले लोरमी ग्राम चचड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमिला मरावी परसा टोला ले अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसीहा सिलोचनी मसीहा कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर बुकुन चंद्राकर खैरागढ़ राज लालपुर ले मोतीलाल भीमटे सुशीला भीमटे।
0: घर आंगन छुटीस सपना नहीं छूटे रद्दा बदलीस हिम्मत नहीं टूटे दुख के बादर चाहे घलो घेर ले आशा के सुरता मन मा जिंदा रहे आज नहीं तो कल बिहान जरूर आही अंधियारी रात के बाद उजियारी छही। संगवारी हो आप मन हा अपन गोटला दिन नहीं सुन पा रहे हो फिर आप मन के चिट्ठी ला सुने हो तो बढ़िया बात है संगवारी हो। और संगवारी हो कहे जाते ना कि अतिथि देव भाव कह के ये संदेश हमारे देश के पहचान आए कोनो ला कही जिनिस की जरूरत हुए या फिर मदद धमल्ला जरूर करना चाहिए कोनो प्यासे है तब पानी दे दन कोनो भूखे है तब खाना काबर मनखे ही तो एक ऐसे प्राणी हरे जिनला सुख दुख पीड़ा ला बता सकते और ओला मनखे ही समझ सकते संगवारी हो। ऐसने शरणार्थी दिवस ऊपर चर्चा करत आए रहे हो मैं और संग मा आए रही है त्रिलोचन सिंह मनहा। संगवारी हो ये दिन क्रम आप मन के चिट्ठी मा आपके रिकिम रिकिम के पाती मिली से। हाँ संगवारी हो जैसे आप मन हा लिखे हो कि आपके पाती शामिल नहीं हो पाए कहके तो संगवारी हो पाती शामिल नहीं हो पाए ना तो नाव जरूर हमन शामिल कर देथन। आप मन जो मया दुलार ले लिखता हो हम उतके ही मया ले पढ़थन अपन कार्यक्रम के माध्यम ले आप मन जो बधाई पाती भेजे हो ओला हमन ला पढ़े मा बड़ सुकून मिलते। और देखो आज फिर संघर गया आज आपके पाती शामिल होगे भाई और मोला मिल घलोगे अब अपन रीस ला दुरिया लो और पाती लिखत रहो कार्यक्रम के माध्यम ले त्रिलोचन सिंह तीर अमरावत हन आगू घलो आपके पाती के अगोरा रही। तृप्ति
1: हाँ
0: अब अगला पाती कौन संगवारी मन पठो है तेला बता डर।
1: अगला पाती आहले निमा मुरकर 23 जून मंगलवार बर।
0: हाँ
1: हमर संगवारी मन है गेंदा टोला बाजार चौक ले राजनांद गांव ले वीरेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि गुप्ता।
0: और संगवारी मन का लिखे है तृप्ति?
1: हमर संगवारी मन कहा थे लिनिमा कि 23 जून दिन मंगलवार के हमन ला युववाणी कार्यक्रम सुने बर मिलीस जेमा प्रस्तुत करत रही सावे वर्षा गोस्वामी और त्रिलोचन संगवारी हा जेमा हमन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के बारे में जाने लोक सेवा स्वास्थ्य कर्मी पुलिस और सफाई कर्मी ये मन चाहे धूप होवे या फिर गर्मी होवे चाहे कोनो

0: सम हुए हमर निस्वार्थ भाव ले सेवा करते। इही गोठ बात के संग युवाणी कार्यक्रम के शुरुआत होइस और हमन ला सवाल जवाब अंक 235 के उत्तर सुने बर मिलिस, जेमा श्रोता संगी मन के ईमेल और चिट्ठी ला अधिक ले अधिक संख्या में शामिल करिस और अगला अंक 236 के प्रश्न बतइन। संग मा हमन ला माटी के सुघर सुघर गीत भी सुने बर मिलिस। ये जम्मो कार्यक्रम हमन ला बने लागिस। कार्यक्रम ला सुन के हमरो मन गदगद होगे। सुघर प्रस्तुति पर दोनों कंपनियों ला गाड़ा गाड़ा बधाई कहा थे संगी मन। और इहरी किम ले हमर यहो संगवारी मन हा इही दिन भर पाती पठो है। हमर संगी मन है भड़गा कोदवा गुड़ान ले श्याम सिंह मरावी राजकुमारी मरावी कुई ग्राम भंगी टोला ले ननका राम धुर्वे जामुनबाई धुर्वे हसदा नंबर दो ले कमलेश साहू जितेंद्र साहू कोल्हापुरी दुर्ग ले सूरज भान साहू कमलाबाई साहू सलोनी राजनांदगांव ले देवचरण साहू हेमा साहू मड़ौदा जालबांधा ले पारख दास साहू किरण साहू सलोनी ले पुरानी ग्राम साहू और सीताबाई साहू।
1: संगवारी हो, जुन्ना बेरा म शासन व्यवस्था म राजा के सबले बड़का धर्म प्रजा के सेवा माने जाए का हाथी से। राजा संग मंत्री पुरोहित और गांव के मुखिया मन मिलके न्याय सुरक्षा और जन कल्याण की जिम्मेदारी निभावत रही हैं। ओ बखत लोक सेवा के आधार कर्तव्य नैतिकता और जनहित रही हैं। अब तृप्ति बेरा बदली से वह शासन व्यवस्था घलो बदली से वह फिर लोक सेवा के मूल भावना आज घलो ओही छवे। जनता के भलाई और राष्ट्र के विकास यही सेवा भावना ला सम्मान दे बर 23 जून के संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाए जाते। ए दिन हमन ओ मनखे मन ला धन्यवाद करथन जेन मन अपन सुख सुविधा ला भुला के स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा सफाई और अनेक क्षेत्र में निस्वार्थ भाव ले जनता के सेवा करत हवे। सेवा के असली मोल पद्म नहीं है संगवारी हो, बल्कि समर्पण ईमानदारी और मानवता में बसते। और इही गोट संग दिन मंगलवार के युवानी सजी से वे जेमा आई रही है वर्षा गोस्वामी और त्रिलोचन सिंह। ए दिन क्रम सवाल जवाब अंक मा जुन्ना सवाल के संगवारी हो आप मन हा जवाब सुने हो और नवा सवाल ला जाने हो। संग मा माटी के गीत आप मन ला पसंद आई से आपके बधाई पाती ला कार्यक्रम के माध्यम ले हमन संगवारी हो वर्षा गोस्वामी और त्रिलोचन सिंह कर अमरावत हन आगू घलो आपके पाती के अगोरा रही पाती लिखे होते कर बर अंतस्ते धन्यवाद संगवारी हो। तृप्ति हमर मन तीर संगवारी मन के औ पाती हवे
0: हवे
1: त चल भाई ओकर ले पहले हमन संगवारी मन लेखन गीत सुना देथन। त संगवारी हो आवा सुनथन माटी के सुघर गीत ला।
2: लेले वो सागवाजी लेले बाबू लेले गा

0: ले ले साग भाजी संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो माटी के सुघर अकन गीतला जेन ला अपन सुर देवत रही ने माधुरी यादव मन हा।
1: और सुने पर चाहरीन हमारे संगवारी में आमा खोड़ा रेंगा खाले देवी सिंह ने ताम, राजेंद्र सिंह दक्ष प्रिया गीत सरगम ने ताम, बालाघाट मध्य प्रदेश ले ध्रुवाराम साहू, परसराम देवांगन श्वेता साहू, बिलाईगढ़ ले रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता डिंपल देवांगन, नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत जीत पुष्पांजलि वर्मा, पीपरलोड सरगांव ले दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति सिवांश वर्मा मन।
0: तृप्ति
1: हाँ,
0: अब भाई संगवारी मन अगोरा करत हो ही कि बाकी दिन के घलो कार्यक्रम के पातीला पठो है वह तब पढ़ती सिसे करके।
1: हाँ
0: तो चल भाई पढ़ डर।
1: हाँ संगवारी, ये पातिया है 25 जून बृहस्पत पर।
0: हाँ
1: संगवारी मन है धरसीवा बस स्टैंड ले छेदूलाल यादव सीता यादव। हमर संगवारी मन कहा थी लीनीमा दिनांक 25 जून के अगर कोई हर कामला जिम्मेदारी ले कर ही तब वो काम समय में पूरा हो ही। इही अपन सुघर गोट बात संग युवाणी ला शुरू करीन दुर्गा साहू अव ललिता साहू मन।
0: हाँ
1: सही में कोई काम ला टाल मटोल करके करे जही ना तब वो समय में नहीं हुए जेकर ले नुकसान हो सकते, तेकर से ती समय में बूता करना चाहिए जेकर ले सोचे काम समय में पूरा हो ही। सुघर गोट बार बार बधाई ऐसे कहा थे। आगू लिखे है, हेलो मितान कार्यक्रम में श्रोता संगी मन ले बातचीत करीन ललिता साहू मन, बढ़िया बढ़िया गोट बात के संग श्रोता संगवारी मन के पसंद के गीत सुन के अच्छा लागिस। सुघर गोट बात करके करे बर ललिता साहू प्रस्तुत करता दीपक हटवार, गीत संकलन बर वीर भान साहू जी मल्ला बधाई। अंतस के आरो में श्रोता संगी मन के विचार सुन के बढ़िया लागिस। जम्मो संगवारी मन ला बधाई, कुल मिला के युवाने के सुघर प्रस्तुति बर दोनों कंपियर संगवारी ला बधाई ऐसे कहा थे संगी मन। और इही रिकिम बर इही दिन ले हमर यहो संगवारी मन पाती पठो है। संगवारी मन है दुर्गा पारा संतोषी नगर ले छन्नूलाल यादव पुष्पलता यादव, नांद घाट कातल बोर्ड ले भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री राजपूत, भाटा पारा ले बचकामल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत भृगु यादव, तेंदू भाटा मगलोड ले उमेंद कुमार निषाद मोहेश्वरी निषाद, मेघा पारा ले राम कुशल पटेल संतोषी पटेल, देवरी भाटा पारा ले गन्नूलाल रजक के आर साहू, सिंगारबारी गुटकू ले भगत राम पटेल और किशन पटेल मन।
0: तृप्ति हमर सर है ना कहा है स्कूल में।
1: हाँ हाँ।
0: कि ये जो 25-30 बच्चर के बेरा रहे थे ना ओमा ना जब हमन युवा रहे थे।
1: हाँ।
0: ये बेरा बड़ अनमोल है कहके। ये बेरा में जतका सीख सकता सीख लो, जतका मेहनत कर लो कर लो, 30 के बाद जोन भी क्षेत्र में हो फिर ओमा धीरे धीरे आगे बढ़त रहो। और सच में अब जब जिंदगी के वो पड़ाव पार होवत ना तो दिखाई भी देते कि जौन संगवारी मन हम मेहनत करीन ना आज ओमन बने बने जगन में है, औ जेन मन ह काली ऊपर काम ल छोड़ी ना ओ मन आज भी संघर्ष करत है औ ओकर मन की सफलता भी लंबा है वह। कई ऐसे संगवारी मन है वह तृप्ति जेन मन ह पूरा कोशिश करीन है।
1: हाँ?
0: फिर ओ मन ल मन मुताबिक

0: आर्थिक सफलता नहीं मिल पाइन है। तो संगवारी हो दुखी झन हो, काबर कोनो भी मेहनत के फल जरूर मिलते। आप मन जो मेहनत करे हो और करत हो वो खाली नहीं जावे, अपन मेहनत करते रहो। अपन सुघर गोट बाद संग दिन बृहस्पत के गोट लेके आए रही ने संगवारी दुर्गा साहू और ललिता साहू हा। ए दिन संगवारी हो आप मन संग फोन के माध्यम ले गोट बात सुने के दिन रही से माने क्रम हेलो मितान के, जेमा ललिता साहू के गोट बात आप मल्ला पसंद आई से वह संग मा अंतस के आरो मा श्रोता संगवारी मन के अंतस के गोट खलो सुने हव। संगवारी हो एक क्रम बर पाती कम आते, अंतस के आरो बर जोन पाती हवे ना ओला जरूर पठो हो। पाती लिखे होते कर बर अंतस्ते धन्यवाद। आप मन के जोन बधाई पाती है ते मनला हमन कनपियर संगवारी मंतिर कार्यक्रम के माध्यम ले अमरावत हन, आगू घलो आपके पाती के अगोरा रही पाती लिखत रही। तृप्ति
1: हाँ
0: तो हाथ में संगवारी मन के आखिरी पाती दिखत हवे।
1: हाँ संजी
0: और मस्त एकदम प्योर प्योर पाती में संगवारी मन लिखे हवे। तो कौन संगवारी मन कहाँ ले लिखे बता डर
1: लिनिमा। हमर संगवारी हरे सिमगा ले, संगी मन है लवकुश सेन प्रहलाद सेन। और संगी मन कहा थे सबले बढ़िया मुर गवई गांव के

0: गोरा रही पाती लिखत रही तृप्ति
1: हाँ
0: तोर हाथ में संगवारी मन के आखिरी पाती दिखत हवे
1: हाँ संजी
0: और मस्त एकदम प्योर प्योर पाती में संगवारी मन लिखे हवे त कौन संगवारी मन कहाँ ले लिखे बता डर
1: लिनिमा हमर संगवारी हरे सिमगा ले संगी मन है लवकुश सेन प्रहलाद सेन और संगी मन कहा थे सबले बढ़िया मुर गवई गांव के छत्तीसगढ़ी युवानी कार्यक्रम अंगाकर रोटी चीला फरा के सुवाद है अमर छत्तीसगढ़ी युवानी किसान के नांगर और रापा कुदारी धरती के भगवान है अमर छत्तीसगढ़ी युवानी करिया बादर और बरखा रानी के असाड़ के पावन गंगा है हमर छत्तीसगढ़ी युवानी सावन के झड़ी और बहिनी मन के तीजा पोरा के तिहार है हमर छत्तीसगढ़ी युवानी संगी जहूरिया के मित मितानी के गंगा बारू के पहचान है हमर छत्तीसगढ़ी युवानी ए पाती के माध्यम ले संगवारी मन सुझाव पठो है लिनिमा संगी मन कहा थे हमर सुझाव है कि छत्तीसगढ़ी युवानी के संस्कृति के महक कार्यक्रम में किसनहा के जिनगानी ऊपर विशेष वार्ता प्रसारित करे जाए
0: संगवारी हो सबले पहले तो आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आप मन बड़ अच्छा कोशिश करे कविता के माध्यम ले छत्तीसगढ़ी युवानी ला बताए के
1: हाँ।
0: और संगवारी हो आप मन के मया ही सफलता हरी युवानी के आपके गुरतुर बोली और विचार हा पाती के माध्यम ले हमर मन तीर पहुंचते तो कभू हेलो मितान के माध्यम ले फोन में गोट बात हो जाते रेडियो के माध्यम ले आप हमर गोट ला सुनथो और पाती के माध्यम ले हम आपके अंतस के आरो ला जानथन तृप्ति आज मोर भाई है ना एक ठन वीडियो भेजी से वह
1: हाँ।
0: दिखावत रही से कि माँ है ना 1900 के आसपास के पाती ला घलो संभाल के रखे हवे कही के माने 100 साल ले ज्यादा हो गए
1: हाँ।
0: अब जब वो पढ़ना शुरू करीस ना तो माँ के आंख में आंसू रही है वह ओला माँ के नाना हा लिखी रही है आज तक माँ हा वो पाती ला संभाल के रखे है वह उसने संगवारी हो आप मन के पाती घलो हमर मंत्री जब आते ना तो बहुत हमर लिए कीमती हवे छत्तीसगढ़ी युवानी के अपन लेखनी के माध्यम ले अतका अच्छा बखान करे हो तेकर बर बहुत बहुत धन्यवाद और आप मन जोन संस्कृति के महक बर सुझाव भेजे हो संगवारी हो ओला हमन हा वैसे तो हमन किसनहा मन के बारे में बीच बीच में गोट बात करते थन फिर संस्कृति के महक में जोन किसनहा मन के गोट बात है ओकर बर जोन सुझाव पाती भेजे हो तेला हमन नोट कर डरे हन और आपके सुझाव पाती के ध्यान रखबो आप मन पाती लिखे हो तेकर बर अंतस ले धन्यवाद आगू घलो आप मन के पाती के अगोरा रही तृप्ति
1: हाँ?
0: संगवारी मन के पाती जोन आए रही से वे तेन सबो पाती ला हमन शामिल कर डरे हैं अब संगवारी मन आगू घलो पाती पठोही ओकर बर संगवारी मन हमन पता बता देथन संगवारी हो आप मन आगू घलो पोस्ट कार्ड के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से पाती पठोहु तो ओकर बर पता हवे पोस्ट कार्ड के माध्यम से आप मन पाती पठो ओकर और पता हवे आप मन के चिट्ठी युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर और पिन कोड है संगवारी हो 490001 और संगवारी हो आप मन ईमेल के माध्यम ले पाती पठो ओकर बर पता हवे AIRYOUTH9@gmail.com और संगवारी हो आप मन हा सब्जेक्ट कोड ला डाले बर झंझ भुलाओ आप मन की चिट्ठी बर सब्जेक्ट कोड आए Y8 तो संगवारी हो आप मन ला एक क्रम कैसे लगी से और कार्यक्रम कैसे लगी से ला पाती के माध्यम ले जरूर पठो और क्रम आप मन के चिट्ठी इहे तक।

0: अन्न उगाए के जम्मो प्रक्रिया मा बरखा रानी के आगमन हा बहुत बड़े भूमिका निभाते। तेकरे सेती पानी कब गिरही, मोर सुखा भुइया के पियास ल कब बुताही कहिके रद्दा जोहत रहिथे।
1: तृप्ति, अब जब ये अगोरा हा दरिया थे ना, माने बरसा रानी के आगमन होते, तब खेत मा बूता करैया किसान भाई बहनी मन जोन हा गुनगुनाथे ना, ओला चल एक गीत के माध्यम ले सुन लेथन।
0: हाँ।

0: कांटा खुटी बिन बान, कांदी दुबी झोल चान, डिबरा लखनती खन, खेत सिरियाए जी।
1: घुरवा के खातू पाल, सरे गोबर माटी चाल, राखड़ ला बोरी बोरी छींच बगराए जी।
0: बिजहा जुगाड़ करे, बोरी बोरा नाप धरे, नागर सुधार करे, जोखा लमढ़ाए जी।
1: सबो के तैयारी करे, राहेर ओन्हारी धरे, बरखा असाड़ केला किसान बलाए जी।
0: तृप्ति,
1: हाँ,
0: ए धान बोआई के दिन आते ना, तहन हमर किसान भाई बहनी मन ह बरखा रानी के कत्तेक उछाल या गोरा करते ना।
1: हाँ लेनी माँ, भाई हमर छत्तीसगढ़ तो धान के कटोरा आए, जमा रिकिम रिकिम के धान के प्रजाति पाए जाते। किसान हमर अन्नदाता आए,

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो माटी के सुगर गीत ला, जिन ला पंसूर देवत्री प्रकाश देवांगन और मया खापर डे मन हा।
1: और सुनी पर चाहरीन हमारे संगवारी मन ग्राम फुलझर घटारानी ले योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी यामिनी, मुस्कान हर्षिता साहू, भंवरपुर बसना ले चंपा देवांगन, राधेश्याम राजू जगदीश देवांगन, महामाया चौक मेघापारा चिल्फी ले रामकुशल पटेल, संतोषी दीपांशु, दिव्या दीपांजलि, दीपक टेकलाल पटेल मन हा।
0: तृप्ति,
1: हाँ,
0: बछर भर हो गए तोर बिहाव में, फिर आज तक तोला मोला तेहा ना ससुराल के अनुभव नहीं पूछे, तोला मैं अनुभव नहीं पूछे हूँ,
1: हाँ
0: बताना भाई।
1: हाँ हो संगी, बतावत हूँ। मुर ससुराल माँ माँ कस मया करैया मुर सास, बाबू कस दुलार लुटैया मुर ससुर, भाई कस हियाव करैया मुर देवर, और बहिनी कस रद्दा देखैया मुर सुघर ननद हावे।
0: ऐसे भाई बड़ सुघर लागिस तृप्ति, और फिर हमर भाटो के बारे में घलो कुछ बता भाई।
1: भाई भगवान के कृपा ले तोर भाटो घलो बने ही लेनी माँ, मोर सुख दुख के जम्मू परिस्थिति ला समझते और मोर संग देते।
0: ये तो बढ़िया बात है तृप्ति। अच्छा ए बता, ते हाँ अगर गुस्सा हो जाथस तो हमर भाटो का कर थे?
1: मैं हाँ
0: बता डर कि भाटो हा जब ते गुस्सा हो जाथस नहीं तो का करते हो?
1: ओ हना मुला बड़ सुघर गीत सुना थे लेनी माँ।
0: तो हत गीत ला सुना बे?
1: नहीं नहीं अभी नहीं सुनाओ, मैं अभी समय नहीं है।
0: तो हमन हा अगले बारे में सुना बे।
1: हाँ
0: है ना, अब कार्यक्रम में जाए के बेरा हो गए, तो संगवारी मन ला बता दे थन काली के कार्यक्रम।
1: संगवारी हो, काली के कार्यक्रम सजी हिंदी माँ, जे माँ आप मन सुनू राग नंदिनी और सवालों के आईने में।
0: तो संगवारी हो, आप मन हा हमन के कार्यक्रम कैसे लागिस एला अपन पाती के माध्यम ले जरूर बताओ, और तृप्ति हमला गीत अगली बार में सुनाही। तो संगवारी हो, हमला विदा देवो और यही गोट बात संग अपन संगवारी लेनी मासाहू।
1: और तृप्ति भारती ला दाओ विदा।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन

0: किया है। विदेश मंत्री बैरी फॉर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। शाम के 6:05 और 20 सेकंड हुए हैं।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगा

कर आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी सुन रहे हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहिन है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के अवैया दू बच्छर मा देश भर के 500 शहर और कस्बा मन मा विस्तार करे जाही। पल्स पोलियो अभियान के तहत काली 28 जून के 5 बच्छर तक के लैका मन ला पिलाए जाही पोलियो के खुराक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 28 जून के आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगन मन ले कर ही अपन विचार साझा। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहिन है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के अवैया दू बच्छर में देश भर के 500 शहर और कस्बा मन में विस्तार करे जाही। गुजरात में भारत टैक्सी के शुभारंभ करत हुए श्री शाह ये पहल ला सरकारी क्षेत्र में एक ठन क्रांतिकारी कदम बतेन। उमन कहिन कि भारत टैक्सी के उद्देश्य चालक मन ला सीधा लाभ पहुँचा के निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना हरय। श्री शाह डेयरी उत्पाद ले संबंधित अमूल सहकारी अभियान के सफलता के घलो उल्लेख करें। प्रदेश में काली 28 जून ले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाए जाही। एकर तहत जन्म से लेके 5 बच्छर तक के 35,98,000 ले ज्यादा लैका

0: ला पोलियो के खुराक पिलाए के लक्ष्य राखे गे हे। अभियान के संचालन बर 28,000 टीम मन के संग 57,000 ले ज्यादा वैक्सीनेटर तैनात करे गे हे। अभियान के दिन छुटे हुए लेका मन ला अवैया दो दिन तक आने यानी 29 और 30 जून के घर घर जाके खुराक दे जाही। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वी आर भगत ने बताया कि दूरस्थ गांव, वनांचल क्षेत्र, शहरी बस्ती, ईटा भट्टी, निर्माण स्थल और प्रवासी और घुमंतु परिवार मन तक पहुंच के लेका मल्ला पोलियो के खुराक दे जाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 28 जून इतवार के आकाशवाणी के मन के बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगन मल्ले अपन विचार साझा करही। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम के 135वां एपिसोड होही। कार्यक्रम के प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सब्बो चैनल, AIR न्यूज के वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप में करे जाहे। संगे संग AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल मन में घलो एकर सीधा प्रसारण करे जाहे। हिंदी प्रसारण के तुरते बाद क्षेत्रीय भाषा में घलो कार्यक्रम के प्रसारण होही। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बच्छर पूरा होय ऊपर छत्तीसगढ़ में घलो 29 जून ले 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाए जाही। ये दौरान प्रदेश भर में सहकारिता ला बढ़ावा दे बर आने आने कार्यक्रम के आयोजन होही। रायपुर में अवैया 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी के आयोजन करे जाही। इमा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होही। सहकार मेला में सहकारिता क्षेत्र के उपलब्धि और सफल मॉडल मन के प्रदर्शन करे जाही। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने बताया कि 6 जुलाई के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह डहाले अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्स मनमा गोदाम निर्माण काम के भूमि पूजन करे जाही। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान काली 28 जून के नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के अध्यक्षता करही। दो दिन के सम्मेलन में सब्बो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मन के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ मन समग्र ग्रामीण विकास ऊपर विचार विमर्श करे बर सकलाही। बैठक में प्रमुख परियोजना मन के समीक्षा और ग्रामीण भारत बर भविष्य के रूपरेखा तैयार करे ऊपर घलो विचार विमर्श करे जाहे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हाकिन है कि प्रदेश भर में वीर शहीद मन के स्मृति ला चिरस्थायी बनाए बर विशेष अभियान चलाए जाही। एकर तहत गांव मन में सामुदायिक भवन, चौक चौराहा और दूसर सार्वजनिक स्थल मन के नामकरण शहीद मन के नाम में करे जाही। संगे संग जिन जगह में नक्सल हिंसा के बड़े घटना हुए है वहाँ उपयुक्त स्थान चिन्हित कर स्मारक मन के निर्माण करे जाही, ताकि अवैया पीढ़ी शहीद मन के सर्वोच्च बलिदान ले प्रेरणा ले सके। ये बात उमन काली कांकेर में नक्सल पीड़ित परिवार और शहीद जवान मन के परिजन मन ले मुलाकात के दौरान कहीं। उन्हें उप मुख्यमंत्री है नारायणपुर में पुनर्वासित युवा मन ले घलो मुलाकात कर उनला गांव के विकास में भागीदारी निभाए के आह्वान करें। ये दौरान उमन युवा मल्ले पुनर्वास केंद्र में मिलत सुविधा, प्रशिक्षण और रोजगार के जानकारी लीन। उमन जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित सर्व आदिवासी समाज के बैठक में घलो शामिल हुईन और समाज के लोगन मल्ले माओवाद मुक्त बस्तर के नवनिर्माण में अग्रणी भूमिका निभाए के आह्वान करें। उन्हें उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा हा कांकेर जिला के ग्राम किसकोड़ो में जन चौपाल लगा के ग्रामीण मन के जन समस्या ला सुनिन। उमन कहिन कि किसकोड़ो ला आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आप गुबाड़बो बाती समाचार को ती। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हा आज सुकमा जिला के जगरगुंडा, चिंतलनार, पुवर्ती और सिलगेर के दौरा करें। यह दौरान उमन पुवर्ती और सिलगेर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र मन के निरीक्षण करें। संगे संग अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होके महिला मल्ले चर्चा करें। श्रीमती राजवाड़े

0: यहां सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र लस्केपारा छिंदगढ़ के पोषण वाटिका मालिका मन के संग मुनगा और पपीता के पौधा लगाई। ये मौका मौमन हर घर मुनगा घर घर सुपोषण के संदेश देवत हुए पौष्टिक आहार पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता के आह्वान करीन। महासमुंद जिला के बलौदा बाजार बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक मा हीरा खनन लले के तैयारी तेज हो गए है। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के नई दिल्ली में आयोजित बैठका में ये परियोजना के अवैया चरण में लार्ज डायमीटर ड्रिलिंग शुरू करे के निर्णय ले गए है। ये निर्णय ये क्षेत्र में हीरा के वास्तविक भंडार के वैज्ञानिक आकलन कर ही और भविष्य में व्यावसायिक हीरा खनन के मार्ग प्रशस्त कर ही। निर्णय के अनुसार बड़े व्यास के ड्रिलिंग ले किम्बरलाइट पाइप में मौजूद हीरा भंडार के सटीक आकलन करे जाही। एकर बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो ही जेखर आधार में व्यावसायिक हीरा खदान विकसित करे के अंतिम निर्णय ले जाही। प्रदेश में रबर टायर के बिना आयरन केज व्हील वाला ट्रैक्टर मन के सड़क में संचालन ऊपर रोक लगाए गए है। परिवहन विभाग नियम मन के उल्लंघन करैया मन ऊपर चालानी कार्रवाई के निर्देश दे है। ऐसन पहिया मन के उपयोग सिर्फ खेत में किसनहा काम बर करे जा सकत है। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप बर ऑनलाइन आवेदन के आखिरी तारीख बढ़ा के 7 जुलाई कर दे गए है। ये योजना के तहत एमटेक डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेवैया चयनित विद्यार्थी मल्ला हर महीना 50,000 रुपया फेलोशिप दे जाही। ट्यूशन फीस के पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन कर ही। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहाल ने प्रस्तुत कार्यक्रम जिला की चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले कर ही। ए बखत के अंक में जसपुर जिला के बारे में जानकारी दे जाही। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 3 दिन के दौरान प्रदेश के कुछ एक जगह में भारी वर्षा होने की संभावना जताए है। उन्हें कुछ एक जगह में गरज चमक के संग गाज गिर सकत है। पाछू 24 घंटा के दौरान राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कुछ एक हिस्सा में हल्का ले मध्यम वर्षा दर्ज करेगी। यही बीच मौसम विभाग कहिन है कि अवैया 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ समेत गुजरात मध्य प्रदेश और झारखंड के कुछ एक क्षेत्र में आगू बाढ़े के परिस्थिति बने हुए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक फेर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहिन है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के अवैया 2 बच्छर में देश भर के 500 शहर और कस्बा मन में विस्तार करे जाही। पल्स पोलियो अभियान के तहत काली 28 जून के 5 बच्छर तक के लैका मल्ला पिलाए जाही पोलियो के खुराक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 28 जून के आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगन मल्ले कर ही अपन विचार साझा। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। संस्कृत समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासार्थं सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरे सम्प्राप्तः। तमिलनाडु राज्ये वाइको इत्यस्य नेतृत्वे एमडीएमके दलेन डीएमके दलेन सह स्वीय नववर्षीयं गठबंधनं समाप्तम्। प्रसिद्धः तमिल चलचित्र अभिनेता निदेशकश्च के भाग्यराजः अद्य चेन्नईयां पञ्चत्वे विलीनः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः आकाशवाण्याः मन की बात इति जनप्रिय मासिक कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः सह स्वीयं मनोगतं विनिमयीकरिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो अवदत् यत् ट्रंप प्रशासनं भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यन्तं निकटतमेषु रणनीतिक सहयोगिषु अन्यतमं मन्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु फीफा विश्व कप स्पर्धा मालिकायां मिस्र देशः ईरान देशेन सह

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आइए सुनते हैं शिवदयाल पटपरिया और साथियों के स्वर में सावन गीत।

0: इस गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। लोक संगीत में आज कलाकार थे शिवदयाल पटपरिया और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।

0: आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 28 जून को 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांव में सामुदायिक भवन, चौक चौराहों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया जाएगा। साथ ही जिन स्थानों पर नक्सल हिंसा की बड़ी घटनाएं हुई हैं, वहां उपयुक्त स्थान चिन्हित कर स्मारकों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कल कांकेर में नक्सल पीड़ित परिवारों और शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। वहीं उप मुख्यमंत्री ने नारायणपुर में शहीद परिवारों और नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने पुनर्वासित युवाओं से भी मुलाकात की और उनसे गांव के विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। वे जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित सर्व आदिवासी समाज की बैठक में भी शामिल हुए और समाज के लोगों से माओवाद मुक्त बस्तर के नवनिर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले के ग्राम मर्दापाल स्थित कन्हार गांव में साप्ताहिक बाजार पहुंचकर ग्रामीणों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर क्षेत्र की आवश्यकताओं और जनजीवन से जुड़े विषयों पर चर्चा की। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कांकेर जिले के ग्राम किसकोड़ो और बोड़गांव स्थित CAF कैंप में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश में कल 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 वर्ष तक के 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। अभियान के संचालन के लिए 28,000 टीमों के साथ 57,000 से अधिक वैक्सीनेटर तैनात किए गए हैं। अभियान के दिन छूटे हुए बच्चों को अगले 2 दिनों तक यानी 29 और 30 जून को घर घर जाकर खुराक दी जाएगी। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ VR भगत ने बताया कि दूरस्थ गांवों, वनांचल क्षेत्रों, शहरी बस्तियों, ईंट भट्ठों, निर्माण स्थलों तथा प्रवासी और घुमंतू परिवारों तक पहुंचकर बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में भी 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री

0: श्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सहकार मेले में सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों और सफल मॉडलों का प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने बताया कि 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा।
1: 5 वर्ष सहकारिता विभाग के पूर्ण होने पर सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जो 29 जून से प्रारंभ होगा और 6 जुलाई तक चलेगा। इसमें विविध कार्यक्रम होंगे। 6 तारीख को माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा छत्तीसगढ़ में 9 बड़े गोदाम जो दिए गए हैं उनका वर्चुअली भूमि पूजन होगा और 7 दिन 2058 पैक्स में सारे जिला बैंकों में, सारे जिला मत्स्य बैंक और जितने भी वनोपज संघ है, बुनकर संघ है, दुग्ध संघ है, NCDC है, NCCF है, NAFED है, IFCO है, क्रिपको है, राज्य सहकारी संघ है, सभी संगठनों में पूरे 7 दिन तक बड़े कार्यक्रम होंगे।
0: महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सुकमा जिले के जगरगुंडा, चिंतलनार, पूर्ववर्ती और सिलगेर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती और सिलगेर स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होकर महिलाओं से चर्चा की। श्रीमती राजवाड़े ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र लस्केपारा छिंदगढ़ की पोषण वाटिका में बच्चों के साथ मुनगा और पपीता के पौधों का पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने हर घर मुनगा, घर घर सुपोषण का संदेश देते हुए पौष्टिक आहार, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता का आह्वान किया। वहीं श्रीमती राजवाड़े ने बीजापुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि माओवाद मुक्त बीजापुर अब विकसित बीजापुर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचार की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। महासमुंद जिले के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में हीरा खनन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। NMDC CMDC लिमिटेड के निदेशक मंडल की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इस परियोजना के अगले चरण में लार्ज डायमीटर ड्रिलिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री IT फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। इस योजना के तहत MTech, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रति माह 50,000 रुपये फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। प्रदेश में रबर टायर के बिना आयरन केज व्हील वाले ट्रैक्टरों के सड़कों पर संचालन पर रोक लगाई गई है। परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे पहियों का उपयोग केवल खेतों में कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय PIB रायपुर द्वारा आज जगदलपुर में वार्तालाप मीडिया संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और उपलब्धियों का लेखा जोखा साझा किया। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की कल्याणकारी नीतियों से बस्तर नक्सलवाद के अंधेरे से निकलकर विकास और विश्वास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के सतत परिवर्तन के लिए शिक्षा

0: और विकास दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बने हुए हैं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सांसद महेश कश्यप ने कहा कि बस्तर के आदिवासियों के सामाजिक उत्थान, सुरक्षा और सतत विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा बस्तर में विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं पर चर्चा की। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में जशपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ सहित गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। जांजगीर चांपा के बहेराडीह में स्थित वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल में राज्य स्तरीय मशरूम महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें जांजगीर चांपा सहित विभिन्न जिलों के मशरूम उत्पादक किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। महासमुंद जिला पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर रेहटी खोल के पास नाकेबंदी कर ओडिशा से उत्तर प्रदेश जा रही एक कार से 51 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 25.5 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक कंपनी के अधिकारी के साथ 20,70,000 रुपए ठगी होने का मामला सामने आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 28 जून को 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर 7 बजे हैं। हम हाजिर हैं चित्रपट संगीत के संग। दोस्तों, आज का दिन विशेषकर भारतीय सिनेमा के लिए बेहद भावुक कर देने वाला दिन है। हमने कैसे जादुई फनकार को खो दिया है जिन्होंने अपनी कलम और अपनी अदाकारी से दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। हम बात कर रहे हैं महानिर्देशक, लेखक और अभिनेता के भाग्यराज की। इनका आज शनिवार सुबह 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको तमिल सिनेमा का किंग ऑफ स्क्रीन प्ले, पटकथा का राजा कहा जाता था। आपका नाता बॉलीवुड की फिल्मों से भी रहा। फिल्म आखिरी रास्ता का निर्देशन के भाग्यराज ने ही किया था। इसके अलावा अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर बेचारा भी उन्हीं की तमिल फिल्म विटला विशेषंगा का रीमेक थी। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1953 को कोयम्बटूर मद्रास में हुआ था। आपकी प्रसिद्ध फिल्मों में पापा द ग्रेट और रसुकुट्टी शामिल है। हम रेडियो परिवार की ओर से के भाग्यराज को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सुनते हैं चित्रपट में उनकी फिल्म मिस्टर बेचारा का ये गीत, आवाज कुमार सानू की, गीत नवाब आरजू का और संगीत आनंद मिलिन का।

आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आगामी मंगलवार 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा हमारे सुरक्षित भविष्य का आधार, जैव विविधता का संरक्षण। विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पुणेंद्र साहू, अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय

अजा भी मित्रा, आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 30 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

फिल्म संघर्ष का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की थी। समीर के बोल और जतिन ललित का संगीत था। जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में, आनंद बख्शी की शब्द रचना और जतिन ललित का संगीत।

चित्रपट संगीत में फिलहाल इतना ही। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 7:21 होने को हैं। प्रस्तुत है किसानों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम ऋषा,
1: राम राम लव कुमार भैया, और संगे संग कार्यक्रम सुनैया जन्म संगवारी मल्ला हमर दोनों के राम राम।
0: ऋषा
1: हाँ भैया,
0: अभी के जो समय चलत है ना, जम्मू किसान संगवारी मन के आंखी हा बादल को ती लगे हवा।
1: भाई
0: खरीफ के फसल के तैयारी लगभग पूरा हो गए है, और अब अगोरा है पानी के। बादल ले जब मोती गिरही, धरती के तब भाग तरही।
1: सिर तोन बात कहे हो भैया, और देख धरती के प्यास ला बादर के अगोरा है, और जब झमाझम मस्त पानी हा गिरही, तब भुइया के धरती के जिन करेजा है ना, ओ हा
0: जुड़ाही।
1: आओ भैया, गाय खेती खार के काम बुता हा घलो बढ़िया आगू बाढ़ी।
0: भाई देख, पानी और खेती भाई बड़ा बढ़िया संबंध है, तो गुड बात तो करबो, फिर सुनते संदेश।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ऋचा,
4: हाँ,
3: हम बात करते रहे पानी बाजार के। देख, पानी बाजार तो मौसम और प्रकृति ऊपर निर्भर करते हैं। फिर प्रकृति के संतुलन बने रही थे तो सब मौसम हाँ अपन अपन समय में आते और जाते। कहे के मतलब है, संतुलन बड़ा जरूरी है।
4: संतुलन ले भैया, एक बात ध्यान में आती कि भैया जब खेती किसानी के बात करबो तो खेती किसानी में पोषक तत्व और जिन दिगर जिनिस के संतुलन घलो बड़ महत्ता के होते
3: बहुत।
4: जैसे माटी में नमी और पोषक तत्व के संतुलन, और जब यही संतुलन हाँ कम या ज्यादा होते तो एला ना बनाए रखे बर ना हमन हाँ कई घौ ले खाद पानी उर्वरक के प्रयोग ल करथन, माने ताकि बने संतुलन हाँ बने रहा।
3: बिल्कुल भाई, किसान संगवारी मन हाँ हर चीज के अपन इलाज करते, अपन अनुभव ले और बातचीत ले। कई बार हमन कार्यक्रम के माध्यम ले उमला सलाह मशवर देथन तो बहुत सुनते हो मन हाँ। और जब बात आते खाद यानी उर्वरक के, तो ये बात बड़ महत्व के है कि संतुलित खाद के प्रयोग करन। भाई संतुलित खाद यानी माटी के आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व, खनिज और दिगर जरूरी सूक्ष्म जीव मन के रक्षा करत, माटी के जिन उपजाऊपन है उनमें वृद्धि हुए, ऐसे हमन खादु के प्रयोग करन। भाई खेत मन में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक के प्रयोग ले माटी है बंजर हो जाते और किसान मन बात लब जाने घर लगे है और मन हाँ अब देखभाल के प्रयोग करते। अब एक जगह में संतुलित खाद और फसल के आवश्यकता अनुसार माटी के जांच बहुत जरूरी है। माटी के जांच ले का होते कि भाई उनमें कौन से पोषक तत्व का है, कैसे है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सूक्ष्म जीव है भाई, और जिन अलग अलग जिन प्रकार के खनिज है ओकरो बारे में मालूम पड़ते, अब एक प्रयोग हमन ला करना चाहिए।
4: संतुलन अगर बने रही थे और संतुलित खाद अपनाए खातिर कुछ एक ना जरूरी बात के घलो ध्यान में उमला रखना चाहिए, जैसे कि माटी के जांच जेखर ले माटी के सही स्थिति मालूम होते और कौन कौन से उमा पोषक तत्व के कमी है वह पता चल जाते। और आजकल तो भैया हर खेत खार मा और अभी देखा था किसान मन तो अतका जागरूक हो गए है कि ओमन भी माटी के जांच करावत हावे और जेन भी खेत मा कमी पेशा है ओला भी पूरा करत हावे।
3: फिर अपन गोट बात के माध्यम ले हमन हा बीच बीच में मल्ला जागरूक करते रहते कि भाई माटी के जांच कैसे करना है ना, कौन जगह ले माटी उठाना है, कतेक माटी उठाना है,
4: और कैसे कैसे ओकर लेबल ला लगाना है, कौन मेर देना है, सब ये चीज ला बेरा बेरम हमर विशेषज्ञ मन भी बतावत रहे।
3: सावधानी घर बताते कि कौन जगह माटी नहीं लेना है नी, ताकि माटी के
4: पेड़ वाला जगह।
3: और फिर एक ले कहा होते कि माटी के परीक्षण सही नहीं आवे, तो माटी के परीक्षण सही आए एक बार आप ला हर एक जगह के माटी लेना है, लेकिन सावधानी ले साथ।
4: और एकर अलावा ना भैया जैविक और रासायनिक खाद के सही अनुपात घलो हमर जन किसान संगवारी मन है कई बार रासायनिक खाद ऊपर घलो निर्भर हो जाते जबकि गोबर के खाद हावे, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है और बायो फर्टिलाइजर के उपयोग भी हमर माटी पर बहुत अच्छा माने गए है और फसल के स्वास्थ्य घलो एकर ले सुरक्षित रहते। एकर संतुलित मात्रा जो हावे वो उत्पादन ला घलो बने बढ़ाते और भैया ये सब के उपयोग लेना लागत घलो कमती हो जाते।

0: लागत कहा किसान संगवारी मन के जिन वृद्धि के नहीं हुए कारण है कि लागत में ज्यादा हो जाना। भाई लागत कमती हुई तो जरूरी है कि भाई मन अपन खेती में अनुपात बना सके थे वृद्धि के। संतुलित खाद अपनाए के फायदा के बात करें तो एखर ले पौधा में जिन जम्मो पोषक तत्व है वो सही अनुपात यानी सही मात्रा मिलते। एखर ले माटी के उपजाऊपन हा लंबा समय तक रही थे और लागत में जैसे आप बताए कमी घलो होते और उपज में वृद्धि होते और सबले बड़े फायदा एखर ले रोग और कीट ले बचाव होते और पर्यावरण जेल हम मानथन कि भाई संतुलन के सबसे ज्यादा जन हमार स्रोत है वह पर्यावरण तब पर्यावरण के संरक्षण होते और स्वास्थ्य खातिर घलो फायदेमंद होते।
1: सही बात है भैया और फसल के बढ़वार घलो बने रहते तो भैया इसने संतुलित खाद ले जम्मो फायदा ला हमन देखत हमन ला तो हम तो संगवारी मन ला यही कहबो कि खेत और फसल बचाए खातिर और संगे संग कमती लागत में ज्यादा उत्पादन खातिर संतुलित खाद के प्रयोग करन। और पहली का हुआ रिस भैया पहली देखन हमारे सियान मन कहाँ रासायनिक खाद ला जाना तरी से पहली तो जैविक खाद के ही उपयोग ज्यादा हुआ तरी से
0: वही खेती हुए और वही में किसान संगवारी ने खातू पानी की व्यवस्था करे और जिन जैविक खेती हुए ओखरे अपन जीवन चले।
1: हाँ और देखो आज के बेरल देखबे तो रोग राई घलो बढ़ गए चाहे वो मनखे के होए फसल के होए तो पहली के समय में अतका हमन हा नहीं जानत रहे हैं कावर पहली के सियान मन हा संतुलित जोन मात्रा मा काहे मोटा अनाज के भी उपयोग करें और जोन हरित क्रांति आए के बाद में जोन हमार धान हो गए गेहूं हो गए ओकरो मात्रा ला बने रखत रही
0: साबे अभी मोटा अनाज के बाद कहेस ना जिला आजकल में श्री अनाज कथन भाई ओखर ले कतेक फायदा है देख खेती में खेत के फायदा माटी के फायदा खवैयल फायदा बेचैल फायदा अब औ तो कहे जाए सरकार घलो ओखर भाई बढ़ावा देवत है और लोगन मन घलो आजकल अपन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं। अब ओमन का करते अपन जिन नाश्ता के और खाना के टेबल में यानी कि खाना में मोटा अनाज शामिल कर रहे थे कतकोन जिनिस बना थे नाश्ता में देख ले
1: सिरतोन बात के भैया। और देखना आजकल देखथन एक ठन बीमारी बहुत आम हो गई है
0: शक्कर
1: के बीमारी तो डॉक्टर मन काय की थे चावल झन खावा और भाई अब छत्तीसगढ़ के मन के चावल नहीं खाई ऐसे नहीं हो सके तो फिर भैया का है कि पहली के मन है ना बने संतुलित आहार ला लेवत रही सावे तो पहली मन का हुआ थ्री से कोदो के उपयोग करे और अभी का होते भैया वही बीमारी काटे पर कोदो के उपयोग करे थावे।
0: एक बात कहे गए ना कि अगर आप खाना ला दवाई की तरह खाओ माने टाइम से संतुलित मात्रा में तो आप ला दवाई की जरूरत नहीं पड़ी और नहीं खाओ तो आप ला दवाई ला खाना की तरह खाल पड़ी
1: सिर तो ने ता ऐसे संगवारी हो हर चीज में संतुलन बहुत जरूरी है ता संतुलित मात्रा अपनावो चाहे वो खेती खार में हो चाहे हमार खान पान में हो और मस्त स्वस्थ खेती खार भी मिली और स्वस्थ मनखे भी मिली। अब देखो गोट बात करे तो बेरा हुआ थे किसान वाणी के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: ऋचा, हमन ह किसान संगवारी मन ला समय समय में अपन कार्यक्रम के माध्यम ले सलाह घल देथन। तो आज क्रम आज की सलाह के विषय है खेत बचाओ अभियान, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन व संतुलित उर्वरकों का प्रयोग। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुणाल चंद्राकर, आप मन हो मृदा वैज्ञानिक विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद।
1: संगवारी हो, खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संतुलित उर्वरक के उपयोग ये विषय मा अभी हमन हा चर्चा करबो। चर्चा करे खातिर हमर बीच उपस्थित है डॉक्टर कुणाल चंद्राकर जी, आप मन हा विषय वस्तु विशेषज्ञ मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद ले। आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद मैडम, नमस्कार। जम्मू किसान भाई मल्ला भी नमस्कार, जय जोहार।

0: सबले पहिली तो यही जानना चाहबो हमन हा कि खेत बचाओ अभियान का हरे और अभी के बेरा मा माने वर्तमान समय मा एकर काबर अतका जरूरत पड़त हावे।
1: शासन द्वारा जम्मू राष्ट्र भर के किसान भाई मन बर उमल जागरूक करे बर खेत बचाओ अभियान ला लागू करे गए है और वर्तमान समय में खेत बचाओ अभियान के बहुत ज्यादा महत्ता है। काबर की अभी हमन देखत हन जिस प्रकार के खेती बाड़ी होत है उमा अंधाधुन रसायन के उपयोग होत है, रासायनिक उर्वरक के अंधाधुन उपयोग होत है, खरपतवार नाशी कीटनाशी के बहुत ज्यादा उपयोग होते है और जैविक खाद के उपयोग करे बर किसान भाई मन ह अभी कम कर दे है, जेकर कारण से जे भूमि के उपजाऊ क्षमता है उर्वरा शक्ति है उमें दुष्प्रभाव पड़त है और जिला हमला बचा के रखना आज के समय में हमला बहुत आवश्यक है। काबर की जीवन पर्यंत हमला खेती बाड़ी ला किसानी ला करे लगी आने वाला पीढ़ी पर जे प्राकृतिक संसाधन है जे अच्छा माटी है उपजाऊ भूमि है जल है पर्यावरण है ओला हमला बचा के रखना जरूरी है। तेकर सेती आज खेत बचाओ अभियान के बहुत महत्ता है और हमला खेती ला इसे करना है कि पर्यावरण हा संरक्षित रहे, पर्यावरण ला संरक्षित रखते हुए आने वाले पीढ़ी पर जो संसाधन है ओला बचाते हुए हमला खेती ला आज करे के आवश्यकता है।
0: माने कहे के मतलब है कि खेत बचाओ अभियान जिन हमन अभी अंधाधुन रासायनिक उर्वरक के उपयोग करत हन ओला कमती करके जैविक खेती के ओर हमला ध्यान देना चाहिए। फिर एक चीज और देखे ले मिलते कि जिन फसल अवशेष होते माने जिन पैरा है बै ए मल्ला ना देखता अधिकतर किसान मन जला देते तो एक जलाए ले का नुकसान होते और कहूं एला नहीं जला के हमन का एकर कोई अच्छा तरीका से प्रबंधन कर सकत हावन।
1: जी हाँ, फसल अवशेष के बहुत अच्छा प्रबंधन करे जा सकते और फसल अवशेष ला जलाए से बहुत सारा पर्यावरणीय और मृदा से संबंधित साथ ही साथ मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित भी बहुत नुकसान है। जब फसल अवशेष ले किसान भाई मन जला देते तो अनुसंधान ये बताते कि एक टन फसल अवशेष ले जलाए से लगभग 1600 किलोग्राम हानिकारक जो गैस है वो उत्सर्जित होते है वायुमंडल में जाके मिल जाते और ये गैस है काबर की हानिकारक गैस है तो मनुष्य के स्वास्थ्य में दुष्प्रभाव डालते फेफड़ा संबंधी ओकर से रोग हो कैंसर संबंधी रोग होते। साथ ही हमन आजकल एक ठन बात सुनथन ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में जो बढ़ोतरी होते साल दर साल ओकर बहुत सारा कारण है लेकिन ये फसल अवशेष के द्वारा जो धुआं उत्सर्जित होते वहू हा कारण हरे त एकर से बहुत सारा नुकसान है। माटी के स्वास्थ्य में एकर से बहुत नुकसान पड़ते जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है ते मन हा खत्म हो जाते है। केंचुआ की संख्या आज हम देखथन माटी में हमला नहीं दिखे केंचुआ की संख्या भी एकर से कम हो गए है।
0: तो एकर प्रबंधन ला कैसे करे हमारे किसान भाई मन हा?
1: जी हाँ, एकर प्रबंधन हा आज बहुत सारा ऐसे हमर कर तकनीक है कि ओला अपना के किसान भाई मन माटी के उपजाऊ क्षमता ला बढ़ा सक। जैसे हमर छत्तीसगढ़ प्रदेश है धान के कटोरा है हमन जानथन और खरीफ के मौसम में पूरा धान के फसल लगाए जाते एकर अलावा रबी में भी बहुताय में धान के खेतिया होते और हमन प्रचलन में भी देखथन कि जब फसल कटाई के समय आते तो हार्वेस्टर के द्वारा फसल के कटाई लग करे जाते। हार्वेस्टर के पीछे एक ठन मशीन आते ओला अगर किसान भाई मन लगा देवे तो जो बड़े आकार के पैरा है छूट जाते वह छोटे छोटे टुकड़ा में परिवर्तित हो जाही बदल जाही। वो मशीन के नाम है सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम तो मशीन लगते लगभग 1.5-2 लाख के आसपास की मशीन आ रहे तो बड़े आकार के पैरा ला वह छोटे छोटे टुकड़ा है वह काट दी है कुतरान के रूप में ओला बदल दी तेकर बाद ओला सड़ाना बहुत आसान हो जाते। ट्राइकोडर्मा के किसान भाई मन उपयोग करे ये ट्राइकोडर्मा है एक लाभदायक फफूंद हरे जे है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जैव नियंत्रण प्रयोगशाला में यह मिल जाही। अगर बिलासपुर धान के किसान भाई मन है उपयोग करना चाहते हैं तो वहाँ के जो कृषि महाविद्यालय है वहाँ ट्राइकोडर्मा हाँ मिल जाही। केचुआ खाद के साथ मिक्स होके है ये पाउडर हाथ है ओला ले लेवा 4 किलो 5 किलो और ओला अगर केचुआ खाद के साथ मिक्स वाला लेना चाहते ओला ले लेवा या फिर कैप्सूल आते 20 रुपया के कैप्सूल आते ओला ओला 4-5 कैप्सूल ले लेवा ओला ले आए घर में 100 किलो साफ भुरभुरा पूर्ण रूप से सड़े हुए गोबर के खाद ला ले लेवाए और ओला बढ़िया एक ढेर के रूप में पहले अच्छा से फैला देवाए और एक जो ट्राइकोडर्मा है ओला उमा डाल देवाए अच्छा से मिला देवाए ढेर के रूप में ओला परिवर्तित कर देवाए और साफ बोरा से ओला ढक देवाए साथ में उमा थोड़ा सा पानी छिड़क देवाए और ओला 24 घंटा बर ओला रख देना है। 24 घंटा बाद ओला किसान भाई मन हटावा ओला अच्छा से एक बार फिर से मिलाए और ओला ले के प्रति एकड़ के हिसाब से ओला 100 किलो गोबर के खाद ला खेत में डाल देवे। ओकर पहली हमन अगर

0: सुपर स्टार मैनेजमेंट सिस्टम मशीन के उपयोग करके पैरला छोटे छोटे टुकड़ा में काट ले हन तो बहुत अच्छा बात है। अगर कोई कारण से वाला नहीं काट पाए हन तो फिर रोटावेटर के द्वारा भी पैरल छोटे छोटे टुकड़ा में परिवर्तित करे जा सकते हैं। पैरल अच्छा से फैला लेवा और रोटावेटर के माध्यम से वाला छोटे टुकड़ा में परिवर्तित कर लेवा। ओके बाद खेत के एक बार जुताई कर देवा ट्राइकोडर्मा पाउडर डाले के बाद गोबर खाद के साथ मिले हुए तेला। और अगर पानी के सुविधा है तो थोड़ा से उसमें पानी चला देवा तो नमी के जब स्थिति बनी अच्छा तो ट्राइकोडर्मा धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से खाद में सड़ जाही। बहुत अच्छा गुणवत्ता के यह खाद के रूप में परिवर्तित हो जाही। ओकर से माटी के जैविक कार्बन भी बढ़ जाही, लाभदायक सूक्ष्म जीव है ओकरो संख्या बढ़ जाही, कीचवा के संख्या बढ़ी और माटी के जय जल धारण क्षमता है ओकर भौतिक स्थिति है वह में सुधार होगी। तो हम फसल उत्पादन के द्वारा अनाज के उत्पादन ले सकथन और फसल अवशेष के उपयोग करके हम ओला सड़ा के हमन माटी के उपजाऊ क्षमता ला भी हम बढ़ा सकथन। तो बहुत अच्छा यह प्रयोग तकनीक हो सकता
1: जी। कहे जाते कोनो भी फसल लेवे तो ओखर ले पहली माटी के जांच जरूर करा लेना चाहिए कि थे। तो ऐसन में जो मृदा स्वास्थ्य है ओकर जांच बर माटी नमूना जोन हावे ओला कब और कैसे लेना चाहिए?
0: जी हाँ, मृदा स्वास्थ्य जांच बहुत महत्वपूर्ण काम हरे और अभी वर्तमान जिस समय है गर्मी के मौसम वो है एकदम उपयुक्त हरे, सही समय हरे माटी के नमूना ला खेत से लेवर। कावर किसान भाई मन अगर रबी फसल भी लगाए हुई तब हो जे खेत अभी खाली हो जा रहे थे, माटी में नमी के मात्रा में कमी रहते तो आसानी से नमूना ला लिए जा सकते। किसान भाई मन जे भी खेत से नमूना लेना चाहते तो 8 से 10 जगह के ओमन चयन कर ले, यादृच्छिक रूप से रेंडमली वाला चयन कर ले। ध्यान रखे कि एकदम मेड़ से नमूना नहीं लेना है, पेड़ के नीचे से हमला नमूना नहीं लेना है। खाद के अगर नाली बने हुए सिंचाई की नाली है, खाद अगर किसान भाई मन रखे रही सोई कोई जगह गोबर के खाद हो जगह से हमला नमूना ला नहीं लेना है। ऐसे जगह ला छोड़ के किसान भाई मन 10 जगह चयन कर लेवा, 15 से 20 सेंटीमीटर के अंग्रेजी के वी आकार के गड्ढा ओमेर बना लेवा और वो जगह ले घास फूस और पौधा के जो ठूठ है जड़ है कंकड़ पत्थर है ओला हटा देवा। हटाए के पश्चात जो वी आकार के गड्ढा है ओकर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी ला दोनों तरफ से खुरच के निकालत जाए। इसे करके ओमन लगभग एक गड्ढा से आधा किलो नमूना निकाले। अगर 10 गड्ढा की किसान भाई मन चयन करे है तो लगभग 5 किलो नमूना हमार कर एकत्र हो जाए। वो नमूना ला किसान भाई मन घर में ले आवा है, साफ छाव वाले जगह में सुखा देवा वाला। ओकर नमी जब कम हो जाए तो वाला कूट पीस के वाला बारीक कर लेवा है। बारीक करे के पश्चात ओला ऐसे फैला लेवा बढ़िया से और 4 बराबर भाग में ओला बांट लेवा। 2 भाग ला हटा देवा, बचे हुए 2 भाग ला फिर से मिलावा, ओला मिला के फिर 4 भाग में बांट देवा। ए समय दूसरा तरफ के 2 भाग ला हटा देवा, ओला फिर तीसरा बार मिला। ऐसे करके ये प्रक्रिया ला हमला तब तक अपनाना है जब तक कि हमर कर कम से कम 1 किलो नमूना हा प्रयोगशाला भेजे बर बच जाए। जब 1 किलो नमूना के आसपास बच जाए तो ओला साफ कपड़ा के थैली या मोटा गेज के पॉलीथिन में किसान भाई मन डाल देवा और एक ठन पर्ची किसान भाई मन में डाल देवा जे में पूरा जानकारी रहे, किसान के नाम ओकर पूरा पता, खेत के खसरा नंबर, नमूना लेके दिनांक, कौन से फसल किसान भाई मन लगाते, आगामी फसल कौन सा लेना चाहते, खेत सिंची थे कि असिंची थे, ये सब जानकारी ला पूरा लिख के वो पर्ची ला डाल देवा। वो नज़दीकी जे माटी परीक्षण प्रयोगशाला है वहाँ पहुँचा देवा या कृषि विस्तार अधिकारी बंधु मन हरते ओकर माध्यम से वो सैंपल ला नमूना ला प्रयोगशाला में पहुँचा देवा। तेकर बाद वो प्रयोगशाला के काम रही वाला माटी की जांच हुई, माटी का परीक्षण हुई और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के रूप में ये जो परीक्षण के परिणाम है वो हम मिली। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड है एक पूर्ण रूप से कंप्लीट पैकेज हरे जिसमें माटी के 12 प्रकार के पैरामीटर में जानकारी दे जाते है। ओमे माटी के अम्लीयता क्षारीयता और जो मुख्य पोषक तत्व है सूक्ष्म पोषक तत्व है वो सारा बात की जानकारी रहते। अगर कोई तत्व की कमी है तो कैसे पूरा करना है यही जानकारी है ओमे रथ है। तो माटी के स्वास्थ्य जांच कराए और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से किसान भाई मन खाद और उर्वरक है ओला उपयोग करें।
1: कहे जाते खेती किसानी में भी संतुलित मात्रा के बड़ महत्ता हावे, ऐसन में संतुलित उर्वरक उपयोग के का लाभ है और अवैया जिन खरीफ फसल है ओमा उर्वरक के कितना अनुशंसित मात्रा डालना चाहिए यहू ला फरियाए के बताते हो?
0: जी हाँ, संतुलित मात्रा में उर्वरक उपयोग के बहुत लाभ है। सबसे पहले तो किसान भाई मन प्रयास करे कि माटी के जांच कराए और माटी के जांच के हिसाब से मन खाद और उर्वरक के उपयोग करे, मतलब जो अनुशंसित मात्रा है वह पता चल जाए कतका डालना है। अगर कोई कारण से किसान भाई मन माटी की जांच नहीं करा पाए तो फिर हर फसल बार एक अनुशंसित

0: मात्रा तय करे जाते, वो मात्रा के हिसाब से किसान भाई मन ला खाद और उर्वरक के उपयोग करना है। जैसे कि अभी खरीफ के मौसम में किसान भाई मन धान, उड़द, मूंग, सोयाबीन, अरहर, मक्का, तिल, मूंगफली और लघु धान्य जो फसल है जैसे रागी, कोदो, कुटकी, ये सब लगाते, तो हर फसल भर उर्वरक के मात्रा के एक अनुशंसित मात्रा तय करे जाते। जैसे धान फसल किसान भाई मन लगाते तो मल्ला 100 किलो नत्रजन, 60 किलो स्फुर, 40 किलो पोटास मल्ला प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। अगर उड़द और मूंग फसल लगाते तो चूंकि उड़द मूंग दलहनी फसल है और पौधा की जड़ में जो राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया रहते तो इसमें नत्रजन की मात्रा कम लगते। राइजोबियम बैक्टीरिया पर्यावरण से जो नत्रजन है वाला अवशोषित करते तो नत्रजन की मात्रा की आवश्यकता कम पड़ते। तो उड़द मूंग में किसान भाई मन 20 किलो नत्रजन, 40 किलो स्फूर, 20 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर के भी किसान भाई मन उपयोग करें। एकर अलावा अगर सोयाबीन लगाते तो फिर 20 किलो नत्रजन, 60 किलो स्फूर, 30 से 40 किलो पोटास के किसान भाई मन उपयोग करें। अरहर चूंकि दलहनी फसल है तब में 20 किलो नत्रजन, 50 किलो स्फूर, 20 किलो पोटास, 40 किलो सल्फर के मात्रा ला डाले। मक्का अगर लगावा खरीफ के मौसम में तो फिर 120 किलो नत्रजन, 60 किलो स्फूर, 40 किलो पोटास किसान भाई मन डाले। ये सब बात की किसान भाई मन ध्यान रखते हुए उर्वरक के अनुशंसित मात्रा के उपयोग ला करे।
1: जैसे कि आप मन बतावत रहे हो कि हमारे कई जन किसान संगी मन धान के संगे संग दिगर फसल घलो लेते जिसे दलहन है तिलहन हावे, तो ऐसन में हम कहूँ फसल चक्र के गोट करथन तो खेती किसानी में फसल चक्र के का महत्ता है और एला काबर अपनाना चाहिए यहू लफरियाई के बताते हो।
0: फसल चक्र के खेती किसानी में बहुत महत्व है और फसल चक्र ला किसान भाई मल्ला आज अपनाए की आवश्यकता है। काबर की हमन देखा था कि माटी के स्वास्थ्य निरंतर बिगड़त जात है। जैविक खाद के उपयोग हमन कम कर दे हन, गोबर खाद, केंचुआ खाद, दूसरा प्रकार के जो अन्य कंपोस्ट है ओकर उपयोग कम हो गए है, तो फसल चक्र अपना के हमन माटी के स्वास्थ्य ला बना के रख सकथन। और एक बार जैसे किसान भाई मन अभी खरीफ के मौसम में अनाज कुल के फसल लगाते तो उसके बाद रबी में किसान भाई मन जो दलहन फसल है ओला लगाए। दलहन फसल में जैसे अभी हमन चर्चा भी करत रहे हैं कि ओकर जो जड़ है ओमा राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया रहते ओकर गांठ में, और हम जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नत्रजन है। वो नत्रजन ला अवशोषित करते और पौधा ला भी देते, माटी के स्वास्थ्य ला भी बढ़ाते, माटी में भी मिलाते। तो अनाज कुल के फसल के बाद हम दलहन कुल के फसल ला लगाना है। गहरी जड़ वाली फसल के बाद हमला उथली जड़ वाली फसल ला लगाना है। ऐसे करके पूरा पोषक तत्व की जो मात्रा है अलग अलग गहराई से जो पौधा है अवशोषित करते और माटी में एक संतुलन बने रहते, माटी के स्वास्थ्य अच्छा रहते, तो फसल चक्र ला अवश्य किसान भाई मल्ला अपनाना चाहिए।
1: जी बड़ सुघर आप मन जानकारी दे हावो। और हमन गोट बात करत रहे खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संतुलित उर्वरक के उपयोग के विषय में, और बड़ सुघर आप मन फरियाए के बताए हो आप मन डॉक्टर कुणाल चंद्राकर विषय वस्तु विशेषज्ञ मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद ले आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम।
2: संगवारी हो अभी सुनत रहें क्रम आज की सलाह, विषय रहिस खेत बचाओ अभियान, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन व संतुलित उर्वरकों का प्रयोग। विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल चंद्राकर ले गोट बात करें ऋचा वर्मा।
1: आओ भैया आज का सुघर जानकारी के बाद
2: संदेश सुनते

0: हम है भारत के किसान हम
1: किसान हम
2: किसान हम।
1: भैया सुगर सुगर जानकारी के बाद अब सुन लेता

0: रिचा, भाई गीत संगीत के बाद जानकारी और परीक्षण,
1: हाँ।
0: परीक्षण का खर कि किसान संगवारी मन हमारे कार्यक्रम लग कतेक
1: सुनते
0: और गुंथे,
1: हाँ।
0: क्रम है कृषक प्रश्न मंच और आज के प्रश्न के भाई बारी आगे है संगवारी हो लिखले आज के प्रश्न। आज के प्रश्न है माटी परीक्षण करत खानी का सावधानी रखना चाहिए। प्रश्न एक बार सुनाओ, माटी परीक्षण करत खातिर का सावधानी रखना चाहिए।
1: और पाछू हफ्ता के प्रश्न रही से गाय के गोबर मा के प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते, तो एक सही जवाब है 16 से 17 पोषक तत्व पाए जाते हैं,
0: जेमा कार्बनिक पदार्थ खनिज और सूक्ष्म जीव शामिल हवे। ऋचा,
1: हाँ भैया,
0: संगवारी मन जन जवाब लिख के भेजे है,
1: हाँ,
0: सही जवाब, हाँ, तो खन नाम ला बता देथन। तेंदु भाछा मगनलोड जिला धमतरी ले उमेंद कुमार निषाद, महेश्वरी देविका, पोषण नूतन, सुरेंद्र यशस्वी, भास्कर किशन निषाद, गर्रापार बांधा बाजार राजनांदगांव ले गंगाराम साहू, सुलोचना साहू, मानवेंद्र और राकेश साहू, मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, बठेना पाटन जिला दुर्गले बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, मुरली वर्मा, अजित, अमित वर्मा, पथरिया भरेवा ले चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वानिया सिंगरौल। तो जम्मो संगवारी मल्ला भाई बड़ गाड़ गाड़ बधाई कि उमन सही जवाब भेजे है और कार्यक्रम ला बड़ गौर ले सुनते।
1: और भैया संगी मल्ला बता देता है एक ठन सूचना, संगवारी हो अवैया मंगलवार 30 जून 2026 के प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के विषय हो ही हमारे सुरक्षित भविष्य का आधार जैव विविधता का संरक्षण, ये विषय में आप मन के जोन भी समस्या या जिज्ञासा होई उकर समाधान करे खातिर स्टूडियो में उपस्थित रही विशेषज्ञ डॉक्टर पुनेंद्र साहू अधिष्ठता उद्यानिकी महाविद्यालय साजा बेमितरले। आप मन के जिज्ञासा शंका के समाधान करे खातिर हमार टेलीफोन नंबर है 400-3482, हमार दूसरा टेलीफोन नंबर है 400-3483 और हमारे तीसरा टेलीफोन नंबर है 400-3484, रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो ही 30 जून 2026 के 11:30 ले 12 बजे तक और ये कार्यक्रम के प्रसारण हो ही वही दिन मंगलवार के संझा 7:30 में। आप मन के फोन कॉल के हमला अगोरा रही सूचना समाप्त हुआ थी।
0: रिचा, सूचना घलो हो गए तो अब बारी है एक ठन और सुंदर गीत के, ये स्वर देवत है धुलाराम मरकाम और दुखिया बाई।

0: धुरवराम मरकाम और दुखिया बाई के स्वर में अभी सुन ये सुघर से गीत और ये रही से किसान वाणी प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: ऋचा देख गोट बात कर समय भाई समय कते छिन उड़ा गए मालूम ही नहीं पड़ी। अब हो गए जाए के बेरा तो जाए के पहली बता दें संगवारी मल्ला अवैया दिन के कार्यक्रम के तो अवैया दिन में चौपाल में क्रम आज की सलाह के विषय हो ही मानसून में पपीता और केला के खेत के प्रबंधन विशेषज्ञ हो ही डॉक्टर साकेत दुबे खेती किसानी के गोट बात और कृषक प्रश्न मंच के संगे संग गीत संगीत तो होबे करी तो संगवारी हो गए जाए के बेरा देव विदा आप मन के प्रथम संगवारी लव कुमार सिंह
0: और चके राम राम, राम।

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, हाजिर हैं हम चित्रपट संगीत के संग। प्रेम प्रतिज्ञा इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आवाजें बप्पी लहरी और आशा भोसले की, इंदिवर के बोल और बप्पी लहरी का संगीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल।

0: जल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: चित्रपट में अब सुनिए लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में SH बिहारी की रचना। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आगामी मंगलवार 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा हमारे सुरक्षित भविष्य का आधार, जैव विविधता का संरक्षण। विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पुणेंद्र साहू, अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय साजा बेमेतरा। आपकी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें आप फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400-3482 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 30 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत, कलाकार हैं विदुषी ममता चंद्राकर और साथी। पहले सुने विदुषी ममता चंद्राकर और साथियों के स्वरों में।

मित्र और साथी। इसी गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा हमारे सुरक्षित भविष्य का आधार, जैव विविधता का संरक्षण। विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पुणेंद्र साहू, अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय साजा बेमेतरा। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 30 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर 8:30 होने को हैं। स्पोर्ट्स कैन अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले आज की मुख्य समाचार। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र, बेल्जियम, स्पेन और केप वर्दे राउंड ऑफ 32 में पहुंचे। FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतिम ग्रुप स्टेज मुकाबले में कल भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप के साथ, जहां पर आज ग्रुप एल में पनामा और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। वहीं दूसरे मुकाबले में इसी ग्रुप के क्रोएशिया और घाना का मैच खेला जाना है। दोनों मुकाबले भारतीय समय अनुसार रात 2:30 बजे से खेले जाएंगे। वहीं इससे पहले मिस्र, बेल्जियम, स्पेन और केप वर्दे राउंड ऑफ 32 में पहुंच गए हैं। आइए सुनते हैं विश्व कप में कल खेले गए मुकाबलों का पूरा हाल।
1: फीफा विश्व कप के ग्रुप मुकाबले अब अपने अंतिम दौर में हैं और नॉकआउट की रफ्तार पकड़ती दौड़ ने विश्व कप का रोमांच अपने चरम पर पहुंचा दिया है, जहां हर मुकाबला किसी न किसी टीम के भाग्य का फैसला कर रहा है। इसी कड़ी में ग्रुप जी में मिस्र और ईरान के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा।
2: The final whistle blows. Two teams that gave it everything here. What a game. What drama in Seattle.
1: और इस ड्रॉ ने मिस्र को विश्व कप के इतिहास में पहली बार राउंड ऑफ 32 में एंट्री दिला दी है। ग्रुप जी में मिस्र दूसरा स्थान हासिल करने में सफल रहा, जबकि ईरान तीसरे स्थान पर रहा। हालांकि ईरान की नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। महमूद साबेर ने मुकाबले के 5वें मिनट में ही पहला गोल दागा और टीम को 1-0 से आगे कर दिया। हालांकि ईरान ने जल्द ही पलटवार किया और मैच के 14वें मिनट में रमीन रेजाइन ने गोल करके स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन ये रोमांचक मुकाबला इसी स्कोर

0: पर समाप्त हो गया। वहीं इस ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को एक तरफा अंदाज में 5-1 से हरा दिया। बीसी प्लेस स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही बेल्जियम ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना ली है। वहीं न्यूजीलैंड का अगले राउंड में पहुंचने का सपना टूट गया है। उधर ग्रुप एच में स्पेन ने उरुग्वे को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं उरुग्वे का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पहले हाफ में दोनों टीमों के गोलकीपरों ने दमदार प्रदर्शन किया। हालांकि मैच के 42वें मिनट में स्पेन की टीम आखिरकार 1-0 की बढ़त हासिल करने में सफल रही। बिना ने बॉक्स के किनारे से जगह बनाते हुए तेज शॉट लगाया जो उरुग्वे के अनुभवी गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा को चकमा देकर गोल पोस्ट में पहुंचा। इसके बाद स्पेन ने ये मैच 1-0 से अपने नाम कर लिया।
1: Alex Baena scores for Spain. 1-0 to La Roja. Gets it right back. Ferran Torres off the crossbar. It is full time. Spain win the group. Uruguay crash down the group stage for a second straight World Cup.
0: एक अन्य रोमांचक मुकाबले में केप वर्डे ने सऊदी अरब के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ के साथ ही फीफा विश्व कप के नॉकआउट स्टेज में पहुंचकर इतिहास रच दिया है।
1: Cabo Verde came to experience the World Cup. The men from the tiny island in the Atlantic are through to the knockout phase of the FIFA World Cup on their World Cup debut.
0: ग्रुप एच में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद केप वर्डे का राउंड ऑफ 32 में गत चैंपियन अर्जेंटीना से सामना होगा। ये उनके देश के फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा और अहम मैच होगा। केप वर्डे अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में बिना कोई मैच हारे राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली तीसरी अफ्रीकी टीम बन गई है। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
2: और अब फुटबॉल के बाद बात करते हैं हॉकी की, जहां FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7-1 के बड़े अंतर से रौंद दिया। लंदन में खेले गए मुकाबले में 0-1 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की और एक के बाद एक विपक्षी टीम के गोल्फ कोस्ट पर 7 गोल दागे।
3: लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर्स में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम का एक तरफा दबदबा देखने को मिला। पहले पाकिस्तान से 1-0 से पिछड़ने के बाद हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम ने ऐसा पलटवार किया कि विपक्षी टीम चारों खाने चित्त हो गई। भारत ने दूसरे और तीसरे क्वार्टर में लगातार अंतराल पर गोल करते हुए मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा और पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया। भारत ने मैच के दौरान 36 बार पाकिस्तान के सर्कल में प्रवेश किया और 13 पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए, इनमें से 3 पर गोल करने में सफलता मिली। दूसरी ओर पाकिस्तान ने 18 बार भारतीय सर्कल में प्रवेश किया लेकिन वह कोई फील्ड गोल नहीं कर सका। भारतीय मिडफील्ड में हार्दिक सिंह और मनप्रीत सिंह ने शानदार खेल दिखाया। वहीं अभिषेक दिलप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने लगातार पाकिस्तान के डिफेंस पर दबाव बनाए रखा। मैच की शुरुआत में पाकिस्तान ने बढ़त बनाई और 13वें मिनट में अबू महमूद ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल कर अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद भारत ने दूसरे क्वार्टर में शानदार वापसी की और 19वें मिनट में सुखजीत सिंह ने बराबरी का गोल किया। इसके बाद 26वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर पर शानदार ड्रैग फ्लिक लगाकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में भारत ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली। 34वें मिनट में मिले पेनाल्टी स्ट्रोक पर हार्दिक सिंह ने एक बेहतरीन गोल किया। इसके ठीक एक मिनट बाद तेज काउंटर अटैक पर जुगराज सिंह ने चौथा गोल दागकर भारत की बढ़त को 4-1 कर दिया। 41वें मिनट में सुखजीत सिंह के शानदार पास पर अभिषेक ने गोल कर स्कोर 5-1 कर दिया। 44वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक पर मिले रिबाउंड को राजकुमार पाल ने गोल में बदलकर भारत की बढ़त को 6-1 कर दिया। मैच के 54वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने शानदार मूव को गोल में तब्दील करते हुए मैच में भारत के लिए 7वां गोल दागा। ये हॉकी में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की लगातार 17वीं जीत है। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में स्पेन से आगे 7वें स्थान पर आ गया है। शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो एक बेहद शानदार जीत और एक ऐसी ही जीत का इंतजार भारत को इस समय अहमदाबाद में है, जहां इस समय ABC मेंस वॉलीबॉल कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा है भारत और इंडोनेशिया के बीच अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और जब तक ये मैच के लिए समाचार लिखे जा रहे थे, भारत ने पहला सेट अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद इंडोनेशिया ने लगातार 2 सेट जीते हैं। और इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के ऊपर एक खास जानकारी लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। प्रशांत, सेमीफाइनल मुकाबला एक कांटे की टक्कर का मुकाबला चल रहा है, लेकिन ग्रुप स्टेज भारतीय टीम ने करिश्माई प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे?
0: जी शक्ति, भारत का सेमीफाइनल

0: तक का ये सफर टीम की करिश्माई खेल की कहानी को बयां करता है। भारत ने ग्रुप स्टेज के सभी 5 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है और शक्ति इस दौरान सबसे खास बात ये रही कि भारतीय टीम ने इन 5 मुकाबलों के दौरान मात्र 1 सेट ही गंवाया है। भारत ने पहले न्यूजीलैंड को, फिर कजाकिस्तान को 3-0 से हराया, इसके बाद चीनी ताइपे को 3-1 से मात दी। सबसे अनोखा पल टूर्नामेंट का शक्ति ये आया कि भारत ने गत विजेता बहरीन को 3-0 से मात दी। इसके बाद अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 3-0 से आसान जीत दर्ज कर ली।
1: जी बिल्कुल, मात्र 1 सेट गवाया था भारत ने ग्रुप स्टेज में। क्या फैक्टर्स एनालिसिस किए जा रहे हैं भारत की इस परफॉर्मेंस पे, जो कि रेवोल्यूशनरी चेंज है ये?
0: जी, सबसे बड़ा फैक्टर की अगर हम बात करें, जो उनके कोच है, और मैं श्रोताओं को बताना भी चाहता हूँ कि उनका आज जन्मदिन भी है, और कोच जो है वो ड्रैगन मिहेलोविक है, जिन्होंने बेहतरीन नेतृत्व किया है, लेकिन साथ ही खिलाड़ियों का भी शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें चिराग यादव, जोएल बेंजामिन जेबराम, जेरोम चार्ल्स विनीत और सेटर अप्पुवापु मुथुस्वामी जैसे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम के रैंकिंग को भी सुधारा। इस टूर्नामेंट में जब टीम आई थी तो 58वें पोजीशन पे थी, लेकिन अब टीम की जो रैंकिंग है वो 42वें पोजीशन पे है। और रैंकिंग का ये फायदा मिलता है शक्ति कि आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भी जो भारत अच्छा कर सकती है और उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकती है।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रशांत। तो भारत को उम्मीद होगी कि ऐसा ही प्रदर्शन सेमीफाइनल में टीम करे और वापसी करते हुए फाइनल तक का सफर तय करे। और अब बात बैडमिंटन की, जहां देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।
2: थाईलैंड मास्टर्स की विजेता देविका सिहाग ने बड़ा उलटफेर करते हुए जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त रिको गुंजी को हराकर यूएस ओपन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। देविका ने महिला क्वार्टर फाइनल में दोनों गेम के अंतिम क्षणों में संयम बनाए रखते हुए गुंजी को 22-20, 21-19 से हराया। अब सेमीफाइनल में देविका का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त लाइन क्रिस्टोफरसन से होगा। डेनमार्क की इस खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा को 21-16, 11-21, 21-11 से आया था। वही महिला सिंगल्स के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में रक्षिता श्री को कनाडा की राहेल चांद से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पुरुष सिंगल्स में अनुभवी किदांबी श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के लियाओ झू फू को 21-9, 12-21, 21-8 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। श्रीकांत अब सेमीफाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त युदाई ओकिमोतो का मुकाबला करेंगे। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जेलब्रमेन को 23-21, 21-11 से पराजित कर पहली बार किसी BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में रौनक का सामना चीन के ताइपे के 8वीं वरीयता प्राप्त सू ली यांग से होगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब कार्यक्रम में बात महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की, जहां कल अपने अंतिम ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: हरमनप्रीत कौर की विमेंस इन ब्लू कल अपना अंतिम ग्रुप स्टेज मैच खेलने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर उतरेगी, जहां उनके सामने ग्रुप में शीर्ष पर काबिज ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती होगी। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना होगा। भारतीय टीम ने पिछले मुकाबले में बांग्लादेश पर एक आसान जीत दर्ज की है और टीम के हौसले एक बार फिर बुलंद होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसने अपने सभी मैच बड़े अंतर से जीते हैं और एक मजबूत रन रेट के साथ ग्रुप में टॉप पर है। सोफी मिलिनियो की अगुवाई में 6 बार की T20 विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया ने अब तक अपने नाम के मुताबिक ही प्रदर्शन किया है। अगर वो ये मैच हारती भी है तो भी उसके लिए सेमीफाइनल में पहुंचना भारत की तुलना में काफी आसान है। दक्षिण अफ्रीका से मिली हार ने भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरणों को बिगाड़ने का काम किया है और इस हार से भारत की रन रेट पर भी असर पड़ा है। भारत अपने 4 में से 3 मुकाबलों में जीत दर्ज कर ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया अपने 4 के 4 मैच जीत कर शीर्ष पर है। भारतीय टीम इस मैच में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की तैयारियों को लेकर टीम के खिलाड़ी राधा यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: कोई भी ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं मुझे नहीं करना, मतलब लोग जा रहे रूथलेस प्रैक्टिस कर रहे, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ रहा, क्योंकि सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट गेम है, कितना एक दूसरे को साथ में रखना है और एक दूसरे का प्रेशर थोड़ा नीचे को हटाना है, तो उस पे ज्यादा फोकस है।
3: भारत को अपने इन फॉर्म खिलाड़ियों से इस मैच में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा पर होगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा से टीम को खास उम्मीद रहेगी। इनके अलावा जेमिमा रॉड्री

0: ऋचा घोष, यास्तिका भाटिया पर भी नजर रहने वाली है। गेंदबाजी में लगातार बेहतर कर रही श्रीचरणी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, जिन्हें राधा यादव, नंदिनी शर्मा और रेणुका ठाकुर का साथ मिलेगा। ऐसे में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली इस टीम की नजर दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में हुई गलतियों को सुधार कर अपने पहले T20 विश्व कप खिताब की ओर एक और कदम बढ़ाने पर होगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारतीय टीम लॉर्ड्स के इस मैदान पर उतरेगी तो उसकी नज़र इस लक्ष्य पे भी होगी कि किस तरह से इस सफ़र को ऐसा बनाया जाए कि 5 जुलाई को वापस टीम फाइनल खेलने के लिए इसी मैदान पर उतर सके और हरमनप्रीत कौर की आर्मी अपनी गलतियों से सीख लेते हुए कल ऑस्ट्रेलिया की चुनौती का सामना करना चाहेगी। और अब बात करते हैं पुरुष क्रिकेट की, जहां भारत को आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में 34 रन से हार का सामना करना पड़ा। बेलफास्ट में सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले गए मुकाबले में आयरलैंड के 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 18 ओवर और 5 गेंद में 148 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। ये पहला मौका था जब आयरलैंड ने भारत को किसी T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में हराया है। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में सर्वाधिक 50 रन बनाए। वहीं आयरलैंड की तरफ से मैथ्यूज हम्फ्रीज ने 3 और मैथ्यूज हॉलार्ड ने 3-3 विकेट लिए। हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगर आयरलैंड की बल्लेबाजी की बात की जाए तो लॉकरेन टकर ने टीम के लिए 36 गेंदों पर 50 रन की एक शानदार पारी खेली, जिसने टीम को एक अच्छी बुनियाद दी और मध्यक्रम को मजबूती दी, जबकि गैरेंथ डैनली के 49 रन ने भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को इसी मैदान पर खेला जाना है, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम जो है इंग्लैंड का रुख करेगी, जहां पर भारतीय टीम पहले 5 T20 मुकाबले खेलेगी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आप सभी से विदा लेने का स्पोर्ट्स कैन के इस कार्यक्रम में। कल आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की सभी खबरों के साथ। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें हमारे स्पोर्ट्स कैन के ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने

0: भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के

0: पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं, ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में PM फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली MDMK पार्टी ने DMK के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि MDMK को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। MDMK के 2 विधायक

0: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी TET के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए TET प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा

0: किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताज़ा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sihag, Kidambi Srikant and Ronak Chauhan reach semifinals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. A report.
2: Prime Minister Narendra Modi visited the Botanical Garden and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mar plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Following this, Prime Minister Modi also interacted with members of Indian diaspora. He said that Indian diaspora has long served as a vibrant bridge between the two nations, strengthening people-to-people ties and enriching the shared journey. In a special gesture, Prime Minister Modi handed over the Made in India fast patrol vessel to President Dr. Patrick Hermini. He also handed over 6 ambulances, 10 utility vehicles and 5 laser radial boats, which will further contribute to the development and security of Seychelles. Prime Minister Modi will be the guest of honour at celebrations marking the historic 50th anniversary of independence of Seychelles. He is the first ever Indian Prime Minister to attend the National Day celebration of Seychelles. Akshit Vaidyan, Akashwani News.

0: आपके दीवाने, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत राजेश रोशन का था।
1: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
5: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: साधना सरगम की आवाज में सुनिए इंदिवर की रचना, धुन

इसी गीत के संग चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर रात्रि के 9:30 होने को हैं। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को बिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है।

0: हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प से शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान इराक और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही है या वो रुक रुक के जा रही है। अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही है तो यानी कि रुक रही है इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है, लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा, छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं ये हमारे पास एक टेबल है तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है, अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं किसी सुरक्षित, जैसे पलंग है बेड है बेड बहुत मजबूत होता है आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और की डेथ हो गई। तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें, जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट।

0: वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है। क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
2: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
1: जी।
2: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
1: जी,
2: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
2: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में, और उनकी जीवन शैली को सुधारने में, और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है, कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
2: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
2: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
1: जी।
2: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
2: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
2: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
2: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
2: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
2: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
0: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर और ऊर्जा

0: संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानने चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है, इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
2: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में, आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
1: जी।
2: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं, और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
0: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की। उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली।

इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार

0: प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा, और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है। क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता, आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
0: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग जी गोपाल रेड्डी कैंपस गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर GV राव इनसे बातचीत कर रही हैं।

0: सीमा कुमारी।
1: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुँचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
2: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में, जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है।
1: जी,
2: तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
1: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, निदेशक एआईजी अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाश गंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगुगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुक करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन अर्थात ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ।

तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
1: वृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है, जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur.
3: He was initiated by Sri Dulal Roy.
2: He took Talim from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padmasri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
1: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला, विलंबित रचना झपताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
2: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिन्स हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप, विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was Rag Rageshri, performed by Prabhat Mukhopadhyay. He concludes his recital with a Pahari Dhun.

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28

0: जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा।

0: northern Iraq. In southern Lebanon, an Israeli drone strike hit the Nabatea area a day after Israel and Lebanon signed a U.S. brokered framework for Israeli withdrawal and restoring Lebanese state authority. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in U.S. tonight. In another Group A fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in U.S. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा अब समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर इसी फ्रिक्वेंसी में सुबह के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।